सुपर भार मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की दूसरी तिथि, तद अनुसार 23 जून वर्ष 2026। प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण मीडियम वेव और एफएम दोनों मीटर्स पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

हे मंगल मूर्ति, विघ्न हर लो जीवन के सारे, तेरी कृपा से रोशन हो भक्तों के सपने न्यारे।

0: छोटा सा एक कर दो काम,
1: मंगल मूरत मोरिया छोटा सा एक कर दो काम,
0: सिद्धि विनायक तेरा नाम सिद्ध हमारा कर दो काम,
1: सिद्धि विनायक तेरा नाम सिद्ध।

राम जी का नाम है जीवन का उजियारा, जिसने मन से जपाई से मिला उसे सहारा।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे हरिओम शरण, छोटे साले, हरप्रीत कौर और जगजीत सिंह व समूह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। मीडियम वेव 336.7 मीटर पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन। आज इस कार्यक्रम का विषय है पड़ोसियों से प्रेम।
1: विश्व में हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ हम किसी के पड़ोसी होते हैं, तो कोई हमारा भी पड़ोसी होता है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। प्राचीन काल से ही हम अपने समाज में या समूह में ही रहते चले आ रहे हैं। हमारी कामना रहती है कि हमारा पड़ोस अच्छा हो, हमें अच्छा पड़ोसी मिले जिससे कि हमारा संपूर्ण जीवन सुखमय रहे। कहावत भी है कि 100 गोती एक पड़ोसी के बराबर है। हम अपने गोत्र, कुल या वंश के 100 आदमियों को एक तरफ रख लें और अपना पड़ोसी एक तरफ, तब भी तुलना में गोत्र के 100 आदमी कम महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। इसलिए पड़ोसियों से प्रेम होना चाहिए, यह एक निर्विवाद सत्य है। अपने घर के आगे, पीछे अथवा अगल बगल में रहने वाला घर परिवार ही हमारा निकटतम पड़ोसी कहलाता है। हमारा पड़ोसी हमें भली भांति जानता है। हमारी आदत, हमारा स्वभाव, रहन सहन, खान पीन, शिक्षा संस्कार आदि सभी कुछ पड़ोसी जानता और समझता है। पड़ोसी से अधिक हमारे विषय में और कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। 24 घंटे का साथी, सुख दुख का संभागी और सहायक हमारा पड़ोसी ही होता है। इसलिए हमें अपने पड़ोसी की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। पड़ोसी के प्रति पूर्ण प्रेम, सहयोग, सहानुभूति हमारी होनी चाहिए। पड़ोसी हमारा समीपस्थ सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति होता है। अगर हम अपने पड़ोसी के काम नहीं आ सकते, सुख दुख के साथी नहीं बन सकते, तो निश्चय ही हम जो कुछ करते हैं वो अपने लिए केवल एक छलावा है, धोखा है, मात्र एक प्रदर्शन है। हमारे धार्मिक होने का, समाज सुधारक होने का या ऊंचे पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करके समाज के सन्मार्ग प्रदर्शक होने का या हमारे नेतृत्व का कोई अर्थ ही नहीं अगर हम अपने पड़ोसी की उपेक्षा करके चलते हैं। तब हमारा हर अच्छा कार्य सबसे पहले अपने पड़ोसी

0: पड़ोसी के अवगुणों को जानते हुए भी किसी से उसकी आलोचना अथवा बुराई न करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार कुछ न कुछ मांगने के लिए पड़ोसी के घर नहीं जाएं। मांगने से हम अपना मान सम्मान मानो स्वयं घटा रहे हैं। मान घटे नित के घर जाए, ऐसा इसीलिए कहा गया है। इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य में रहीम नाम से प्रसिद्ध अब्दुल रहीम खान खाना कवि तो यहां तक कह गए हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जो कुछ मांगने चाहिए। मांगने वाले के प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम नहीं रहता, इसलिए मांगने की याचना करने की अपनी दुष्प्रवृत्ति पर हमें नियंत्रण करना होगा। रहीमन पाचकता गहे बड़े छोटे हुए जात, नायरों को हूं भयो बावन अंगुर गात्र। याचना ने तो भगवान विष्णु को भी बावन अंगुल के शरीर वाला बोना बना दिया था। इस प्रकार यदि हम अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, संयमित होकर मान मर्यादा में रहकर अपनी गंभीरता बनाए रखते हैं, तो कभी पड़ोसी से मन मुटाव हो ही नहीं सकता। समझदारी से परस्पर के मतभेद दूर करके मिलकर सब तरह से बनाकर रहें तो निश्चय ही परस्पर में प्रेम बना रहेगा। पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो अथवा ईसाई, इस सांप्रदायिक दुर्भाव को भुलाकर हमें एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहिए। पड़ोसी केवल पड़ोसी है, अपना है, सब तरह से अपना। यही भाव मन में रखकर पड़ोसी के प्रति पूरा प्यार और सद्भाव हमारा होना चाहिए। हम अच्छे पड़ोसी बने, पड़ोस को अच्छा बनाएं और पड़ोसी को अपना बनाएं, यही हमारी पहली मनोकामना होनी चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, पड़ोसियों से प्रेम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:35 हो चुके हैं। आपके लिए लेकर आए हैं स्वास्थ्य संदेश में डॉक्टर आसिफ अली की जानकारी, जिसका विषय है डेंगू और चिकनगुनिया।
2: आज हम बात करेंगे डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में। ये क्या है, किस प्रकार का रोग है, कैसे फैलता है, कैसे बचाव और उपचार कर सकते हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आसिफ अली जी, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस बीमारी से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत है।
3: शुक्रिया सर।
2: डेंगू का नाम सुनते ही काफ़ी घबराहट होती है कि ये कैसी बीमारी है, कैसा बुखार है, कहीं जानलेवा तो नहीं है, और लोग सतर्क हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। बीमारी वैसे तो किसी भी प्रकार की हो, कैसी भी हो, सतर्क होना चाहिए। डेंगू बुखार दूसरे बुखार से किस प्रकार से भिन्न है, कैसे अलग है?
3: देखिए सर, बुखार का मतलब तो होता है गर्म करना।
2: जी,
3: शरीर कोई सा भी बुखार आया, शरीर उसमें गर्म ही होता है। तो अमूमन ये देखा गया है कि जैसे ही बुखार आता है तो सबसे पहले तो बुखार किस तरह का है, वायरल है
2: जी,
3: बैक्टीरियल है या मौसमी बुखार।
2: हाँ हाँ।
3: तो इसमें सर जो डेंगू बुखार है, एक्चुअल में ये डेंगू जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है, यानी एक वायरल बीमारी है, और ये एक मच्छर के द्वारा फैलता है। फीमेल एडीज मॉस्किटोज हैं
2: जी,
3: ये दिन में ही बाइट करते हैं। हाँ। सनलाइट की प्रेजेंस में, और जैसे ही ये किसी को काट लेते हैं तो इनका जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाता है शरीर में, और जैसे ही ये सर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो तेज बुखार आएगा मरीज को, बहुत तेज सर्दी के साथ
2: जी,
3: और बुखार आने के बाद मरीज बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाएगी।
2: अच्छा,
3: उसको एक्सट्रीम कमजोरी हो जाएगी, और मरीज ये कहेगा कि जैसे डेंगू की बात कर रहा हूँ सर मैं।
2: हाँ हा।
3: मरीज कहेगा कि जैसे शरीर से पूरी जान निकाल ली गई है।
2: बिल्कुल।
3: होता क्या है सर इसमें, कि इसमें जो हमारी प्लेटलेट्स काउंट हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, और जिसकी वजह से चूंकि प्लेटलेट हैं बॉडी की, बॉडी को इम्यूनाइज करती हैं, बॉडी के अंदर
2: रक्षा करती हैं
3: जी, बिल्कुल, उसी की वजह से बॉडी के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ रहती है, तो वो उसकी काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाने की वजह से शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है।
2: अच्छा, दूसरे बुखार में ऐसा नहीं होता है?
3: हाँ, दूसरे बुखार में जैसे मौसमी बुखार है या कोई बैक्टीरियल बुखार है
2: जी,
3: उसमें उसकी अपनी स्टेजेस होती हैं, लेकिन इसमें अचानक से इतनी कमजोरी आ जाना, ये एक इस तरफ
2: बड़ा लक्षण है,
3: मैं निर्देश करता है कि शायद ये डेंगू होगा
2: जी। जी,
3: इसमें कुछ और लक्षण भी हैं सर, कि जैसे बुखार कमजोरी के साथ साथ शरीर पे हल्के हल्के दाने से आते हैं निकल के
2: जी,
3: हालांकि ये थोड़ा सा बाद में आता है, लेकिन दाने आ जाते हैं। कभी कभी ये इतना सीवियर हो जाता है कि ये अंदर ब्लीडिंग तक हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग

0: भी हो जाती है और शरीर बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर हो जाता
1: कमजोर
0: है।
1: हो जाता है, और मैं समझता हूँ इसीलिए लोग ज्यादा घबराते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: ये कितना घातक है?
0: सर, घातक अगर इसका सही तरीके से इसका जो है मैनेजमेंट कर लिया जाए,
1: समय
0: वैसे
1: से?
0: तो समय से, क्योंकि वैसे तो इसकी कोई दवा नहीं है अभी
1: जी
0: तक,
1: जी
0: अंग्रेजी में कोई दवा नहीं है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इसका मैनेजमेंट है।
1: हाँ
0: इसमें
1: हाँ
0: मैनेजमेंट ये है सर कि जैसे अगर पेशेंट बहुत वीक हो रहा है,
1: हाँ
0: खाने में असमर्थ है, तो उसको हम जो है आईवी
1: अलग
0: वगैरह,
1: अलग
0: आई
1: से?
0: आईवी के थ्रू,
1: हाँ जी।
0: मतलब हम उसको सेलाइन वगैरह देके उसको जो डिहाइड्रेट बॉडी अगर हो रही है उसको हम लिक्विड पर रखेंगे, लिक्विड डाइट देंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ऐसे
1: इस
0: कुछ
1: बॉडी को स्ट्रांग
0: स्ट्रॉन्ग
1: करेंगे।
0: करेंगे,
1: जी
0: और ये चीज़ें हैं कुछ जो कि हम इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: जी
1: बात आती है कि वास्तव में ये घातक है। बहुत सारे जो हमारे मरीज हैं या जिनको ये समस्या हो जाती है डेंगू बुखार की या डेंगू की, वो कुछ समय तक तो इंतजार करते हैं कि
0: जी बिल्कुल
1: सामान्य बुखार हो सकता है और एक दो दिन बाद ठीक हो
0: जी
1: जाएगा,
0: बिल्कुल
1: या
0: बिल्कुल
1: कुछ साधारण सी दवाएं लेकर के वो चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए,
0: जी
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: इसकी वजह से कभी कभी देरी हो जाती है।
0: जी बिल्कुल सर
1: तो पेशेंट के लिए या लोगों के लिए क्या सलाह है कि यदि वो डेंगू बुखार के शिकार हुए हैं
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: कितनी शीघ्रता से इसका इलाज शुरू करना चाहिए?
0: देखिए सर, जैसे ही पेशेंट को लगे कि उसको बुखार है और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, तो तुरंत वो कुछ जांचें हैं, जैसे RJ2 DS RNA, जो डबल स्टैंडर्ड RNA, एक एलिसा टेस्ट होता है,
1: जी
0: स्पेसिफिक टेस्ट है, और वैसे तो एक टेस्ट होता है प्लेटलेट काउंट,
1: हाँ
0: उससे भी
1: हाँ
0: अंदाज़ा लगाया जा सकता है
1: जी
0: इसके जो
1: बुखार यही
0: है
1: है।
0: लक्षण हैं, वायरल है।
1: जी
0: तो तुरंत जो है वो मरीज़ को इस तरह के चेकअप करा के और तुरंत जो है इसका उपचार लेना चाहिए,
1: जी
0: देरी होने से दिक्कत आ सकती है।
1: बुखार को हम समझ सकें, कैसे जांच के द्वारा हम पता कर लें और फिर शुरुआती दौर में ही किसी भी चिकित्सक से इसका इलाज कराएं, और बचाव के उपाय यदि हम अपनाते हैं तो इस समस्या तक हम पहुंचने से बचेंगे और कोई प्रकार की किसी प्रकार
0: जी
1: की
0: बिल्कुल
1: समस्या नहीं
0: सर
1: होगी। डॉक्टर आसिफ अली जी, आप हमारे कार्यक्रम आए और इससे संबंधित बेहतर जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
2: डेंगू और चिकनगुनिया, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आसिफ अली और आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा। इसी के साथ स्वास्थ्य संदेश का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हो चुके हैं। आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:45 पर श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग आप तक पहुंचाएंगे। इसमें कड़ी संख्या 337 आज आप तक पहुंचेगी। समय याद रखिएगा 6:45 पर। लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे 7:00। कलाकार होंगे मदन मोहन भारती। फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे आप सुन सकेंगे 7:31 पर। मॉर्निंग हिट्स का समय रहेगा 8:45 पर। और उर्दू प्रोग्राम समाप्त फरमाइएगा 9:30 पर। माहे मुहर्रम पर खसूसी प्रोग्राम फायजा जुबेर की तहरीर होगी जिसका मौजू होगा माहे शहादत मुहर्रम। सदाकार होंगे फरीदुल्ला खान और फायजा जुबेर। पेशकश रबाब अंजुम की होगी। नौ बजकर 50 मिनट पर होगा उप शास्त्रीय संगीत जिसमें आपको सुनवाएंगे रजा हुसैन खां का सारंगी वादन राग पूरिया। फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप तक पहुंचाएंगे 10:05 पर। सुनहरा दौर इस कार्यक्रम का समय रहेगा 10:30 पर। इसमें आज आपको सुनवाएंगे 70 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। ग्यारह बजे धारावाहिक और फन बेमिसाल है। इसमें आज आप सुनेंगे भाग संख्या 9। श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भावन आप सुनेंगे 11:30 पर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी नगमे गीत आपके नाम इस कार्यक्रम का समय रहेगा 12:10 पर। एक बजकर 15 मिनट पर पारिवारिक कार्यक्रम परिवार जगत, इसका प्रसारण किया जाएगा। इसमें चर्चा का विषय होगा बुजुर्गों की देखभाल। साथ ही होगी डॉक्टर आंचल गुप्ता की वार्ता, जिसका विषय होगा पारिवारिक कलह का बच्चों पर प्रभाव। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा का आगाज होगा आज शाम के साथ, शाम 5:00। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:15 पर। कृषि जगत का प्रसारण होगा शाम 6:20 पर। इसमें चर्चा का विषय होगा खेती के साथ सहायक धंधे अपनाएं। साथ ही होगी कृषि संकेत में, आप सुनेंगे बुआई से पहले बीज उपचार का महत्व। शाम 7:00 आपको सुनवाएंगे कानून और हम में, विषय होगा वरिष्ठ अधिवक्ता। प्रस्तुति होगी अवधेश कुमार गौतम की। शाम 7:31 पर सुगम संगीत में समीर नियाजी की आवाज में समात फरमाइएगा कुछ गजलें। गीत गाता चल आप तक पहुंचाएंगे रात्रि 8:00। रात्रि 9:30 पर कवि गोष्ठी में सुनिएगा, जिसमें कवि होंगे डॉक्टर महेंद्र प्रसाद पांडे, श्री उदय प्रकाश सक्सेना, श्री राम किशोर वर्मा और श्री जितेंद्र कुमार सक्सेना। खेल दर्पण कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 10:00। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। गीतांजलि आप तक पहुंचाएंगे रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग।
3: एपिसोड नंबर 336।

रावण का यज्ञ विध्वंस करने के लिए वानर भालू आ पहुंचे हैं, किंतु अपने उत्पात से जब वे उसे वेदी से नहीं उठा पाए तो उसके शरीर पर अपने भीमकाय दांतों और लातों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, किंतु उसका ध्यान तब भी भंग नहीं हुआ। वानर भालुओं ने तब वहां की स्त्रियों के केश पकड़कर महल से बाहर घसीटना आरंभ किया। रावण अब अपना धैर्य खो बैठा और उठकर वानरों के पैर पकड़ पकड़ कर उन्हें धरती पर पटकने लगा, किंतु इस प्रकार उसका यज्ञ तो भंग हो ही गया। रावण अपनी सेना फिर से सजाकर युद्ध भूमि की ओर अग्रसर होता है। अब शकुन रूप में उसके सिर पर गीद मंडरा रहे हैं, किंतु इसकी अनदेखी करके वह युद्ध का डंका बजवाता है और एक बार फिर घमासान युद्ध होने लगता है। युद्ध के बाद युद्ध, फिर और युद्ध। देवताओं का धैर्य टूटने लगा है। वे प्रभु से विनती करते हैं कि अब और विलंब न करके वे रावण का वध करें। श्रीराम अपना शारंग धनुष लेकर जब युद्ध के लिए अग्रसर होते हैं तो धरती डगमगाने लगती है।

0: की इस चिंगारी से दिल मोम हुआ है पत्थर का, अजमेर की जामा मस्जिद में खुद अक्स है जैनी मंदिर का।
1: जी हाँ, कसरत में वहदत की शानदार मिसाल।
0: मुख्तलिफ रंगो नस्ल और अलग अलग खुशबुओं के खूबसूरत फूलों का हसीन गुलदस्ता
1: हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान,
0: दुनिया का एक वाहिद मुल्क,
1: गंगा जमनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल।
0: आइए रखें इस इत्तेहाद को कायम,
1: अपने मुल्क को बनाएं अमनो सुकून का गहवारा।
0: हम एक थे,
1: हम एक हैं,
0: हम एक रहेंगे,
1: कायम करेंगे अमन,
0: देंगे सबक दुनिया को
1: प्यार का।

0: क्यों करते मुझको बर्बाद, बस इतना तो रखना याद, मेरे बिना संभव न जीवन, सर्व सुलभ मैं हूँ अमूल धन।
1: जी हाँ, पानी है जीवन की आस, जल संरक्षण का करो प्रयास।

0: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर। आपका अपना आकाशवाणी रामपुर, जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर पर। सवेरे के 7:18 होने वाले हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा। घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर बाद एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरा छोड़कर लखनऊ आए और सीधे घटनास्थल पर जाकर स्थिति की जानकारी ली और बाद में केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस इमारत में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसमें कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद उन्होंने केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। रक्षा मंत्री ने घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच दल बनाया है। वहीं सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अफसरों को निलंबित कर दिया है। मामले को लेकर पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रताप शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई मंत्रियों ने लखनऊ के इस अग्निकांड को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाभी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक तथा उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को पछाड़ दिया है।
4: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
2: प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
2: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीट भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
6: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए, हर सेक्टर में है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे CBG प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
2: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य और व्यापार, पर्यटन भी बढ़ेगा। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा, घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
7: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:31 हुए हैं। आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुबह की हवाएं कुछ पैगाम लाती हैं, खुशबू से भरी हर याद जगाती हैं। रब से जब भी मांगते हैं आपके लिए दुआ, तो लबों पर सबसे पहले सलाम और अदब की बात आती है। इन्हीं दुआओं के साथ कबूल कीजिए सुबह सवेरे की आज की इस महफिल में शहज़ियाग़ा का सलाम अदब नमस्कार।

खेलों से बढ़ता है सम्मान, ओलंपिक देता है एकता का ज्ञान, मेहनत साहस और उत्साह अपार, खिलाड़ी बढ़ाएं देश का मान सम्मान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओलंपिक दिवस की, जो कि हर साल 23 जून को मनाया जाता है, जो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की याद दिलाता है। ये दिन लोगों को खेल, फिटनेस और वैश्विक एकता के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक पियरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद साल 1948 में पहली बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक दिवस मनाया गया, जिसका मकसद दुनिया के हर कोने तक खेलों को पहुंचाना था। हर साल ये दिन एक विशेष संदेश या थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल का मुख्य अभियान, मुख्य थीम लेट्स मूव यू कैन डू दिस है, जो विशेष रूप से युवाओं को अपने अंदर के संकोच और झिझक को छोड़कर फिटनेस और पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि खेल केवल पदक जीतने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी है।

श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के इतिहास की। तो इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन अपने अंदर बहुत कुछ समा कर रखता है। इतिहास में हर दिन का अपना एक विशेष महत्व है। ऐसा ही एक दिन है 23 जून, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गया है। तो जानते हैं आज के इतिहास में क्या क्या है। 23 जून परिवहन विमान पर हमले के बाद सरायवो से लोगों को बाहर निकालने का काम राष्ट्रीय संघ अधिकारियों ने स्थगित किया। आज ही के दिन 23 जून को तुर्की का प्रथम दूरसंचार उपग्रह तुर्कसैट प्रथम अटलांटिक महासागर में गिरा। 1757 में प्लासी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और 23 जून को ही 1985 में एयर इंडिया का विमान कनिष्क उड़ान 182 आयरलैंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 329 लोगों की जान चली गई। और आज ही के दिन जन्म हुआ 23 जून 1901 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे। और अंग्रेज गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलम ट्यूरिंग का जन्म भी 23 जून 1912 में हुआ था। अब बात करते हैं पुण्यतिथि और आज के दिन हुए निधन के बारे में। आज ही के दिन निधन हुआ 1853 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो महान शिक्षाविद, चिंतक और साथ ही भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। वर्ष 1914 में निधन हुआ गंगा प्रसाद वर्मा, जो कि राजनेता और समाज सुधारक थे। और आज ही के दिन गिजुभाई बधेगा, जो गुजराती भाषा के लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे, आपका निधन भी आज ही के दिन हुआ। और 23 जून 1985 का ही वो दिन था जब एयर इंडिया का एक यात्री विमान आयरलैंड तट के करीब हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और 329 यात्रियों की मौत हुई थी। हादसे के समय विमान अपने गंतव्य हीथ्रो हवाई अड्डे से मात्र 45 मिनट की दूरी पर था। इसी विमान में देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की मृत्यु हुई थी। तो श्रोताओं, ये तो था आज का इतिहास। और अब नजर डालते हैं आज के देश विदेश की सुर्खियों के बारे में। लखनऊ में आग से 15 छात्र जिंदा जले। अलीगंज के सेक्टर डी स्थित एक एनिमेशन सेंटर और प्लास्टिक पेंट क्लिनिक में सोमवार दोपहर लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में अधिकांश एनिमेशन सेंटर में कोचिंग में पढ़ रहे छात्र छात्राएं शामिल हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कई घायल छात्रों को गंभीर हालत में KGMU के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। दोपहर बाद अचानक लगी आग ने कुछ ही सेकंडों में पूरी इमारत को चपेट में ले लिया। बदहवास छात्र जान बचाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ भागे, लेकिन वहां आखिरी गेट पर ताला लगा हुआ था। रास्ता बंद होने के कारण छात्र वहीं फंस गए। वहीं कुछ छात्रों ने खिड़कियों का शीशा तोड़कर नीचे छलांग लगा दी। इस दौरान एक छात्र नीचे लगी लोहे की नुकीली ग्रिल की चपेट में आ गया, जो उसके शरीर में घुस गई। घटनास्थल पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अग्निकांड की भाव्यता और शवों को देखकर भावुक हो गए और फपक पड़े। 15 घरों के 15 चिराग बुझ गए।

लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं तो मौसम वैज्ञानिक 25 जून से प्री मानसून का अनुमान जता रहे हैं। दिन चढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता गया। सोमवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह में सूरज में तेजी, दोपहर होने तक तपिश बढ़ गई और लोगों का गर्मी से गला सूखने लगा। भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए लोगों ने जगह जगह सबीले लगाकर पानी पिलाया, शरबत पिलाया। प्यास बुझाने के लिए लोगों ने कोल्ड ड्रिंक का भी इस्तेमाल किया और बेल का शरबत पीना अधिक पसंद कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये शरीर को ताकत तो देता ही है और पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद है, जो पेट को ठंडा रखता है। सुहल जर्मनी में भारत के युवा निशानेबाज प्रीतम केंद्रे ने अपने कौशल का शानदार नमूना पेश करते हुए रविवार को यहां के IASF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता, जिससे उसके पदकों की कुल संख्या 11 हो गई। इनमें 5 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। अपने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग ले रहे 16 वर्षीय प्रीतम ने 8 खिलाड़ियों के फाइनल में 251.13 का स्कोर बनाकर तटस्थ खिलाड़ी टिमो फेई एलकॉक और नॉर्वे के जिम्स ऑस्ट्रेली के पीछे छोड़ते हुए भारत को आगे स्वर्ण पदक दिलाया। और 9 रामपुर वासियों के लिए एक खुशखबरी, 9 जुलाई को सजेंगे सामूहिक विवाह मंडप। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह मंडप का आयोजन किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह 9 जुलाई को होंगे। वरवधु आधार कार्ड में बायोमेट्रिक एवं फेस अपडेट अवश्य कराएं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सूरज कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लाभार्थी जोड़ों की बायोमेट्रिक एवं फेशियल ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया लागू की गई है। 2 प्रकार के प्रमाणीकरण की व्यवस्था उपलब्ध है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट और फेशियल ऑथेंटिकेशन, चेहरे की पहचान। सभी लाभार्थी जोड़ों से अपील की गई है कि वे ये सुनिश्चित कर लें कि उनके फिंगरप्रिंट एवं चेहरे का विवरण आधार कार्ड में होना जरूरी है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप CRPF में उप महानिरीक्षक पूर्ण सिंह धर्मशक्तु की अध्यक्षता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योगा फॉर हेल्दी एंजिंग की विशेष थीम के अंतर्गत मनाया गया। उप महानिरीक्षक पूर्ण सिंह धर्मशक्तु ने कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत के नागरिकों को निरोग और स्वस्थ रहने के लिए योग को अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना जरूरी है।

जन जन की सेवा का जो दायित्व निभाते हैं, सार्वजनिक सेवक ही राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। सेवा, समर्पण और कर्तव्य का संदेश ये दिवस देता है, उन्नति और विकास के पथ पर देश को अग्रसर करता है। जी हाँ श्रोताओं, आज 23 जून और आज है संयुक्त राष्ट्रीय सार्वजनिक लोक सेवा दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। इस दिन को मनाने का मकसद समाज और देश में विकास में लोक सेवकों यानी सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों, शिक्षकों और सफाई कर्मचारियों के कड़े परिश्रम, ईमानदारी और योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 23 जून को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ईमानदार, पारदर्शी और जनहितकारी सेवाएँ किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय के प्रति लोक सेवकों के योगदान, समर्पण और उनके काम के महत्व को सम्मानित करना है। इसे 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। ये महज एक तारीख नहीं बल्कि याद दिलाने का जरिया है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके लोक सेवकों की निष्ठा पर टिकी होती है। एक आम नागरिक के तौर पर हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम नियमों का पालन करें और देश के विकास में अपना फर्ज निभा रहे इन लोक सेवकों का सम्मान करें, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसके अलावा आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। इसे 2011 में मनाना शुरू किया गया था ताकि विधवाओं को विशेष पहचान मिल जाए। इस दिन को मनाने का मकसद समाज में विधवा महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूकता फैलाना है। कई विधवा महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और भावात्मक कठिनाइयों का सामना करती हैं। ये दिवस हमें उनके प्रति संवेदनशील होने, समान अवसर देने और आत्मनिर्भर बनाने का संदेश देता है। और श्रोताओं, आज ही के दिन टाइपराइटर डे भी मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1868 में अमेरिकी आविष्कारक क्रिस्टोफर लैथम शॉल्स को टाइपराइटर के आविष्कारक के लिए पेटेंट मिला था। टाइपराइटर को सन 1714 और 1800 में भी बनाया गया था, लेकिन उन्हें क्वार्टी कीबोर्ड वाला टाइपराइटर बनाने के लिए जाना जाता है। श्रोताओं, ये तो थी आज की कुछ विशेष दिनों की जानकारी। अब आपको सुनवाते हैं ये गीत।

और खुश रहिए। आकाशवाणी रामपुर से इसी तरह जुड़े रहिए। सुबह सवेरे की आज की इस महफिल को अब यहीं समाप्त करने की जैसी आगा को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ की होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
2: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
2: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
4: मैं रैप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
5: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं।

0: दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति

0: भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
2: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
1: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: मिस्टर मोदी सेड नियरली 25 करोड़ पीपल हैड मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी इन रीसेंट ईयर्स, लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ अ लार्ज न्यू मिडिल क्लास एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी।
2: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
1: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में चार ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। चार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज अब नए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेरे एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे, इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
0: G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तज़किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत की पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार के गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोख और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
0: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवीयत मिली है।
1: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है।

0: लाख टन है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मीटिंग के मौके पर यह बातचीत हुई। जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफैन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहिमत कायम करने में मदद मिलेगी। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुक्काम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सिफारत खाना इस हादसे से मुतासिर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदान की मदद के लिए कतरी हुकाम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम अज कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया कि दोहा में रास लफान जोन में वाकई शहर के अहम रकीक कुदरती गैस LNG की प्रोसेसिंग के मकाम पर ये तकनीकी हादसा पेश आया। कतर के तवानाई के वजीर ने कहा कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासिर नहीं होंगी। US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। इसमें सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। मर्दों के सिंगल सुमरे के पहले राउंड में आलमी नंबर 14 लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन काराजी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू का सामना करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मीनाक्षी की जोड़ी इंडोनेशिया के वीरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। मर्दों के FIH हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। चीन के हुलुम्बियर में मुनक्किदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत एक काबिल भरोसा मईशत के तौर पर दुनिया में तेजी से उभर रहा है। पिछले 12 वर्षों में शुरू की गई फलाही स्कीमों से आवाम को फायदा पहुंचा है। वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर ने मंगोलिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तालीम और सकाफत और कई तरक्याती प्रोजेक्टों समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। अजीत डोभाल की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की दो रोजा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में नई टेक्नोलॉजी के रोल पर हुई बातचीत, ये खबर भी आज के अखबारों ने खुसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान LNG धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں. سویرے کے 8:45 ہوئے ہیں, آپ کو سنوا رہے ہیں 102.9 مارننگ ہٹس.

कार्यक्रम का पहला गीत बी पराग की आवाज़ में, फिल्म का नाम है एनिमल।

श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी रामपुर के साथ और सुन रहे हैं 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम का अगला गीत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में, फिल्म का नाम है रेड 2।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को फिल्म तू झूठी मैं मक्कार में। कार्यक्रम का अगला गीत अर्जुन राघव की आवाज़ में, फिल्म का नाम है बेटा।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग हिट्स मीडियम वेव 336.7 मीटर पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतीय का।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के तहत महोबा में योग सप्ताह का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। योग के माध्यम से स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का संदेश दिया गया। योग प्रशिक्षक शकिन गुप्ता, सुनीता कुशवाहा ने प्रतिभागियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया। योग सप्ताह के तहत 18 जून को नगर पक्षी विहार, 19 जून को जैन तीर्थांकर मंदिर तथा 20 जून को आधारशिला वृद्धाश्रम एवं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर योग किया। योग शिविर में शामिल 85 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और आज विश्व में 170 से अधिक देशों में लोग योग अपना रहे हैं।
3: इस बार जो थीम है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि वृद्ध जनों को जो है प्रोत्साहित करिए, वो मंदिरों में भजन पूजन रामायण गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप से जब तक किए कि सारे वृद्ध जन योगाभ्यास नित्य करें, ताकि हम करेंगे वृद्ध जन तो हमारे बच्चे नाती पोते सब उसको देख करके करेंगे और चारों तरफ जो है एक निरोग का जो वातावरण है वो तो कायम होगा।
2: उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम वृद्ध जनों के स्वस्थ जीवन को समर्पित है और योग के माध्यम से बुजुर्ग न केवल निरोगी रह सकते हैं बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से महोबा में नया जिला विकास प्रबंधक कार्यालय स्थापित कर दिया है। इससे अब जिले में कृषि व ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अभी तक हमीरपुर के जिला विकास कार्यालय की ओर से महोबा जिले में नाबार्ड की गतिविधियां संचालित होती थीं। महोबा की विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने यहां कार्यालय खोला है, ताकि बेहतर पहुंच, हितधारकों के साथ निकट समन्वय स्थापित हो सके। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक डॉक्टर पुनीत कुमार ने बताया कि नाबार्ड पहले से ही महोबा में कई योजनाओं का समर्थन कर रहा है, जिसमें सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण, किसान समूह, वाटर सेड, विकास व आजीविका संवर्धन शामिल हैं। अब ऋण प्रवाह में सुधार होगा और जनपद के ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अब तक मोरंग और गिट्टी के लिए पहचान रखने वाला महोबा जनपद जल्द ही जिरकोनियम जैसे बहुमूल्य खनिज के लिए भी जाना जाएगा। हरपालपुर और महोबकंठ क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले जिरकोनियम भंडार की पुष्टि हुई है। इसके खनन का लाइसेंस बंगाल की माहेश्वरी माइनिंग कंपनी को दिया गया है। जिरकोनियम का उपयोग दंत चिकित्सा, आभूषण निर्माण, रासायनिक उद्योगों और उच्च तापमान वाले संयंत्रों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस खनिज का भंडार मिला है। इससे महोबा को नई पहचान मिलेगी। इसके खनन से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही खनन और उससे जुड़े उद्योगों में निवेश बढ़ेगा। महोबा देश के महत्वपूर्ण खनिज मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। जिरकोनियम उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश अब उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के बाद देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत महोबा जिले में प्याज लहसुन के आधुनिक भंडार गृह बनाए जाएंगे। इन्हें खास तौर पर बांस और टीन से तैयार किया जाएगा। यह सभी प्राकृतिक तरीके से बनेंगे। सरकार इसके लिए किसानों को अनुदान देगी, ताकि पैदावार सुरक्षित रहे और किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर न हो। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में करीब 500 हेक्टेयर में प्याज और 200 हेक्टेयर में लहसुन की खेती होती है। हर साल भंडारण न होने से 10-15% फसल बर्बाद हो जाती है। नए भंडार गृह बनाने से किसान अपनी उपज रोककर अच्छे दाम मिलने पर बेच सकेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ने को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अनुदान भी देगी। योजना अंतर्गत कुल इकाई लागत का 50% या अधिकतम 30 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों से शासन की इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा को 697 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 13 साल बाद गोरखगिरी पहुंचे सीएम ने यहां रोपवे बनाने और इसे एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप मिसाइलों से पाकिस्तान और दुश्मन थर्रा रहा और यहां के देसावरी पान को पहचान और बीड़े के जरिए क्षेत्र को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते करते हुए अर्जुन सहायक परियोजना केन बेतवा लिंक और हर घर नल योजना का जिक्र किया, जिसने बुंदेलखंड की बहनों को पानी के संकट से मुक्ति दिलाई। महोबा जिले में शिक्षा और ज्ञान वर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सदर विधायक राकेश गोस्वामी, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर एवं जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने संयुक्त रूप से राठ रोड स्थित राजकीय पुस्तकालय में 5 स्मार्ट लाइब्रेरी का फीता काटकर शुभारंभ किया।
1: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन श्रीवास्तव का।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा एनडीए सरकार के 12 वर्ष सफल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान और जश्न मना रही है। इस अवसर पर भाजपा ने सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित बताया है। इस क्रम में भाजपा देश भर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन और मीडिया संवाद आयोजित कर रही है। सरकार की इन बड़ी उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के लिए पार्टी द्वारा 5 विशेष बुकलेट भी जारी की गई है। पार्टी का संकल्प है कि इन नीतियों के आधार बनाकर साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विकास खंड परिसर में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल व पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह कार्यक्रम में पहुँचे, जहाँ पर खंड विकास अधिकारी कृतिका अवस्थी ने सभी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान सांसद व विधायक ने उपस्थित जन समूह को संबोधित किया, साथ ही केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लोगों में साझा की।
5: भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी विकास खंडों पे केंद्र सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है और एक स्वास्थ्य शिविर 14 जून से 16 जून तक भी लगाया गया।
4: जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित हिंदू भवन में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन को सेवा, समर्पण और जन कल्याण की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर 55 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान उपस्थित हिंदू संगठन के लोग व भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना भी की। जनपद सिद्धार्थनगर की थाना सोरतगढ़ पुलिस व सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है कि अपराध व अपराधियों पर निरंतर अंकुश लगाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभिषेक महाजन के नेतृत्व में जिले की पुलिस व सहयोगी पुलिस टीम सक्रिय है। सोरतगढ़ थाना अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह, SI संतोष यादव, मैं पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर गंचौरा तालाब के पास एक युवक को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने चोरी के सोने चांदी के आभूषण व 5,000 रुपए नकद बरामद किया। जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय महुई से नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष का भव्य उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वल और माल्यार्पण किया। इसके साथ ही विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति की गयी, जिसकी मुख्य अतिथि द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गयी। सिद्धार्थनगर जिले में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत मिठवल ब्लॉक के ग्राम पंचायत बघौली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पूर्व मंत्री विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने पर सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के द्वारा 12 साल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा और बताया गया कि किस प्रकार से इन 12 सालों में केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगातार विकास के कार्य किए गए। सिद्धार्थनगर जिले में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को लेकर बांसी स्थित राप्ती नदी तट पर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत एवं बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान SDRF प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, नगर पालिका तथा आपदा मित्रों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन कर आपात स्थिति से त्वरित कार्रवाई की तैयारियों का जायजा लिया। सिद्धार्थनगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगाए गए इन सीसीटीवी कैमरों और ककराहा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर अस्थायी कमरा और शौचालय का निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
0: जिले की हलचल समाप्त हुई।
6: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:25 हो चुके हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं गौरव भारत देश के।
7: क्वांटम यांत्रिकी के विकास में प्रमुख योगदान देने वाले सत्येंद्र नाथ बोस भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है, जिनकी गणना विश्व के महान वैज्ञानिकों में होती है। उनका जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे एक महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। सत्येंद्रनाथ बोस की प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में हुई। वे शुरू से ही एक होनहार विद्यार्थी थे और गणित में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से गणित में MSc की डिग्री प्राप्त की और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी सबसे प्रमुख उपलब्धि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी है, जिसे उन्होंने 1924 में विकसित किया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके इस सिद्धांत को और विस्तार से समझाया और इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का नाम दिया। यह सिद्धांत उन कणों के व्यवहार का वर्णन करता है जिन्हें अब बोसोन कहा जाता है। सत्येंद्रनाथ बोस ने अपने जीवन काल में कई प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन किया। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और वहां विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय में भी प्रोफेसर रहे। सत्येंद्रनाथ बोस को उनके योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। भारतीय सरकार ने उन्हें 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनके नाम पर बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की गई, जो भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है। उनकी वैज्ञानिक दृष्टि और योगदान ने विज्ञान के क्षेत्र में नई दिशाएं खोली और उन्होंने भारतीय विज्ञान को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनका निधन 4 फरवरी 1974 को हुआ, लेकिन उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। वे भारतीय विज्ञान के एक महान नायक थे, जिनकी विद्वता और अनुसंधान ने विज्ञान की दुनिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
6: गौरव भारत देश के, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इसमें सत्येंद्र नाथ बोस के जीवन पर आपने प्रसंग सुना। पेशकश थी अवधेश कुमार गौतम की।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। सामाइन थोड़ी ही देर में आप समाप्त फरमाएंगे उर्दू प्रोग्राम।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम। सलाम उन पर तहे तेग भी जिन्होंने कहा, सलाम उन पर तहे तेग भी जिन्होंने कहा, जो तेरा हुक्म, जो तेरी रजा, जो तू चाहे। ऐसी हस्तियों पर सलाम भेजते हुए आपके प्रोग्राम की मेज़बान रबाब अंजुम रामपुर रेडियो मरकज से आपकी खिदमत में हाजिर है। सलामे सुबह कबूल करें। समिन माह मुहर्रम, इस्लामी साल का पहला माह। मुहर्रम जिसके मायने हैं मुअज्जम, मुहतरम और मौजिज। इस माह का शुमार अशहरे हरम में से है जिनकी अजमत और फजीलत किताब सुन्नत में आई है। ये वो हुरमत वाला महीना है जिसमें हर नेकी और हर नेक अमल का, हर इबादत का सवाब दोगुना कर दिया जाता है। मुहर्रमुल हराम उन चार महीनों में से एक है जिनकी हुरमत और अजमत को अल्लाह ताला ने कायनात बनाते वक्त ही लिख दिया था। इस माह मुहर्रम की 10 तारीख, जिसे हम यौम आशूरा भी कहते हैं, इसकी अहमियत, इसकी खासियत, इसकी फजीलत दुनिया के बनने से लेकर हमेशा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाकई करबला के बाद इस दिन की अहमियत हमने पहचानी, बल्कि यह दीगर बात है कि शहादत हुसैन ने इस दिन की अहमियत और अजमत को दुबाला कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश 10 मुहर्रम को ही हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जबल जुदी पर इसी दिन ही आ ठहरी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसी 10 तारीख को मछली के पेट से बाहर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रमुल हराम को ही आग से खलासी मिली। और यही वो दिन था जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी दिन अपनी कौम समेत फिरौन से निजात पाई और फिरौन इसी दिन दरियाए नील में गर्क हुआ। इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश के बाद बादशाहत मिली। इसी रोज़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बाद इम्तिहान शिफा मिली। इसी दिन हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। और यही वो दिन है जिसमें जिगरगोशे रसूल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बातिल से टकरा कर जामे शहादत गले लगाया। और यही वो दिन होगा कि जब कायनात की बिसात लपेट कर कयामत बर्पा कर दी जाएगी। इसलिए इस दिन की अहमियत हमेशा से रही। यौम आशूरा की फसीलत इस बात से भी जाहिर होती है कि इस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले से भी रोज़ा रखा जाता था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आशूरे का रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए तो इख्तियार दिया गया कि जो चाहे रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। इस दिन रोज़ा रखने का सवाब ये है कि साले गुज़िश्ता के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इब्तिदा में सिर्फ 10 मुहर्रम का ही रोज़ा रखा जाता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मालूम हुआ कि यहूद भी रोज़ा रखा करते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मुखालफत में मज़ीद एक रोज़े इजाफा करने का हुक्म दिया और कहा, यौम आशूरा के साथ या तो 9 तारीख को रोज़ा रख लिया जाए या 11 तारीख को यौम आशूरा के साथ रोज़ा रख लिया जाएंगे। तो इन दो रोज़ों की अहमियत और इफादियत और अजमत बहुत बढ़कर है, बहुत सवाब है। और इसके अलावा चंद काम और भी हैं जो इस माह में किए जाएं, तो उनके अजर सवाब दोगुने हो जाते हैं। यौम आशूरे के रोज़े के साथ साथ घर वालों पर खर्च में तौसी करना, फ़राइज़ का अहतमाम और नफली इबादत बकसरत करना, गुनाहों से बचने की कोशिश करना और जहाँ तक हो सके सुन्नतों को आम करना और ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों पर अमल करना। तो सामीन बज़्म, इस ख़ास दिन, इस ख़ास माह और इन 10 दिनों की फजीलत को देखते हुए हमने आज
आपको एक फीचर सुनवाने का एहतमाम किया है।

0: खुशी के और खुशी के त्योहार जो कि मनाए जाते हैं वक्त मुकर्रा पर किसी वाक़े किसी दिन या फिर किसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत की याद में।
1: ऐसे ही मुसलमानों की एक जमात जो कि कहलाई जाती है शिया, वो भी अपना एक अलग त्योहार मनाते हैं। मगर सामीन, ये त्योहार बजाय खुशी और जश्न के होता है गम का, मातम का त्योहार। ये त्योहार याद किया जाता है मुहर्रम के नाम से। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम जैसे ही शुरू होता है, मुसलमानों में ताजा हो जाती है याद उन शहदाए करबला की जिन्होंने अपनी बेशकीमती जाने, अपना मालो असबाब, अपना साजो सामान और अपने अहलो अयाल सब कुर्बान कर दिए अल्लाह की राह में।
0: इस्लामी तारीख पुर है ऐसे वाकयात से जो अहले इस्लाम के लिए जरिया बन गए हैं पुख्तगी ईमान का, यकीन कामिल का।
1: इस्लामी तारीख तो भरी पड़ी है ऐसे कफन बर्दोश मुजाहिदों से, ऐसे शहादत के मतवालों से जिनकी जूफिशां रोजे अव्वल से ताबद जगमगाती रहेगी।
0: ऐसे ही मुहर्रम का महीना यादगार है एक अजीम और बेमिसाल कुर्बानी के लिए।
1: मुहर्रम के महीने में तमाम दुनिया के मुसलमान याद करते हैं हजरत इमाम हुसैन और उनके रुफकाए दीन की शहादत के अलमनाक वाकयात और ताज़ा करते हैं अपने सीनों में ईमान को और गुनगाते हैं उन शहदा के ईसार, शुजात और हक परस्ती के।
0: वाकये करबला का तारीखी पस मंजर ये था कि पैगंबर इस्लाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन मुस्तहिक थे खिलाफत इस्लाम के, लेकिन दुश्मन इस्लाम यजीद जानशीन हो गया तख्त खिलाफत पर।
1: दुश्मन इस्लाम यजीद ने अपनी ताकत और शोहरत के बल पर हजरत इमाम हसन को जहर देकर मरवा डाला और मजबूर कर दिया इमाम हुसैन को जिला वतनी पर। लेकिन बहुत से अहले ईमान जो पसंद करते थे हक व सदाकत को, जो जानते थे इमाम हसन और हुसैन की पाकबाजी और सदाकत को, वो तमाम लोग आमिले इमाम हुसैन के साथ और जंग आजमा हुए यजीद के खिलाफ। हक व नाहक की जंग तकरीबन जारी रही 20 साल तक और आखिरकार मैदान करबला में इख्तिताम हुआ इस खूनी दास्तान का। यजीद की मुसल्लह फौजों ने घेर लिया इमाम हुसैन की मुट्ठी भर फौज को और तरह तरह की तकालीफ और परेशानियां देकर हजरत इमाम हुसैन की फौज को बेबस कर दिया। खुर्दोनोश के जराए मुनक़ते कर दिए, महरूम कर दिया गया बच्चों, बूढ़ों और औरतों को पानी की एक एक बूंद से भी। भूख और प्यास की शिद्दत से हर शख्स निढाल और जां बलक था। आखिरकार करबला की फैसला कुन जंग खत्म हुई 10 दिन के मारके के बाद।
0: दर हकीकत ये जंग जंग थी हक व बातिल की और मारका था दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ। ये था वो पस मंजर जो सबब है मुहर्रम को याद रखने का। इसी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख कहलाई जाती है यौम आशूरा।
1: हजरत इमाम हुसैन के चाहने वालों की न उस वक्त कमी थी और न अब है। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हजरत इमाम हुसैन के बारे में क्या खूब इजहार ख्याल किया है, फरमाते हैं, दीनस्थ हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन, दीनस्थ हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन।
0: ये दिन बहुत अजीम है तारीख इस्लाम में।
1: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत सिर्फ तारीख इस्लाम का ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा अलमिया है दुनिया का। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वाकयात करबला ऐसे वाकयात हैं जो कि मुनफरिद और बेमिसाल हैं इस्लामी तारीख में। अक्कास हैं आशिकान इस्लाम की कुर्बानियों और जानिसारियों के, शहादतों की यजीम शान दास्तान जो रकम हुई तारीख इस्लाम के रोशन और पुरनूर पन्नों पर। शहादत ख्वाह किसी की भी हो।

0: बाई से नेमत हुआ करती है। ये जन्नत का तोहफा है मोमिन के लिए। राहे हक में मोमिन की शहादत ही मोमिन का ऐन मतलूब है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई।
1: आज भी जरूरत है कि उल्टा जाए उन सफात को और यादें ताजा की जाएं उस वाकया करबला की। जरूरी है कि हर मुसलमान उनको याद खुदा के साथ साथ नक्श कर ले अपने जहनो दिल पर और अश्क बहाए आले नबी की तकालीफ और परेशानियों पर, ख्याल करे उनके इशार और जज्बाए शहादत का, क्योंकि ये तमाम काम उन्होंने हमारे और हमारे इस्लाम की बकाओ हिफाजत के लिए किए।
0: गुजर जाएंगे अहले दर्द रह जाएगी याद उनकी, गुजर जाएंगे अहले दर्द रह जाएगी याद उनकी, वफा का दर्स जब होगा तो उनके जिक्र पर होगा।
1: उन बुजुर्गों ने दीन की शहादतें सिर्फ मातम करने के लिए नहीं है, सिर्फ मातम करने के लिए नहीं है, बल्कि दर्स है इस्लाम पर मजबूती से कायम रहने का।
0: उनको मातम और आहुबुका से याद करने के साथ साथ उनके इशार और कुर्बानी को मिशले राह समझकर अमल पैरा होना चाहिए जिसने उन हस्तियों को जिंदा जावेद बनाया। मातम वो करें जो मुनकिर हो हयाते शहदा के, मातम वो करें जो मुनकिर हो हयाते शहदा के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते।
2: माह शहादत मुहर्रमुल हराम, अभी आपने ये फीचर समाप्त किया जिसमें आवाजें थी फरीदुल्ला खान और फैजा जुबैर की, तहरीर थी फैजा जुबैर की। और आइए समीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इसी माह मुहर्रम की मुनासिबत से कमर हसन नकवी का ये कलाम, समाप्त किया।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए डॉक्टर रंजना अग्रहरी के गाए कुछ अवधी लोक गीत। सबसे पहले सुनिए आपके स्वर में ये देवी गीत।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं रजा हुसैन खां का सारंगी वादन राग पूरिया।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत। इसमें आप सुन रहे थे रजा हुसैन खां का सारंगी वादन, राग था पूरिया।

0: की इस चिंगारी से दिल मोम हुआ है पत्थर का, अजमेर की जामा मस्जिद में खुद अक्स है जैनी मंदिर का।
1: जी हाँ, कसरत में वहदत की शानदार मिसाल।
0: मुख्तलिफ रंगो नस्ल और अलग अलग खुशबुओं के खूबसूरत फूलों का हसीन गुलदस्ता
1: हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान,
0: दुनिया का एक वाहिद मुल्क,
1: गंगा जमनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल।
0: आइए रखें इस इत्तेहाद को कायम,
1: अपने मुल्क को बनाएं अमन और सुकून का गहवारा।
0: हम एक थे,
1: हम एक हैं,
0: हम एक रहेंगे,
1: कायम करेंगे अमन,
0: देंगे सबक दुनिया को
1: प्यार का।

आपके अनुरोध कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शहजी आगा का नमस्कार। आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में। आपकी फरमाइशों के साथ आगाज करते हैं आपके अनुरोध का, और देखते हैं कार्यक्रम का पहला अनुरोध हम तक कौन से हमारे श्रोता का पहुंचा है। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिब, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शदाब खत्री, मिहिरनगर अमरेड खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गेवारकर, श्रीमती सरिता गेवारकर, प्रिंस एकांश गेवारकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गेवारकर, प्रणीता गेवारकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से विशाली शैलेश गेवारकर, श्वेता सुमित कुमारी धवनी परी और लाडला टुक टुक गेवारकर, गांधी रोड चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेन बिरक और मीका बिरक, महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया, भाटपारा ततरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। आप सबकी फरमाइश पर कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में जीत फिल्म का ये गीत आपकी नज़र।

श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी रामपुर के साथ और सुन रहे हैं फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर शहज़ी आगा के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म आरजू का ये गीत ख्वाहिश हमारे आप सभी श्रोताओं की मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी, हिना कौसर, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बाबी खान, शमा खान, मिक्की बुशरा, आसिम खान।

और कार्यक्रम की अगली फरमाइश, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेरा जहां बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डॉम सरफुद्दीन डॉम कुमारी वली जील रोड मथुरा से वसीम आसमा अकरम आसमा उल्ला आसमा सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया थापा सोनम थापा रेशमा थापा अदीबा थापा पंजूसराय संबल से छोटे अंसारी आलम अंसारी सईद मुख्तार अंसारी असद अंसारी परी महल कासगंज से आबाद खान नवील खान आरफा खान इल्मा खान असलम सैफी मीर सराय बदायूं से आफरीन खान जमीर खान जातुगा किशनपुर से आलम दिलकर शबाना नाज रिजवान रही इमरान राजा आलम शेख शबाना आलम चांदीना सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर वकील रही फिरोज आलम नाज परवीन गरीब नवाज कॉलोनी वंदा नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी शोभा भूपेंद्र रघुवंशी बबीता सुरेंद्र पूजा विक्की स्वाति प्रयाग चौधरी मालती चौधरी गणेश कार्तिक खर्चे संजना परी खर्चे ललित नारायण खर्चे बेडी से राजेश सोनी कंचन गायत्री वैष्णवी चंचल अर्जुन गवनेकर धीरज सव्वा सेरे छात्रपति संभाजी नगर से राजेश सामले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश जिला खांडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे राहुल कुमार धनजे विशाल कुमार धनजे शीला गायत्री धनजे कुर्ती रोड मानपुर से विजय वैद रानी वेद महिमा वैद नीतू वैद पंडित नंगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से अख्तर हुसैन बहारुल निशा असलम हुसैन महमूद हसन बीपी पुर से मकसूद हुसैन नाजिम अली एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा कुमारी देविका चौधरी कार्तिक संजना पागरा शिंदी तहसील वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र धोडिम्बा इंगोले सिद्धांत इंगोले टिंकू इंगोले रामाबाई सुरेंद्र इंगोले मयूरी सुरभि मंजूषा गौतम नामदेव शिंदे पाटिल मास्टर विलास शिंदे अशोकनगर वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू ठेके पार्वती सखराम ठेके रोहित सोनू मोनू ठेके जीजा माता नगर हिंगोली महाराष्ट्र से तामसा रोड तहसील अदगांव से श्यामराव बेबी बिट्टू कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय श्रीमती उषा रॉय अमित कुमार हैप्पी रॉय दोबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय श्रीमती रोशनी रॉय प्रांजल रॉय शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश रॉय श्रीमती प्रीति रॉय नवनीत रॉय आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेरा जहां आप सब ने सुनना चाहा है उदित नारायण अलका याग्निक को फिल्म मन में।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हो चुके हैं, अब आपको सुनवा रहे हैं सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं 70 के दशक के कुछ फिल्मी गीत।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शहजी आखा का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम है सफ़र।

श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी रामपुर के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 70 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

0: अमर प्रेम ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत आपके लिए लेकर आए हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं।

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गुमराह फिल्म की केसी गीत के साथ कार्यक्रम सुना रहा है दौर अब समाप्त होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने 70 के दशक के कुछ फिल्मी गीत।
1: इस इतिहास
2: भारत हमको जान से प्यारा है,
1: वहदत की इस चिंगारी से दिल मोम हुआ है पत्थर का, अजमेर की जामा मस्जिद में खुद अक्स है जैनी मंदिर का।
3: जी हाँ, कसरत में वहदत की शानदार मिसाल।
1: मुख्तलिफ रंगो नस्ल और अलग अलग खुशबुओं के खूबसूरत फूलों का हसीन गुलदस्ता।
3: हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान,
1: दुनिया का एक वाहिद मुल्क,
3: गंगा जमनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल।
1: आइए रखें इस इत्तेहाद को कायम,
3: अपने मुल्क को बनाएं अमनो सुकून का गहवारा।
1: हम एक थे,
3: हम एक हैं,
1: हम एक रहेंगे,
3: कायम करेंगे अमन,
1: देंगे सबक दुनिया को
3: प्यार का।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: का हसीन गुलदस्ता,
1: हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान,
0: दुनिया का एक वाहिद मुल्क,
1: गंगा जमनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल।
0: आइए रखें इस इत्तेहाद को कायम,
1: अपने मुल्क को बनाएं अमनो सुकून का गहवारा।
0: हम एक थे,
1: हम एक हैं,
0: हम एक रहेंगे,
1: कायम करेंगे अमन,
0: देंगे सबक दुनिया को
1: प्यार का।

0: हर साल मुहर्रम का महीना आता है और माहे मुहर्रम में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। गमे हुसैन का जिक्र तो मर्सिये का मौजू है, लेकिन इससे चार बैत ने भी मौजू सुखन बनाकर ये साबित कर दिया है चार बैत गोई का दायरा लामहदूद है।
1: सज्जाद ने रो रो के कहा, शाक है जीना या शाहे मदीना, क्यों फातमा जहरा का चमन लुट गया सारा, कहिए तो खुदारा, आया न हमेरा इस मुहर्रम का महीना, या शाहे मदीना, लिल्लाह मेरे दर्द की कोई तो दवा दो, बाबा से मिला दो, कह कह के यही मर गई नाचार सकीना, या शाहे मदीना, भाई अली अकबर पे जो बरछी का हुआ वार, है दीन के सरदार, हम शक्ले पयंबर का हदफ हो गया सीना, या शाहे मदीना, जब तेरे सितम अकबरे नादा पे चला था, दो दिन का था प्यासा, कतरा भी न पानी का मयसर हुआ पीना, या शाहे मदीना, दसवीं को मुहर्रम की सितम शिब्र ने ढाया, उस सीने पे बैठा जो सीना था असरारे इलाही का खजीना, या शाहे मदीना।
0: आइए अब चार बैत के हवाले से हिंदुस्तान के बदलते मौसमों की बात करें। बसंत ऋतुराज है, मौसमों का सरताज, इसलिए सर चढ़कर बोलता है। लोक गीतों से लेकर शास्त्रीय संगीत की बंदिशों में भी बसंत को बड़ा सम्मान दिया गया है। कुटियों, महलों, मंदिरों और खानकाहों में गाया बजाया गया है।

मौसमी बसंत को भला चार बैत कैसे भूल सकती थी। नवाबी ने रामपुर भी बसंत मेले में 8-10 दिन तक बसंत मनाते थे और नवाब रामपुर रजा अली खां की चार बैत बसंत धूम मचाती थी।

0: नवाब रजा अली खां ने चार बैत बारामासा में भी हर महीने की कैफियत का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। एक बंद सुनिए।
1: माघ मास बिरवा फूले, डाल डाल पे सुमन झूले, मैं चाहूं साजन को लुभाऊं, मैं का बसंत लुभावत है। होली खेले सब नर नारी, बाट तकूं मैं श्याम तिहारी। फागन रुत भर भर पिचकारी, रजा पिया ललचावत हैं।
0: चार बैत की एक किस्म बरसाती या मलार कहलाती है, जिसे खास तौर से बरसात के मौसम में गाया जाता है। इसे मर्द भी गाते हैं और औरतें भी।
2: रिमझिम और रिमझिम।

0: उर्दू गज़ल में प्यार का इजहार मर्द की तरफ से होता है और माशूक भी मर्द ही होता है। हालांकि माशूक का सरापा गेसु, काकुल, खुमार आलूद या नशीली आंखें, लबो रुखसार की तारीफ सब औरतों की तरह की जाती है।
1: जहाँ तक उर्दू शायरी में महबूब के मर्द होने का सवाल है, तो इस सिलसिले में जहन में सिर्फ एक ही बात आती है, जैसा कि मिर्ज़ा ग़ालिब ने कहा है कि दावर हश्र मेरा नाम ए आमाल ना पूछ, दावर हश्र मेरा नाम ए आमाल ना पूछ, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। और ग़ालिबन पर्दा नशीनी का ये एहसास ही शायर को इसके लिए मजबूर करता है कि वो अपने महबूब को मुज़क्कर यानि मर्द के तौर पर पेश करे, मुअन्नस के बजाय वो इशारों में ज़िक्र करे, बात वही हो लेकिन उसका ज़िक्र डायरेक्ट नहीं हो। और ये सिलसिला मिलता है अरबी शायरी से। अरब में उन दिनों शेर व अदब का काफ़ी ज़ौक़ व शौक़ था, कसाइद और सरापा कहा जाता था, गज़ल तो नहीं थी वहाँ। वहाँ पर कबाइली निज़ाम था और डर ये था कि अगर किसी लड़की का ज़िक्र होगा तो कहीं कबाइली जंग या और झगड़े फसाद शुरू ना हो जाएं, तो इसलिए बचत का पहलू यही निकाला गया कि बात तो सब मस्तूरात के मुतालिक थी लेकिन उसको मुज़क्कर यानी मर्द के तौर पर पेश किया गया। और ये सिलसिला फिर फ़ारसी में भी मिलता है, फ़ारसी से पश्तों में और पश्तों से पंजाबी में भी नज़र आता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो पंजाबी में आमतौर पर घरों में जो गुफ्तगु होती है वहाँ लड़की को जो मुखातिब करते हैं वो ये होते हैं कि बेटा आप क्या कर रहे थे, कहाँ से आ रहे हो। और यही सिलसिला फिर उर्दू शायरी में नज़र आता है। मिसाल के तौर पर फ़ानी बदायूनी का एक शेर है कि काश आईना हाथ से रख कर, काश आईना हाथ से रख कर तुम मेरे हाल पर नज़र करते।

0: अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है बात किससे कही जा रही है, लेकिन उसका अंदाज एक मुज़क्कर यानी मर्द के तौर पर महबूब को बनाया गया है। और गालिब का एक शेर के, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये ढके छुपे अल्फाज में अपने दिल अपने जज्बात का इजहार करना ही इस बात का सबूत है कि उर्दू शायरी में महबूब जो है वो मर्द है। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इकरारे वफा तुम क्या समझो, इजहारे वफा तुम क्या जानो, इकरारे वफा तुम क्या समझो, इजहारे वफा तुम क्या जानो, हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे। इसी तरह से इशारों और इशारों इशारों में बात कहने का जो अंदाज़ है वही उर्दू शायरी में नज़र आता है, जिसे हम उर्दू शायरी में महबूब को मर्द के तौर पर देखते हैं।
1: जबकि हिंदी शायरी में इजहारे इश्क औरत की तरफ से किया जाता है और प्रेमिका भी औरत ही होती है। चार बैत के पहले शायर अब्दुल करीम खान ने यह सोचा होगा, मर्द तो चार बैतें गाकर अपना जी बहला लेते हैं, औरतों के जी बहलाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। इसलिए उन्होंने आसान हिंदी उर्दू भाषा में बरसातियां लिखी, जिनमें औरत मौसमी बरसात में अपने महबूब की जुदाई में अपने दिली जज्बात का इजहार करती है, और ये महबूब कोई गैर मर्द नहीं, उसका अपना शौहर ही होता है जो परदेस गया हुआ है।

कहते हैं अदब अपने अहद का आईना होता है। ये कौल इस चारबे से साबित होता है। आज से 30-40 साल पहले तक मुसलमान मोहल्लों में किस्मत का हाल बताने वाले बामन आया करते थे और मुसलमान औरतें अपना हाथ दिखाकर किस्मत का हाल पूछा करती थीं। और ये भी साबित होता है कि चारबैत भी अपने ज़माने के सामाजिक हालात का आईना है। बरसाती लिखने का एक नज़रिया तो यह है कि यह ख्याल हिंदी के 12 मासों से लिया गया है, और दूसरा नज़रिया यह है कि यह ख्याल पश्तों के

0: टप्पे ओ हिंद को के बारहमासों से लिया गया है, जिनमें औरत की तारीफ से मर्द के लिए हल्के फुलके अंदाज में जज्बात की अक्कासी कर मिलती है। डेढ़ मिसरे के टप्पे में बड़े धीमे लहजे में एक औरत के जज्बात की तर्जुबानी की गई है।
1: कलम यह लास कागज तह गोरम, आशना रा याद शे हमाहीर शो तकरीर बज।
2: कलम हाथ में है और मैं कागज को तक रही हूँ, महबूब का ख्याल आते ही सारी तकरीर भूल गई।
0: हिंद को के पेशावर के चार बैत गो शायर फकीर जिलानी का बारह मासा भी रुहेलखंड में आने वाले पठानों को याद होगा।

0: सावन के महीने में यार के बगैर सूनी सूनी सेज मुझे खाने को दौड़ती है। आंखें मूंद कर भी नींद मुझसे कोसों दूर है। फिराक के तीरों की सोजिश ने मुझे भून डाला है। बिरहा ने आग लगा रखी है। मैं अपने रंग महल में करवटें बदल रही हूँ। मेरे चेहरे की लाली उड़ गई है।
1: रामपुर में सावनी मनाने का अजब ही अंदाज था। आम पक जाते थे, चार बैत गाने वाले और सावनी मनाने वाले बागों में चले जाते, पेड़ों में झूले पड़ जाते, पकवान पकते, झूला झूलते और मलारे गाते।

0: और फन बेमिसाल है। चार बैत के इस सफर पर आधारित इस धारावाहिक की ये थी नौवीं कड़ी। धारावाहिक के लेखक हैं नफीस सिद्दीकी और आज के इस एपिसोड में भाग लेने वाले कलाकार थे सैयद मोहम्मद आदिल, अख्तर रिजवी, अपर्णा श्रीवास्तव और सैयद नवेद कैसर शाह। गायन स्वर गीता पंत, विनीता जोशी, असलम शन्नू खां और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। इस धारावाहिक के सह प्रस्तुतकर्ता हैं सुरेंद्र राजेश्वरी और असीम सक्सेना और प्रस्तुतकर्ता हैं मनदीप कौर।
1: और फन बेमिसाल है। अभी आप सुन रहे थे इस धारावाहिक की कड़ी संख्या 9। धरोहर, ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम। समय 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की शब्दावलियों पर आधारित कार्यक्रम मन।

मन भवन कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को आकांक्षा की ओर से बहुत प्यारा सा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम को लेकर हम हाजिर हैं जहां आप हमसे कह सकते हैं अपने दिल की बात, अपने जज्बात। पत्र मिला AIR Rampur@gmail.com, ये है हमारा मेल आईडी। यहां पर आप कह सकते हैं अपने दिल की बात। मन भावन के सभी श्रोताओं को बता दें, आज ये पहला मेल हमें भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके परिवार के सभी साथियों ने। लिखते हैं कि रिश्ते बनते हैं विश्वास से, निखरते हैं अपनेपन से, चलते हैं सम्मान से, महसूस होते हैं एहसास से, सवरते हैं धैर्य से, टूट जाते हैं गलतफहमियों से और बिखर जाते हैं अंधकार से। बहुत सुंदर बात। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की रिश्ते बहुत खूबसूरत एहसास हैं जो हमें अपनेपन का एहसास कराते हैं। रिश्तों की सबसे खूबसूरत बात बस इतनी है कि आपको धैर्य के साथ चलना पड़ता है हर रिश्ते में। और इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो है पिता और बेटी का। जी हाँ, पिता और बेटी का रिश्ता सारे रिश्तों से सबसे जुदा है, सबसे अनमोल है और सबसे अधिक प्रेम और स्नेह रखने वाला है। अगली मन भावन की जो शब्दावली हमें भेजी है उनका नाम है अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा ने। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात पिता और बेटी के बारे में कही है। लिखते हैं कि एक बेटी की अर्जी। मन भावन कार्यक्रम में इन्होंने एक छोटी सी कहानी पिता और बेटी के रूप में हमें लिखकर भेजी है, सुनिए। लिखते हैं कि बेटी कहती है, पापा आज आप मेरी एक बात मानेंगे? पापा कहते हैं, गुटका छोड़ने के अलावा जो कहेगी सब मान लूंगा। बेटी कहती है, मैं आपसे गुटका छोड़ने को नहीं कहूंगी, बस इतना कहना चाहती हूं कि आप सुबह से शाम तक जितना भी गुटका खाते हैं वो सब आकर मुझे बता दिया करें। पापा कहते हैं, हाँ मैं तुझे वचन देता हूँ कि बिल्कुल सच्चाई से तुझे सब कुछ बता दूंगा। फिर बेटी दूसरी बात रखती है, अगर मैं आपसे कुछ और मांगूं तो क्या आप देंगे? पापा कहते हैं, हाँ बेटा जरूर दूंगा, आज तेरा जन्मदिन है, जो मांगेगी वो दूंगा। बेटी कहती है, पर आप पलट तो नहीं जाएंगे ना? पापा ने कहा, तेरे सामने कभी नहीं पलटूंगा। बेटी ने मौका देख कर कहा, जितनी बार आप दिन में गुटखा खाएं उतने ही थप्पड़ आप शाम को घर आकर मेरे गालों पर मारा करेंगे। बेटी की ये बात सुनकर पिता स्तब्ध रह गए, पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता बोले, अपने जान के टुकड़े को मैं थप्पड़ कैसे मारूंगा? तब बेटी ने कहा, पापा भगवान ना करे, पर अगर आप गुटखा खाने से जो नुकसान होता है वो आपको हो गया और आप हमारे बीच नहीं रहे तो दुनिया आपकी गैर मौजूदगी में मेरे ऐसे तमाचे मारेगी जिन्हें मैं सह भी नहीं पाऊंगी। आपके थप्पड़ को मैं सह सकती हूं लेकिन दुनिया के ताने नहीं। बेटी की ये बात सुनकर पिता का दिल पिघल गया, जो गुटखा
कोई नहीं छुड़ा सका, वो गुटखा बेटी ने हमेशा के लिए छुड़वा दिया। मैं उम्मीद करती हूं ये कहानी आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी। यदि आप भी इस तरह से कभी भी किसी भी तरह का नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो जरा अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा ने जो ये बात मुंबई से हमें लिखकर भेजी है, मैं मानती हूं आप सभी के दिलों तक पहुंची होगी। वो कहते हैं कि हम आशा करते हैं कि हर परिवार, समाज और देश को ऐसे बेटे बेटियां जरूर मिलें, और साथ ही ऐसे ही पिता भी जो अपने बच्चों की भावनाओं को समझ सकें। अपने बच्चों की और अपने माता पिता की भावना को जरूर समझिए और ये जरूर ध्यान रखिए

देर से ही सही, मगर मिलता जरूर है। इसलिए अगर आपकी भलाई का जवाब बुराई से मिले, तब भी अपने अच्छे किरदार को ना बदलें। नेकी करते रहिए, मोहब्बत बांटते रहिए और इंसान का दामन थामे रखिए, और साथ ही इंसानियत का भी, क्योंकि यही असली दौलत है और यही एक नेक इंसान की पहचान है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वर्षी और इमरान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान और इरम गुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दावली से हम सभी को अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजिया गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान और शहनाज बाबू अंसारी कहते हैं कि जी हाँ दोस्तों, जिस तरह फूल हकीकत को तस्लीम करते हुए खुश और खुर्रम करता है, बिल्कुल उसी तरह इंसान गमों और मुसीबतों में खुश क्यों नहीं रह सकता। शायद इंसान सारी जिंदगी सैराब के पीछे भागता रहता है, उसमें हकीकत का सामना करने का हौसला नहीं होता। अगर आप इंसान को दुखों को बर्दाश्त करना सीख लें, तो वो उस खुशी को पालेगा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराता रहेगा।

जी है रूमा खान, बॉबी खान, सुभान, मदीहा, गुलफिशा, जीनत अमान, शबनम अब्बासी और शमा परवीन ने। कहते हैं कि बहारी निखार तो बस एक छलावा है, नेक सीरत ही इंसान का सच्चा पहनावा है। गर दिल में दया और लबों पर सच्चाई है, वही असल में दुनिया का सबसे बड़ी सुंदराई है। सूरत से नहीं सीरत से पहचान होती है, जहाँ दिल साफ हो वहीं इंसानियत जवान होती है। खूबसूरती वो नहीं जो आईने में नजर आए, खूबसूरती वो है जो किसी के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लाए।

चेहरे पर मुस्कान बिखेर देना किसी के, ये इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे निहायती ज़रूरी जगह हो सकती है जो हम किसी के चेहरे पर लेकर आते हैं, अपनी बातों से और अपने अपनेपन से और अपने कामों से। ऐसा ही कुछ कीजिए जिससे किसी के चेहरे को मुस्कान मिल सके और दिल को सुकून मिल सके। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी लिखते हैं कि एहसास के दामन में आंसू गिरा कर देखो, हमारा प्यार सच्चा है आजमा कर देखो, तुम को सोच कर होगी बड़ी हैरानी, किसी आईने को फर्श पर गिरा कर देखो। आंसुओं का कोई वक्त नहीं होता, आंसुओं की कोई जगह नहीं होती, आंसुओं की कोई सीमा नहीं होती। आंसू तो खुशी के साथ भी होते हैं और गम के साथ भी होते हैं और महफिल में भी साथ होते हैं, आंसू तन्हाई में भी साथ होते हैं। आंसू बहाने का मज़ा तब और होता है जब कोई उनको पोछने वाला हो। जिंदगी में कुछ खो दिया जो आंसुओं के साथ बह गया, जिंदगी वीरानी सी लगे तो ये समझ लीजिए कि बहुत कुछ खो गया जो पास था। उम्मीद है कभी तो पीछा छूटे, मगर बुरे हालातों में खुशी की एक झलक पाने की ये तरसती निगाहें, वक्त जो ना कर सके वो कम है। कोई वादा नहीं फिर भी निगाहें तुमको ताकती हैं, तुम्हारा वो हंसी चेहरा ये कैसे भूल सकती हैं।

साथ भी हैं जो हमारे मन में रहते हैं, उलझने हैं, खुशियां हैं, और इन सब के बीच एक जीवन है जिसमें हर उम्र का इंसान बस जूझ रहा है। लेकिन कहते हैं कि किशोरावस्था, नौजवान की एक अवस्था एक ऐसी होती है जहां उसे दर्द भी मिलते हैं, खुशी भी मिलती है। ये उम्र ऐसी होती है जहां बस सपने बसते हैं और संघर्ष होता है। इन्हीं बातों के बीच में ये शब्दावली हमें भेजी है स्वार रोड मुरसैना से गुलफशा इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नादित और इनके पापा हबीब अहमद इदरीसी ने। साथ ही हैं हाजी गफ्फार खान साहब। लिखते हैं मनभावन पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब अर्ज है। आपको भी हमारा बहुत प्यारा सा नमस्कार। जो बातें आज हम और आप कर रहे हैं वो ये हैं, नौजवान किस मुस्तकबिल से बहुत कुछ वो अपने संघर्षों में कर रहा है, और इसी पर उन्होंने भेजी है नाजिया इदरीसी की लिखी हुई ये नज़्म। कहती हैं कि मुल्क के इन नौजवानों की तड़प भी देख लो, देख तो लो शाम को और सजर भी देख लो। बिखर जाते हैं आशियां आंधियों के सामने, जख्मी जहां है जख्मी है दिल, तुम जख्म भी देख लो। जिंदगी की रौनक में अब हिजासी आ गई, देख लो अब देख लो जिंदगी धुंधला सी गई। जरियाए माश अब हमारा ना रहा, जिंदगी को भी हमारे मुर्दा से दफना दिया। इस बिखरती जिंदगी की शादमानी देख लो, अब हुकूमत के साहब तुम ये नए हुनर भी देख लो। चंद लम्हों में जो सिमटे सफर भी देख लो। जानवर हमको कहा और खता भी मान ली, नौजवानों की साहब तुम ये कहानी भी देख लो। मुल्क के इन नौजवानों की तड़प भी देख लो।

कार्यक्रम की ये अब अंतिम शब्दावली हम शामिल कर रहे हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी और असद भाई फिरोज़ा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। लिखते हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्कों में तो हर एक इंसान खुश रहना चाहता है, उसे सारी दुनिया रंगीन नज़र आती है, पराए भी अपने लगते हैं, लेकिन जब इंसान की ज़िंदगी में दुखों के काले बादल छाते हैं, वही दुनिया जोश में रंगीन नज़र आती है। रंगीन नज़र आती थी, वही दुनिया बेनूर बेगानी नज़र आने लगती है, और दुख में न जाने क्या क्या ख्याल दिल में आते हैं। बहुत से

ऐसे भी सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में दुख है भी तो सुख भी आएगा। नहीं दोस्तों, आज दुख है तो कल सुख ज़रूर मिलेगा। हम बस यही कहेंगे कि दुख और अपने गले लगाकर जियो और मुस्कुराओ। इंसान और सच्चा इंसान वही है जो इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। फिलहाल आज की इन शब्दावलियों से अब आकांक्षा को दीजिए अनुमति मन भावन कार्यक्रम में। फिर मिलेंगे आपके इन्हीं प्यार के साथ, इन्हीं जज्बातों के साथ। आकांक्षा को दीजिए अनुमति।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और साइबर खतरे तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं की जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की प्रतिबद्धता को समझा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष की नागरिकों की प्रतिबद्धता से उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी। इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक के लिए लिखे गए आलेख में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 99% शुल्क तुरंत समाप्त हो जाएंगे और भारत से निर्यात बढ़ेगा। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय कथित शिक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर, जबकि निफ्टी 90 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

श्रोताओं, अब सुनिए। गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में सूचना। ये सूचना हमें प्राप्त हुई है थानागंज जनपद रामपुर से। थाना हाजावर 17 जून 2026 से गुमशुदा व्यक्ति मोहम्मद हारिस पुत्र मोहम्मद इस्माइल उम्र करीब 19 वर्ष निवासी मोहल्ला पंजाबियान निकट मस्जिद मर्दान खां थानागंज रामपुर दिनांक 16 जून 2026 को समय करीब 11 बजे से अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं, जिनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है तथा ना सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। यदि इनके संबंध में आपको कोई जानकारी प्राप्त होती है तो थानागंज जनपद रामपुर में संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 7983701819। सूचना समाप्त हुई।

एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। समय 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत आपके नाम।

अभिजीत और श्रेया घोषाल को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मैं हूं ना में। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत था अनु मलिक का। कार्यक्रम का ये गीत था आप सभी श्रोताओं के लिए। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रज्वला ताई।

कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसूर, शाइना हसन अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और आदेब। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान और अफसर अली के साथ हैं नागमा नाज मंसूरी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनराल रजक, निम्मी, शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खांडवा से अब्दुल गफ्फार, डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ हैं ये हमारे श्रोता हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद कोहिनूर तिरहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहरून निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम का अगला गीत क्रिश इस फिल्म से।

आकाशवाणी रामपुर से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम आकांक्षा के साथ। श्रोताओं, यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें लिख भेजिए हमारे मेल आईडी पर। हमारा मेल आईडी है patramela@rampur.gmail.com। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप संदेश भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9410087876। कीजिए आप हमें मैसेज, हमें इंतज़ार है आपकी ढेर सारे नामों का, ताकि हम ये जान पाएं कि आप कहाँ से, किस प्रदेश से और किस शहर से और किस गांव से बिलोंग करते हैं। फिलहाल अभी कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं सुखविंदर की आवाज़ में ये गीत, जिसके लिए फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने। ग्राम पंचायत बटेंडा पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और यश प्रयाण वर्मा। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से हमें ये मैसेज भेजा है अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले। और इन्हीं के साथ हैं कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिठिया आमना नसरीन, आसमा परवीन, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली।

बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया। छत्रपति संभाजी नगर से हमारे श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नास, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। मंसूरी रोड लिसनर्स क्लब, बाजार रोड मुक्सीरपुर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद और इनके परिवार की सभी साथी। जसपुर उत्तराखंड से हमारे श्रोता हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से हमारे श्रोता हैं रामेश वर कटेरिया, उमा कांति कटेरिया, कमलेश कटेरिया, पुत्र बधु निशा और कटेरिया परिवार के सभी सदस्य। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खां, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदीहा खान, सुभान खान और फिरोज खान। मारहरा दरवाजा एटा से हमारे श्रोता हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और रसीद वारसी। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और आदिब। गरीब नवाज कॉलोनी वंद्रा नगर इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजय परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और वसुधा। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नास परवीन। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहित चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी और इनके परिवार के सभी सदस्य। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए रब ने बना दी जोड़ी इस फिल्म का गीत। आवाज है सुखविंदर सिंह की, शब्द लिखे हैं जयदीप सहानी ने और संगीत है सलीम सुलेमान का।

जी हाँ, हौले हौले बहुत कुछ हो सकता है। और जो श्रोता साथी हमारे एक बार हमें मेल और व्हाट्सएप पर मैसेज भेज चुके हैं, वो कृपया हौले हौले दोबारा ना भेजें, क्योंकि यदि आपका मैसेज हम एक बार रीड कर चुके हैं तो कोशिश कीजिए कि जो तादाद है हमारे लिसनर्स की, हमारे श्रोताओं की, और जो सभी श्रोता साथी हमसे नए जुड़ना चाहते हैं उन्हें मौका दिया जाए। तो यदि आपका मैसेज हम तक आ चुका है किसी भी रूप में, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हो, तो कृपया कोशिश कीजिए कि दोबारा ना करें, क्योंकि एक बार यदि पढ़ लिया गया है तो वो दोबारा नहीं पढ़ा जाएगा। फिलहाल हम कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में। फिल्म का नाम है परदेस और इस गीत के लिए शामिल किए हैं हमने आप सभी श्रोता साथी। तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय राठौर, विजय राठौर, विनय राठौर, विकास राठौर, आकाश राठौर, शिवांशी राठौर और प्रियंका राठौर। पुणा जंक्शन मस्तनापुर से अनंत भगत और अरुणा भगत। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता। चकला बाजार सामना शहर पंजाब से पप्पू राज दिलखुश, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक दिलखुश, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू दिलखुश, हसमुख जिंदल, बुलबुल दिलखुश, संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। नास मंजिल महसौर सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिस वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा और कलेर बिहार से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद आसिफ खान और निगत परवीन। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर और रतनमाला सुलरकर। फाजिला पंजाब से हमारे श्रोता हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, ट्वानिश खेड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य। अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, सिफान सिद्दीकी और बेटी अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। नई बस्ती गंजी डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। खैल बाजार पानीपत से नरेश मनोत्रा नीटू, लक्ष्य मनोत्रा लाड़ो, कोयल मनोत्रा और इनके पापा नानक चंद्र मनोत्रा। शिवाजी चौक कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का। वाइट फील्ड बेंगलुरु से हमारे श्रोता हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। रामगढ़ कैंट से हमारे श्रोता हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, बाई सुच्चा पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरे। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। ग्राम आनंद गांव जिला जालना से हमारे श्रोता हैं शिंदे कावरी, शिंदे प्रहलाद, शिंदे स्वाति, वैष्णवी शिंदे और समस्त शिंदे परिवार।

ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज और फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी। ये मेल हमें मिला है मानसी, अनिल गौरव, कविता मदान फैमिली से। ये श्रोता हमारे रहने वाले हैं मिनिस्ट्री रोड नई दिल्ली मोती नगर से। बेरिडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री तांबड़े, वैष्णवी तांबड़े, चंचन तांबड़े, अर्जुन ग्रोवर और धीरज। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्हा आसमा बेलदार। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए परदेश। इस फिल्म का गीत आवाज़ होगी कुमार सानू और अलका याग्निक की।

निशानी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा सी वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्हा आसमा बेलदार। आइए सुनते हैं आप सभी के लिए परदेस, इस फिल्म का गीत आवाज होगी कुमार सानू और अलका याग्निक की।

मीडियम वेव और एफएम के चैनल्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी रामपुर। इस समय आप सुन रहे हैं गीत आपके नाम, ये कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में। कार्यक्रम का ये गीत है आप सभी श्रोताओं के लिए। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नहाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुड़त, मेरठ कैंट से हमारे श्रोता हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा।

मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। धनौरे तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। गांव कैरो जिला रतन पंजाब से हमारे श्रोता हैं गुरदर्शन, शम्मी, रजनी, आकाशदीप और इनके परिवार के सभी साथी। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, बविता और अंश गौतम। पटियाली रोड गंज दुंडवारा उत्तर प्रदेश से मोहम्मद खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी और अरीबा हबीबा। करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नावेद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी और इमरान शेख। क्रियांश बागडिया, योगेश, गरिमा, रजत और मनीष, ये श्रोता हैं हमारे बांडीवाला फाजलिका पंजाब से। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान और आसिम खान। जिला अस्पताल के पास से गजन खान, शमा परवीन, शमशद अली अजम, गुलफशा, शहनाज बाबू अंसारी, रजिया गफार और हबीब अहमद इदरीसी। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर सिंह छिद्दा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। गांव लोहगढ़ा ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह दिल, दिलजीत सिंह दिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और

से सीता और गीता। गांव लोहगढ़ा, ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह दिल, दिलजीत सिंह दिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह। पंजाब से हरदेव मीका, बलबिंदर बिर्क, जयदेव बिर्क, मीका बिर्क और आप सभी। महादेव घाट अम्बलेश्वर से डोमेन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और

0: के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को SIT का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।
3: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव और FM के मीटर्स पर इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी 1:15 पर आप सुनेंगे परिवार जगत। ये कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा बुजुर्गों की देखभाल। वार्ता का विषय होगा पारिवारिक कलह का बच्चों पर प्रभाव। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम पर आप सुनेंगे भाई बहन का रिश्ता, इस विषय पर बातचीत। हेल्थ टिप्स के अंतर्गत आप तक पहुंचेंगी तनाव से बचें, इस विषय पर बातें। परिवार जगत ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाएंगी सुनीता व आयशा अनवार। दिन में 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। श्रोताओं, ये थी एक जानकारी हमारे केंद्र से प्रथम सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।

दूसरी सभा के आरंभ में सुनिए फिल्म संगीत का कंपेयर प्रोग्राम आज शाम। युवा श्रोता सुन सकेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। समय होगा 5:15, 6:20 पर किसान साथी पहुंचाएंगे आप तक अपना कार्यक्रम कृषि जगत कानून और हम। इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:00।

इसके अलावा 7:31 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे गजलें, आवाज होगी समीर नियाजे के। व्हाट्सएप फरमाइशी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा रात्रि 8:00। कवि गोष्ठी का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। प्रतिभाग कवि होंगे डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडे, श्री उदय प्रकाश सक्सेना, श्री राम कुमार वर्मा और श्री जितेंद्र कुमार सक्सेना। कवि गोष्ठी सुनना ना भूले रात्रि 9:30 पर। गीतांजलि इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये थी एक जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप तक पहुंचेंगी इलाकाई खबरें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: परिवार जगत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी रेडियो साथी सुनीता सिंह। स्वीकार करें मेरा प्यारा सा नमस्कार।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो साथी आयशा अनवर, साथ ही मेरा भी स्वीकार करें प्यारा सा आदाब और नमस्कार।
0: श्रोताओं कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और श्रोताओं इस समय देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है और अपना अपने बच्चों का और बुजुर्गों का अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे गर्मी से बचे रहेंगे वैसे ही उनकी तबीयत सही रहेगी, स्वास्थ्य सही रहेगा। क्यों आयशा?

0: बिल्कुल सुनीता मैम, बुजुर्गों से हमें याद आया कि हमें बुजुर्गों का ध्यान तो सबसे ज्यादा रखना होता है, और आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है। ये श्लोक तो सभी ने सुना ही होगा।
1: बिल्कुल, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, इस पंक्ति को बोलते हुए हमारा शीश श्रद्धा से झुक जाता है और सीना गर्व से तन जाता है। और इस पंक्ति में सच्चाई भी है कि जिस तरह से ईश्वर आदर्श रहकर हमारे माता पिता की भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार उन्हें परम पिता परमेश्वर की नाम से हम पुकारते हैं। और जब भी हम पर कोई विपत्ति आती है या परेशानी आती है, तो हम उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं।
0: जी, ठीक उसी तरह से हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों, साक्षात ईश्वर के रूप में हमारे सामने हैं। इसलिए तो भगवान गणेश ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बजाय अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य होने का अधिकार हासिल कर लिया था।
1: परंतु आज इस भौतिकवादी युग में बढ़ते एकल परिवार के चलन और आने वाली पीढ़ी की सोच में परिवर्तन के चलते ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ अच्छे और सभ्य परिवार को छोड़ दें तो आज अधिकांश परिवारों में बुजुर्गों को भगवंतों के इंसान का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। और किसी ज़माने में जिनकी आज्ञा के बगैर घर का कोई काम और कोई निर्णय नहीं होता था, और परिवार में सबसे ऊपर यानी वो परिवार के मुखिया होते थे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और आज परिवार की शान समझे जाते थे जो लोग, आज वही उपेक्षित हैं, बेसहारा हैं और दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। क्या हम नहीं जानते कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया है, या हम जानते हुए भी अनजान बनना चाहते हैं?
1: वो माँ है जिसने 9 महीने अपने खून से सींच कर हमारे शरीर को बनाया है, और खुद गीले में सोकर आपको सूखे में सुलाया है, तो क्या हम उनके लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकते?
0: और इन्हीं माता पिता ने तो अपना खून पसीना एक करके आपको पढ़ाया लिखाया, पालन पोषण किया है, और आपकी छोटी बड़ी हर जरूरत को पूरा किया है।
1: बिल्कुल, वृद्धावस्था मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है जो सभी को आना है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, और बुजुर्गों का अनुभव उनके जीवन को दर्शाता है।
0: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, लेकिन सुनीता जी, आप जानती हैं, बुजुर्ग जो है ना, वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं
1: जी।
0: उनसे छोटी छोटी हम सलाह भी लेते रहते हैं, जिनसे हमें बहुमूल्य शिक्षा मिलती है। उनका अनुभव हमें सभ्यता, नैतिकता और धैर्य की सीख देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, और भी अपने जीवन के अनुभवों से हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन के हर पहलुओं का मुकाबला कर सकते हैं। वे हमें जीना सिखाते हैं और सही मार्गदर्शन करना, यानी कि सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं।
0: बिल्कुल, तभी तो हम सही मार्ग चुन पाते हैं। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनकी मदद और देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उनके बगैर हम अधूरे हैं। वो ऐसा वृक्ष है जिनके साय में हम और हमारे बच्चे हमेशा सुरक्षित हैं। तभी तो किसी कवि ने क्या खूब कहा है,
1: कवि ने कहा है, बड़े बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत तो ना थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी।
0: बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही ना आपने। अपने बुजुर्गों की कदर किया करो, क्योंकि आप भी हमेशा जवान नहीं रहने वाले। जीवन का अंतिम पड़ाव जो है वो वृद्धावस्था ही है।
1: बिल्कुल सही कहा आयशा, अगर हम परिवार में प्यार से रहेंगे, बुजुर्गों का आदर और सम्मान करेंगे, तो परिवार में कलह नहीं होगी, क्योंकि आए दिन परिवार में झगड़े और टेंशन घर का माहौल बिगाड़ देते हैं, जिससे परिवार में अशांति रहती है और जिसका सीधा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
0: बिल्कुल सुनीता जी, और आज हमारी प्रसारित वार्ता का भी यही विषय है, पारिवारिक कलह का बच्चों पर प्रभाव। और वार्ता के माध्यम से इस जानकारी को आप तक पहुँचा रही हैं डॉक्टर आंचल गुप्ता।
2: आज की इस वार्ता में मैं एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ जो हमारे समाज, परिवार और विशेष रूप से बच्चों के भविष्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका शीर्षक है पारिवारिक कलह का बच्चों पर प्रभाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवार किसी भी व्यक्ति के जीवन की प्रथम पाठशाला होता है। बच्चा परिवार में जन्म ही नहीं लेता, बल्कि बोलना, चलना, व्यवहार करना, प्रेम करना, सम्मान देना जैसे सभी सामाजिक जीवन के मूल्यों को सर्वप्रथम अपने परिवार से ही सीखता है।

परिवार केवल एक समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था ही नहीं है, बल्कि वह भावनात्मक सुरक्षा, विश्वास, सहयोग और व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख आधार भी है। सभी संभव है जब परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण होता है। बच्चे का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी तभी स्वस्थ रूप से होता है, परंतु इसके विपरीत जब परिवार में निरंतर तनाव, विवाद, झगड़े और कलह का माहौल बना रहता है तो इसका प्रभाव यूं तो सभी पारिवारिक सदस्यों पर पड़ता है, परंतु सबसे गहरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। हम सब ये भी जानते हैं कि वर्तमान समय में समाज तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जहां एक ओर शिक्षा का प्रभाव बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर तेजी से डिजिटल होते समाज तथा मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग तथा व्यस्तता से जीवन शैली भी बदल रही है। निसंदेह इस सब के प्रभाव से पारिवारिक संरचना भी बदल रही है। इसके साथ ही आर्थिक और सामाजिक अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। तकनीकी विकास ने सुविधाएं तो बढ़ाई हैं, लेकिन साथ ही जीवन में प्रतिस्पर्धा और तनाव को भी बढ़ाया है। आज अनेक परिवारों में समय का अभाव, आर्थिक दबाव, कार्यस्थल का तनाव, आपसी संवाद की कमी तथा बदलती सामाजिक भूमिकाओं के कारण पारिवारिक कलह की घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। पारिवारिक कलह की बात करें तो यह केवल पति पत्नी के बीच होने वाले विवाद तक ही सीमित नहीं होता, अपितु यह परिवार के अन्य सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव, मतभेद और संघर्ष का भी रूप हो सकता है। कई बार छोटी छोटी बातों से शुरू होने वाले विवाद धीरे धीरे परिवार के वातावरण को विषाक्त बना देते हैं। जब घर में लगातार ऊंची आवाजें, कटु शब्द, आरोप प्रत्यारोप और तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हैं, तो बच्चे सबसे अधिक सुरक्षित स्थान अर्थात परिवार में स्वयं को असुरक्षित सा अनुभव करने लगते हैं। परिवार कलह के अनेक कारण हो सकते हैं। परिवार की आर्थिक समस्याएं, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव, आपसी अविश्वास, अहंकार, संवादहीनता, पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर तथा डिजिटल माध्यमों में अत्यधिक व्यस्तता जैसे अनेक कारण परिवारों में तनाव को जन्म देते हैं। कभी कभी सामाजिक तुलना और दिखावे की प्रवृत्ति भी परिवारों में असंतोष पैदा करती है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझने के बजाय केवल अपनी बात मनवाने का प्रयास करने लगें, साथ ही आपस में बैठकर बातचीत न करें, तब संघर्ष और अधिक बढ़ने लगता है। इन सभी परिस्थितियों का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। उनके व्यक्तित्व पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे परिवार के वातावरण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। अक्सर हम यह मानकर बच्चों के सामने झगड़ लेते हैं कि छोटे बच्चे पारिवारिक विवादों को समझ नहीं पाते, लेकिन यह धारणा बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे भले ही विवादों के कारणों को न समझें, लेकिन वे घर के तनावपूर्ण वातावरण को अवश्य ही अनुभव करते हैं। वे माता पिता के चेहरे के भाव, आवाज़ के उतार चढ़ाव और व्यवहार में आए परिवर्तन को बहुत शीघ्र पहचान लेते हैं। साथ ही जब बच्चा बार बार झगड़े और तनाव को देखता है तो उसके मन में भय, असुरक्षा और चिंता की भावनाएं विकसित होने लगती हैं। उसे लगने लगता है कि उसका परिवार टूट सकता है या उसके माता पिता उससे दूर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे का आत्मविश्वास प्रभावित होता है और वह मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगता है। इतना ही नहीं, पारिवारिक कलह का प्रभाव बच्चों के शैक्षिक जीवन पर भी पड़ता है। तनावग्रस्त वातावरण में रहने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनकी एकाग्रता कम हो जाती है, उनकी न केवल स्मरण शक्ति प्रभावित होती है बल्कि पढ़ाई में अत्यंत उज्ज्वल बच्चों का विद्यालय में प्रदर्शन भी कमजोर होने लगता है। कई बार शिक्षक भी बच्चों के व्यवहार में आए बदलाव को पहचान तो लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का वास्तविक कारण पारिवारिक वातावरण होने के कारण स्वयं को इसमें असमर्थ ही पाते हैं। इतना ही नहीं, निरंतर परिवार में कलह का वातावरण होने से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के स्तर पर भी इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे बच्चे अवसाद, चिंता, अकेलेपन और हीन भावना का शिकार हो सकते हैं।
वे स्वयं को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं। विवाह तथा परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं से बच्चों का विश्वास ही उठ जाता है, जो उनके भविष्य के लिए दुष्कर हो सकता है। इसके साथ ही कुछ बच्चे अत्यधिक चुप और अंतर्मुखी हो जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे आक्रामक व्यवहार अपनाने लगते हैं। उनके भीतर क्रोध और असंतोष बढ़ने लगता है, जिसकी परिणति कभी कभी अपने स्कूल के साथियों के साथ हिंसक व्यवहार के रूप में भी देखने को मिलती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो बच्चा परिवार में जो व्यवहार देखता है, वही उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगता है। यदि वह परिवार में प्रेम, सहयोग, परोपकार, धैर्य आदि देखता है, तो यही सब गुण उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं। परंतु यदि वह बार बार अपमान, हिंसा और असम्मान का वातावरण देखता है, तो उसके भविष्य में उसके व्यवहार, व्यक्तित्व तथा संबंधों में भी वही प्रवृत्तियां दिखाई दे सकती हैं। विभिन्न सामाजिक सर्वेक्षण तथा शोध यह बताते हैं कि जिन बच्चों ने बचपन में लगातार पारिवारिक झगड़े तथा कलह देखा होता है, उनके वैवाहिक और सामाजिक संबंधों पर इसका विपरीत असर देखने को मिल सकता है। वर्तमान समय में एक और महत्वपूर्ण समस्या यह है कि कई बार अति वयस्क माता पिता अपने तनाव और विवादों में इतना अधिक उलझ जाते हैं कि बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं को समझ ही नहीं पाते। बच्चे भौतिक सुविधाओं से अधिक प्रेम, सुरक्षा और संवाद चाहते हैं, जबकि अमीर और व्यस्त माता पिता बच्चों को महंगे विद्यालय, खिलौने और आधुनिक सुविधाएं देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। परंतु ये सब भौतिक वस्तुएं उन्हें कुछ समय के लिए तो प्रसन्न कर सकती हैं, लेकिन मानसिक सुरक्षा केवल परिवार के सुरक्षात्मक तथा सकारात्मक वातावरण से ही मिलती है। अत्यधिक चिंता की बात यह भी है कि पारिवारिक कलह का प्रभाव केवल बच्चों के वर्तमान तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह उनके भविष्य, आत्मविश्वास, सामाजिक संबंधों और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी विपरीत रूप से प्रभावित करता है। इसलिए यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस समस्या को रोका कैसे जाए। इसके समाधान के लिए सबसे पहले परिवार में संवाद को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर समस्याएं तो आपसी बातचीत से ही सुलझ जाती हैं। अधिकांश विवाद इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं। यदि परिवार के सदस्य धैर्यपूर्वक एक दूसरे की बात सुने और अपनी भावनाओं को सम्मानपूर्वक व्यक्त करें, तो कई समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है कि बच्चों के सामने विवादों से बचने का प्रयास करें। परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें व्यक्त करने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। इस विवाद को आपसी तालमेल तथा बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। बच्चों के सामने ऊंची आवाज में झगड़ा करने, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने तथा हिंसक व्यवहार करने से सदैव ही बचना चाहिए। तीसरा उपाय है कि परिवार के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताना। आज की व्यस्त जीवन शैली में परिवार के सदस्य ही एक घर में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं। यदि घर में कुछ समय मिलता भी है, तो अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त रहकर परिवारजन एक दूसरे से प्रायः दूर रहते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि प्रतिदिन कुछ समय परिवार के साथ बैठकर बातचीत करना, साथ में भोजन करना और बच्चों की सभी बातों को ध्यान से सुनना पारिवारिक संबंधों को बेहद मजबूत बनाता है। इसके अतिरिक्त यदि विवाद लगातार बढ़ रहे हों तथा सुलझने की कोई सूरत नजर न आ रही हो, तो लंबा खींचने के बजाय परिवार, परामर्शदाताओं, मनोवैज्ञानिकों अथवा पारिवारिक सलाह केंद्रों की सहायता लेने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। स्मरण रहे कि समय पर लिया गया परामर्श कई गंभीर समस्याओं को बढ़ने से रोक सकता है। साथ ही माता पिता को भी यह समझना होगा कि बच्चे केवल उनके शब्दों से ही नहीं बल्कि उनके व्यवहारों से भी सीखते हैं। यदि माता पिता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आपसी सहयोग करते हैं और समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं, तो बच्चे भी वही मूल्य सीखते हैं।
अंततः हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि बच्चे ही परिवार की

0: सबसे अमूल्य धरोहर हैं। वे न केवल हमारे वर्तमान की जिम्मेदारी हैं अपितु भविष्य की आशा भी हैं। उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण प्रदान करना केवल माता पिता का कर्तव्य ही नहीं बल्कि पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी है। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए हम सभी को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम सभी अपने परिवार में प्रेम, संवाद, सहिष्णुता और सम्मान का वातावरण बनाएंगे। साथ ही समय समय पर होने वाले मतभेदों को संघर्ष का कारण न बनाकर समझ और समाधान का अवसर बनाएंगे, क्योंकि एक खुशहाल परिवार ही एक स्वस्थ बच्चे का निर्माण करता है और स्वस्थ बच्चे ही एक सशक्त समाज तथा उज्जवल राष्ट्र की नींव रखते हैं।
1: पारिवारिक कलह का बच्चों पर प्रभाव, ये था विषय वार्ताकार और वार्ताकार थी डॉक्टर आंचल गुप्ता। और हमें उम्मीद है श्रोताओं आपको ये पसंद आई होगी जानकारी। और अब आयशा आपका क्या ख्याल है?
2: तो क्यों ना अब अपने श्रोताओं के लिए एक प्यारा सा गीत हो जाए।
1: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, प्यारा सा गीत तो हमने सुन लिया और अब बात करते हैं भाई बहन के रिश्ते पर। श्रोताओं, इस समय छुट्टियां भी चल रही हैं और सभी बच्चे छुट्टियां मनाने के लिए अपनी नानी के घर जरूर जाते हैं।
1: लेकिन आयशा, नानी के घर में सबसे ज्यादा बच्चों को प्यार करने वाला वो इंसान होता है, वो है मामा, जो अपने बहन के बच्चों को दिल से प्यार करते हैं और अपना बचपन उसमें देखते हैं।
0: तभी तो इन रिश्तों में हमेशा प्यार और अपनापन बना रहने के लिए बहनों को भी इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। पैसे से बढ़कर भाई बहन का रिश्ता होता है, जिसे जीवन भर सजो कर रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, तीज त्योहारों पर तो हम अपने भाइयों को याद करते हैं, परंतु हमें हमेशा अपनों की ज़रूरत होती है, उनके प्यार की ज़रूरत होती है, उनके सहयोग की ज़रूरत होती है और सुख दुख में हाथ पकड़कर खड़े होने की, एक दूसरे को हिम्मत देने की ज़रूरत होती है। ऐसा होता है भाई बहन का रिश्ता।
0: बिल्कुल, तो आज इसी विषय को लेकर हम अपने क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में बात करते हैं। तो हमारी साथी सुनीता जी, आप बात कर लीजिए शालिनी से और हमारा विषय रहेगा वही रिश्ता भाई बहन का। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता।
2: श्रोताओं, भाई बहन का रिश्ता जीवन के हर पड़ाव पर मजबूत होता है। बहन अपने भाई की खुशियों और दुखों में हमेशा साथ देती है, वहीं भाई भी बहन की रक्षा करता है और उसे हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करता है। त्योहारों जैसे कि रक्षाबंधन, भाई दूज पर ये रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो जाता है, जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और माथे पर तिलक करके उसके लिए मंगल कामनाएं करती है और भाई उसे उपहार देता है और जिंदगी भर अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। आज इसी क्रम में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं शालिनी। शालिनी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे भाई बहन के रिश्ते के बारे में। तो शालिनी, हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताएं कि रिश्तों में सबसे प्रिय भाई बहन का रिश्ता होता है और ये भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है?
3: जैसा कि हम जानते हैं कि भाई बहन के रिश्ते भारतीय परंपरा में बहुत ही ज़्यादा खास और मजबूत माने जाते हैं। ये रिश्ता केवल खून का ही नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास का भी होता है। बचपन से ही हम भाई बहनों में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, हंसते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए दिलों में प्रेम भी बहुत गहरा होता है।
2: बिल्कुल सही कहा शालिनी, क्योंकि हम भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है, कहीं लड़ाई होती है, कहीं झगड़ा होता है और एक दूसरे की चीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है शालिनी, लेकिन प्यार वही बना रहता है। शालिनी, कुछ त्यौहार भी हैं जो भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करते हैं?
3: हाँ, ऐसे त्यौहार हैं जो भाई बहन के रिश्तों को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं। वैसे तो भाई बहन का रिश्ता जीवन के हर पड़ाव को मजबूत बनाता है, लेकिन बहन अपने भाई की खुशियों के लिए और दुखों में हमेशा साथ देती है, वहीं भाई भी बहन की रक्षा करता है और उसे हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करता है। त्योहार

0: हमेशा आस लगाए रहती हैं कि ये त्यौहार आए, हम अपने भाई के पास जाएं, और इसी बहाने चलने मुलाकात हो जाती है अपने भाई से, अपनी भाभी से, बच्चों से, मायके वालों से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस त्यौहार पे जो है ना, बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ता है अपने भाई के लिए, अपने मायके के लिए। तो ये त्यौहार जो है हमारी परंपरा को बनाए रखते हैं, ये त्यौहार ज़रूर होने चाहिए। और इसका जो है भाई बहन को बहुत ही इज्जत के साथ निभाना चाहिए, और ये हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। क्या समाज में भी भाई बहन के रिश्ते का महत्व है चाली?
1: हाँ, समाज में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम एक परिवार का ही हिस्सा होते हैं। तो भाई बहन का रिश्ता बचपन से ही हम साथ में रहते हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। परिवार की एकता को इसी के द्वारा हम दिखा सकते हैं, या सद्भावना का प्रतीक होता है ये भाई बहन का रिश्ता। ये रिश्ता हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम और सम्मान रखें। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन भाई बहन हमेशा एक सहारा बन के रहते हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए इन रिश्तों के बंधन की डोर को हमेशा कस कर रखनी चाहिए, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता केवल एक परिवार बंधन नहीं, बल्कि एक अनमोल उपहार भी है। जैसे कि हम जानते हैं, जो जीवन को एक दूसरे की खुशियों से भर देता है, इसे सजोना और निभाना हम सभी का कर्तव्य है।
0: बिल्कुल सही कहा शाली, क्योंकि जब तक कहते हैं ना कि रिश्तों की डोर अगर मजबूती से कस के रखी जाए तो वो आगे तक चलती है। इसीलिए हमें अपने रिश्तों की, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो किसी भी संबंध का हो, उसको निभाना चाहिए, उसको अच्छे से निभाना चाहिए। और कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। वही एक कहावत है और जो बिल्कुल सटीक बैठती है कि हमें रिश्तों की उस धागे को, उस डोर को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, और हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे रिश्तों में प्यार रहे और हमारे रिश्ते हमेशा प्यार और सद्भावना के साथ बने रहें। और शालिनी, वर्तमान समय में भाई बहन के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ा है, जहाँ पर इंटरनेट और सोशल मीडिया ज़्यादा सक्रिय है?
1: इन सब चीज़ों का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव, जैसे भाई बहन बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, हम उनसे मिल नहीं पाते, तो यही एक है आधार कि इसके द्वारा हम एक दूसरे से मिल सकते हैं
0: बिल्कुल।
1: या बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम किसी परेशानी में होते हैं और कोई नहीं आ पाता, बहुत दूर होते हैं फैमिली वाले, तो हम इसी के माध्यम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इस समय भाई बहन के रिश्तों पर कई असर हुए हैं, जिसमें आधुनिकीकरण और शहरीकरण के कारण दूरी बढ़ी है। सोशल मीडिया और नई तकनीक के कारण बातचीत का तरीका बदला है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और दूरी और अलगाव के कारण भी भाई बहन के रिश्तों पर थोड़ी असर पड़ा है। शिक्षा या करियर बनाने के लिए भाई बहन एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं, अपने साथी और बच्चों से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन यही एक है आधार जिसे हम जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और दूरियों को थोड़ा कम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से, आपने सही कहा है कि हम पॉजिटिव रूप से भी देख सकते हैं, उसके माध्यम से अपने भाई बहन से जुड़ सकते हैं, अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं, उनके दुख सुख पूछ सकते हैं। तो सही मायने में देखा जाए तो इंटरनेट और सोशल मीडिया रिश्तों को बनाए रखने में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या भाई बहन के रिश्तों पर सोशल मीडिया का भी असर पड़ा है? एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहेंगे।
1: सोशल मीडिया और मैसेंजर ऐप के माध्यम से हम संवाद तो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल किसी पर भी इतना टाइम नहीं है कि बात कर सके या मिल सकें। तो बस यही एक चीज़ है जिसके द्वारा हम थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं, या एक दूसरे को समय दे पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा शाली। और अंत में आप श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी कि भाई बहन के रिश्तों को कैसे संजोना चाहिए?
1: भाई बहन के रिश्ते को हम, बहुत ही नाजुक रिश्ता है ये, लेकिन किसी

0: में ना आकर हम इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर कोई बात होती भी है तो हम आपस में बात करके सुलझा सकते हैं
1: बिल्कुल
0: किसी भी बात को। प्यार तो हमेशा रहेगा ही भाई बहन के बीच।
1: बिल्कुल श्रोताओं, भाई बहन का रिश्ता सिर्फ प्यार भरा नहीं होता, बल्कि ये हमें अच्छा इंसान भी बनाता है। अगर आपके भाई बहन से रिश्ते अच्छे हैं, तो आप दूसरों से भी अच्छे से जुड़ना जानते हैं, यानी आप सोशल लाइफ में भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगी, तेरी खुशी में मेरी खुशी, तेरे दर्द में मेरा दर्द, हम दो नहीं एक हैं, यही है रिश्तों का अर्थ, यही है रिश्तों का अर्थ। इसी के साथ हमसे बात करने के लिए शालिनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

रिश्ता भाई बहन का, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ थी शालिनी। और श्रोताओं, हमें उम्मीद है आपको ये भेंट वार्ता पसंद आई होगी, क्योंकि ये ऐसा गर्मियों का मौसम चल

0: हैं, तो अगर
1: और छुट्टियां भी खत्म ही होने वाली हैं,
0: बिल्कुल खत्म होने वाली हैं, और हमें उम्मीद है सबने बहुत ही एंजॉय किया होगा अपनी दादी नानी के घर पर।
1: और कुछ लोग काम के चक्कर में नहीं गए होंगे, तो जो छुट्टियां रह गई हैं उसको खुशी से अपनी नानी के घर जाकर बिताना बिल्कुल भी ना भूलें।
0: और अब वक्त है हेल्थ टिप्स का, तो हम अपने श्रोताओं से बात करेंगे तनाव से कैसे बचे विषय पर।
1: और आजकल सुनीता मैम टेंशन कुछ ज्यादा ही रहने लगी है।
0: बिल्कुल, तो आइए हम थोड़े से टिप्स बता दें।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आप भी उससे थोड़ा सा लाभ ले सकती हैं, हमारी श्रोता भी। तो श्रोताओं इस समय भाग दौड़ भरी जिंदगी है, आदमी के पास अपने लिए टाइम नहीं है और ना ही वह अपना खान पान ठीक रख पा रहा है और ना ही अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ समय निकाल रहा है, ना ही व्यायाम कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा और संतुलित खान पान और साथ में व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, और जब हम स्वस्थ होंगे, तनाव मुक्त होंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने कार्यस्थल पर भी तनाव मुक्त होकर काम करेंगे।
1: लेकिन अगर आप किसी कारणवश टेंशन में हैं तो आप अकेले ना रहें, दूसरों से जुड़े रहें। कहते हैं ना, अपने मन की बात साझा करें, इससे मन भी हल्का हो जाता है।
0: बिल्कुल, अपनी चिंता किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करें जिस पर आपको भरोसा हो।
1: साथ ही कुछ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों के लिए भी समय निकालें।
0: योग और ध्यान करें, इससे तनाव कम होता है। इसके साथ साथ मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, डांसिंग, लिसनिंग म्यूजिक, पेंटिंग, रीडिंग, गार्डनिंग करें। ये जो है हेल्थ टिप्स तनाव करने में सहायक होते हैं और आपका मन उसमें काफ़ी अच्छा लगता है, मन खुश रहता है,
1: और इससे आपके शरीर में जो है ना स्फूर्ति भी आएगी, रक्त संचार बेहतर होगा और आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, अच्छी नींद आएगी, साथ ही तनाव कम करने में आपको मददगार भी साबित होगी।
0: बिल्कुल, ब्लैक टी का सेवन करें, ये स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल को कम करती है, इससे शरीर को आराम मिलता है और जो मूड है वो फ्रेश रहता है।
1: क्यों ना सुनीता जी, अब बात करी जाए पत्रों की।
0: बिल्कुल,
1: तो हमारे पास प्यारा सा पत्र जिसको लिखकर भेजने वाले हमारे नियमित श्रोता है, थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खान PWD वाले, शाहिदा परवीन उर्फ शीबा, इमरान खान, रेहान खान, इकराम खान, समीना बी, आसिफा और शबीना ने।
0: आप सभी ने 16 जून का परिवार जगत कार्यक्रम सुना, आपको अच्छा लगा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और पत्र लिखने के लिए भी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बस इसी तरह आप सभी हमें पत्र भेजते रहा करें और हमें हमारी प्रतिक्रिया देते रहा करें।
0: बिल्कुल, हमें आपके पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहता है। और भी श्रोता हमें पत्र लिख सकते हैं और हमारे कार्यक्रम का पता नोट कर लीजिए, कार्यक्रम परिवार जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड नंबर है 244901।
1: तो हमारे कार्यक्रम को सुनिए, हमें पत्र भेजिए और हमें हमारी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: और अब क्या ख्याल है आयशा,
1: अब अपने श्रोताओं को एक और प्यारा सा गीत सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल, तो हम इंतजार कर रहे हैं एक बहुत प्यारे से गीत का और अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: इसी गीत के साथ प्रोग्राम से सुनीता सिंह को दीजिए अनुमति
1: और साथ ही आयशा अनवर को भी दीजिए अनुमति। आदाब और नमस्कार।

आयशा अनवर और सुनीता सिंह के साथ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार जगत। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.5

0: 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हुरमुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैंने आपका काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का था। और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीदकारों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
4: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
5: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
6: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
5: They all constitute an important threats for us.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
8: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956,

0: एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे, तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीमबेटका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीमबेटका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? मां की गोद ने और नदियों की घाटियों में हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हां चल कर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए। कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रहे थे। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा, मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा, इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ, तेरे पास। आमा, तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है?
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
2: है।
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा?
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
1: चलो चलो
3: चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज एवं FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी रामपुर है। दोपहर के 3:01 हुआ है। हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। मीडियम वेव और FM के मीटर्स पर शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। इसके अतिरिक्त FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की अनुमति दीजिए।
1: हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी जी। तो मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सगा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और देखो, बहुत सारी बातें भी हैं, तो हमारी जो आज के विषय है वो पहले बता देते हैं आरती, कि हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी।
1: बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए हैं
2: जी, और सखी सहेली के आंगन में लेकर आए हैं। सब लोग, हमारे साथी लोग, सखिया लोग जुट गए हैं। तो अगला विषय क्या है आरती?
1: बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत। हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक हैं मैड स्ट्रीट डेन की जी। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है जी। वो है आग में घी डालना।
2: घी डालना, तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार डालें और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं,
1: और इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें, और साथ ही आंगन के विषय में बताएं उनका आंगन घर का कैसा था,
2: कैसा था,
1: कैसे खेलते थे वो अपने आंगन में।
2: और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशंस, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी बड़े प्यारे से विषय हैं आरती, लेकर आई हो तुम, तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा गीत तुमने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। काली पलक पिया तोरी वाला
1: बिल्कुल,
0: भी।
1: और चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो
0: जी जी
1: अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं।
0: हाँ
1: वो
0: बताइए।
1: लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ ज़रूरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनके ज़रिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं।
0: तो बताइए।
1: तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ ज़रूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीज़ें उपयोग करते ही हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
0: बिल्कुल आरती। और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है, जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही जीवन जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं, और मेडिसेफ जो एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है।
1: बिल्कुल, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इस समय दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माई फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपके वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ ही SCW.DOSJE.GOV.IN जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती तो उनके लिए ऑडियो बुक सबसे उत्तम है। यहाँ हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
1: जी बिल्कुल। और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 1-4-5-6-7 यानी 1-4-5-6-7 और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशन भोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
0: बिल्कुल। और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और केटेड एसओएस यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जो जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
1: जी
0: तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती।
1: बिल्कुल,
0: और
1: अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी आप चीजों को, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं, जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छे
0: बिल्कुल।
1: तरीके
0: और
1: से।
0: आरती देखो, हमारी एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है। उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है। कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
1: बिल्कुल, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना भी चाहिए। जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है, तो उसके उसके लिए हम, अगर कोई घर में उस समय नहीं है, तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के जरिए या फिर किसी ऐप के जरिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, नागरिकों को या फिर से ऐसे सीनियर सिटीजन को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है। साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है, ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास ना हो सके।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है इस चीज के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और या इस तरीके की अब फोन भी चल गए हैं जिनके जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी जरूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजीर, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: तो ये बताओ ना कि तुमने कभी आग में घी डालने का काम किया है क्या?
1: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी
0: जी
1: डालने का काम। हाँ, उस घी को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
0: ये तो बहुत अच्छा तुमने
1: जी
0: काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती। नहीं मालूम पड़ा हम
1: ये ना
0: बचाव में
1: हो,
0: कर रहे हैं,
1: हाँ
0: खुद ही
1: बिल्कुल,
0: फंस गए उस चक्कर में।
1: ये ना हो कि बात पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे जाने के बाद वो लात घूंसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: जी, और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा, पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है।
1: जी
0: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हो ये अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है।
1: जी
0: अंग्रेजी में इसे एड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत
1: जी
0: अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
1: बिल्कुल। और एक और मैसेज होता है जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
0: और आरती कभी कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई और उसको सुन करके आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी तुम्हारे बारे में, ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है,
1: बिल्कुल
0: और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का
1: बिल्कुल,
0: काम
1: पड़ोसी
0: करता
1: हो
0: है।
1: चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
0: बिल्कुल, और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो
1: बिल्कुल
0: जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता है नहीं कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, तो वो
1: बिल्कुल
0: बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर
1: बिल्कुल,
0: रहे हो, है ना।
1: बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए, जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो
0: बिल्कुल,
1: अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
2: अगर

0: तो देखो भाई, इतने गीत के बाद हम लोग फिर अपने उसी बात पर आ गए कि
1: हाँ
0: भाई
1: घी
0: आग में घी डालने वाली
1: डालना,
0: बात पे।
1: तो क्या कह रहे
0: हमारे
1: हैं श्वेता?
0: हमारे साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज़्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा, चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है, बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में, 1 2 3 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, ये आग आज में आ ये लिखते हैं कि आग में घी डालना, इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सार्थक होती है। और मेरे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डालने का काम किया है, बहुत ज्यादा है।
1: छोटी बात होती है आके जा देता है, और हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं, है ना। और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है, वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है, नमक मिर्च लगा के।
0: जी
1: तो वो चीजें ना आग में घी डालने का काम करती हैं, और वो जो मनमुटाव है, जो मन भेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं।
0: तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहां पर वहीं तक सीमित
1: बिल्कुल
0: रखे हैं
1: बिल्कुल,
0: जीवन में।
1: ये

0: वो हैं शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाँ तो मंजरी, अब क्या करें?
3: अब बताओ तुम क्या करते?
2: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहां पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया।

0: तो देखो भाई, हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करने
1: बिल्कुल
0: वाली है
1: आंगन
0: कि
1: की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूं चकिया धरना ये सारे जो
1: सब
0: काम
1: कुछ
0: होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी पापड़ कचरी अचार ये सब चीजें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर जुट जाता था।
1: बिल्कुल
0: यानी
1: हर मौसम समझ लीजिए हमारे
0: जी,
1: आंगन में उतरता था।
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो
1: सब
0: पंगत में
1: आंगन
0: जो खाना खाया
1: बिल्कुल
0: जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी उसकी, उस पर बैठ कर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग
1: बिल्कुल।
0: मजा है। और
1: और जी
0: गर्मियों के दिन में, हाँ तुम क्या कहने
1: हाँ,
0: वाली
1: मैं
0: थी?
1: ही कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो जो असली मजा होता था ना, वो आंगन में आता था। क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप
0: क्या
1: छप,
0: बात
1: इतना
0: है।
1: मजे आते थे कि
0: और तुम्हें
1: मतलब।
0: याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था, और
1: जी
0: जब निकासी की जो जगह होती ना उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे
1: बिल्कुल।
0: कि पानी भर
1: ये
0: जाए।
1: मुझे मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी,
0: सभी की
1: सभी के
0: है
1: घर आंगन, जिनके जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहां पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीजें भी करना, वहां पे इंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का
0: बिल्कुल।
1: वो भी करते थे।
0: और देखो ना हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे। आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वही नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था।
1: बिल्कुल
0: और आंगन में याद है जब कपड़े में साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर
1: बिल्कुल।
0: के करते थे, तो बहुत मजा आता था
1: और
0: उन
1: रात
0: यादों
1: में
0: में।
1: जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते अपनी यादें जब करते हैं, साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे, तो

0: बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन
1: बिल्कुल,
0: से।
1: और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं वो डुला करके एक दूसरे को करते थे हवा, वो भी बहुत यादगार है।
0: बिल्कुल
1: और हमारे साथी क्या
0: बिल्कुल, हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो, समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
1: क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहां बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहां माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहां बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहां सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी। मतलब सोच लो कितना सुंदर था वो समय, और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं। सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी, इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यही से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूं कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने, और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जब ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारी औरतें मिलकर ये गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी, यही बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे, ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसी के चौबारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे, याद होगा तुम्हें, कि ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी वहीं रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था, हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता लेती थी।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं, आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई हैं। और आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे, इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा, प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था, साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
0: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है, वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।
1: और देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यहीं बैठ कर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे और शाम का खाना तो वहीं पर बनता था, किसी किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितनी किया करते थे, शाम को बैठकर लिखाई
0: लोगों के, समझ लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं।
1: और वो याद है जब चावल बिनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे, तो उनको दाना डालने में बहुत मजा आता था।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहां सुबह शाम दिया जलाया जाता था और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे, आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे। तो उसका भी एक अपना मजा है जो है आज भी।
0: और हर मौसम का, हर मौसम का, चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, वो जो सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका यह होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
1: और जहां जहां धूप जा रही है ना वहां वहां पे कुर्सियां भी जा रही, चारपाई भी जा रही है और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ कर आंगन में। ये बहुत अच्छा टाइम पास था। उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना, यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गए सीजन में तो वो भी काट के सब, मतलब तो खान पान
0: मतलब जो भी चीजें आपको जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज का।
1: आनंद उठाते हैं गीत,
0: बिल्कुल, गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में
1: बिल्कुल
0: गुजार लिया, हम
1: इस
0: लोगों को
1: आंगन में
0: भी
1: हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी
0: अब हमें चलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो
0: सभी को
1: और
0: मंजरी वर्मा और
1: आतिश श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार, वो कहते हैं खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क।
1: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर लमसा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
3: ए बेखबर। दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
4: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
3: जी,
4: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
3: जी।
4: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
3: ओहो,
4: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, ममानी ने। तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेतीबाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
3: जी।
4: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
3: जी,
4: ये सब जो एहसास थे ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
3: जी, जी।
4: ये 1984 का जमाना था।
3: कितने बड़े थे आप?
4: मैं 71 में पैदा हुआ।
3: ओ, तब तो बहुत छोटा।
4: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था। 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलकर काम करते थे। तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
3: काम क्या कर रहे थे?
4: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
3: अच्छा।
4: जो पान में सुपारी खाई जाती
3: जी,
4: है
3: जी।
4: वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है, और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
3: जी,
4: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ, तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था,
3: क्या
4: और
3: बात है?
4: आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में,
3: जी, जी, जी।
4: या उसको समझने में, या उसके महसूस करने में।
3: हाँ।
4: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही कैजुअली, मतलब बस
3: रेडियो का स्विच ऑन कर,
4: हाँ, कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे काटा था मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल
3: बज रही थी,
4: और वो गजल थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं।
3: क्या बात।
4: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गजल कोई गा रहा था, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हो गई, और सेम मीटर में, है ना। अब वो गजल तो मैंने जाये कर दी, मुझे याद नहीं है उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं।
3: शुरू हो गई, मतलब आप कहने लगे?
4: मैं, हाँ,
3: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने लगे।
4: मेरे अंदर का शायर जो
3: जी,
4: है
3: जी,
4: मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ
3: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था।
4: अच्छा,
3: तो वहाँ पर गजलों का प्रोग्राम
4: हुआ करता था। हाँ, तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे। लेकिन आशिकी और शायरी इस तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, ख़त्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है जो चलता रहता है।
3: तो वो गजल याद है?
4: गजल तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने वो जाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे, जिसमें तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गजल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना।
3: क्या बात है।
4: अच्छा, मीटर सेम है, जो उस गजल का मीटर था वही इसका मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
3: क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की। तो
4: बिल्कुल,
3: मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की?
4: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
3: क्या बात है। शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ, या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फहरिस्त है गानों की, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
4: हाँ, वो सुना दें आप। मधोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
3: क्या बात है,
4: घर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
3: वाह वाह वाह, तो सुनते हैं मधोशी फिल्म का ये गाना।

0: दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना जरूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए,
1: जी
0: बुनियादी दर्द ऐसा

0: एक नहीं था मेरे यहां बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहां रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
1: बिल्कुल
0: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार हो,

0: चूंकि मैं बड़ा सेंसेटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है। तब मैं शायर नहीं था, लेकिन सेंसेटिव मैं शुरू से था। तो ये प्रोसेस
1: चल
0: था,
1: रही थी बचपन में।
0: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था।
1: जी
0: तो ये बहुत सारे जो दुख थे, ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का,
1: जी
0: जिसमें सारे दुख जमा हो रहे
1: जमा
0: थे,
1: हो रहे थे,
0: और
1: क्या
0: एक दिन
1: बात
0: वो
1: है।
0: फट गया
1: ओहो
0: और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ।
1: जी
0: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा,
1: जी
0: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे, जो दुनिया में थी ही नहीं लड़की,
1: जी जी जी
0: ठीक है। तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो
1: जी
0: इंग्लिश में स्किजोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ,
1: जी
0: जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का,
1: जी
0: उसके बगैर मुमकिन नहीं है,
1: उस
0: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना, वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीज़ों को बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
1: महसूस करते, वो जो
0: महसूस करते
1: खरोचे
0: हैं।
1: होती है वो खरोच आपको
0: हाँ
1: कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं
0: जी,
1: तो
0: हाँ
1: आपको सुकून मिलता है। तो
0: जी,
1: हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
1: क्या बात है।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
1: क्या बात है।
0: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे,
1: वाह वाह वाह।
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है,
1: जी
0: हम
1: जी
0: उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में,
1: हाँ
0: गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको, नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को।
1: जी
0: वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है।
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई
0: तो
1: बार।
0: दर्द हीरा है दर्द मोती है,
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपनी
0: कर।
1: मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं, नानी की जो बातें हैं आपने जिक्र किया, नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियाँ, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
0: नानी की मोहब्बतें
1: बताइए, कोई किस्सा
0: याद
1: बताइए
0: है।
1: नानी
0: मैं
1: का।
0: आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है। ओह
0: हाँ, बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है, माँ के साथ एकाध वाकया जरूर याद है, लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस जमाने में टीबी लाइलाज था,
1: जी जी
0: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया, और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से, अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी
1: क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: और वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी।

0: जी
1: बहुत,
0: जी
1: और मैं पढ़ने में तेज था शुरू से,
0: हाँ
1: एक आध दो सब्जेक्ट में कमजोर भी था,
0: हाँ
1: जैसे मैं गणित में कमजोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है दीनियात कहते हैं वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमजोर था, बाकी सब में राइटिंग वगैरह में आलेख में
0: तेज से।
1: बहुत तेज था मैं। हाँ
0: तो यहां पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहां पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे
1: हाँ सूरत में
0: जी,
1: जी
0: सूरत में।
1: जी
0: तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
1: वो शायरों में तब मैं आया नहीं था, और मैं सूरत में ही रहता
0: जी
1: था, और गुजरात उर्दू अकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था, वो बहुत ही बड़ा मुशायरा था, और ये बात है 1994 की,
0: जी
1: है ना।
0: शीनकाफ निजाम भी आए
1: हाँ
0: थे
1: हाँ
0: इसमें।
1: शीन काफ निजाम साहब ने उसकी निजामत की थी, वो उसका संचालन किया था।
0: जी
1: अच्छा आपको इतना डिटेल में
0: बिल्कुल, कुंडली आपकी पता है लेकिन हमें श्रोताओं तक पहुंचाना
1: पता
0: है सारी बात
1: तो उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली,
0: जी।
1: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी, और शीन काफ निजाम, और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे
0: जी
1: सब।
0: जी
1: और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
0: जी
1: मुल्क
0: जी
1: में।
0: जी
1: संदेशे आते हैं, है
0: गाने
1: ना,
0: आते रहते
1: आए
0: बिल्कुल।
1: जाते हुए लम्हों, वो गाने, मतलब ये वही जमाना था।
0: हाँ
1: और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे, और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब, तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं।
0: जी जी जी
1: हाँ तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था, और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई, तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है,
0: जी
1: बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं
0: हाँ
1: दूसरे शहरों
0: उनको
1: से आए
0: बाद में
1: हैं
0: रखो।
1: और जो नामचीन हैं बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा खत्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीन काफ निजाम साहब ने। अच्छा उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी
0: जी
1: थे,
0: जी जी
1: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया, और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था, और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए
0: जी
1: थे
0: जी
1: इनकी देखभाल में भी हम
0: जी
1: थे,
0: हाँ
1: जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
0: और उसमें खुद को
1: जावेद।
0: प्रूफ करने का सभी समय
1: हाँ
0: था।
1: हाँ
0: जी
1: जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी, इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात
0: जी
1: थी, शीन काफ निजाम साहब से शायद पहले मिला हूँगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहां पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवान ही नावेल है, उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक नावेल लिखा
0: जी
1: है जो
0: जी जी
1: दो जिल्दों में है, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी,
0: जी
1: दीवारों के बीच, वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी, और मैंने वो पढ़ रखी थी,
0: जी
1: और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं, निदा फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ,
0: क्या बात है
1: है ना।
0: जी, काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा था।
1: हाँ, तो हमारी जिंदगी बड़ी मिलती जुलती थी,
0: जी
1: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नज़दीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस जमाने में मुशायरों में तूती बोलता था,
0: बिल्कुल
1: और खास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
0: जी
1: उनको।
0: जी
1: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा, और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने मेरे लिए मतलब अकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने मुझे। तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
0: ओहो, क्या बात
1: ठीक है।
0: है।
1: और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे, और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी और
0: विविध भारती में आ चुकी हैं वो।
1: अच्छा, और
0: जी
1: बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
0: अभी भी लगती है।
1: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से भी थोड़ा मिलता जुलता है ना। और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी हैं, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई
0: जी
1: हैं, प्रोफेसर भी थी वो। तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे ही थी, हाँ, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत लगती थी और काली साड़ी में थी वो। तो अब जब मुझे बुलाया गया माइक पर, तो मैंने एक गजल का मतलब सुनाया, मतलब पहला शेर, किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए,
0: क्या बात है।
1: किसी भी खेत पे बरसे कहीं का हो जाए, खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह।
1: खुदा करे कि ये बादल जमी का हो जाए। फिर एक शेर था जो मैंने मालती जी की नज़र कर दिया, है ना। हालांकि कोई दूसरा शायर होता तो निदा फाजली साहब की मौजूदगी में
0: जी,
1: उनकी बीवी को ऐसा शेर
0: हिम्मत नहीं करते, हिमाकत
1: नज़र,
0: नहीं
1: हाँ, नज़र
0: करता।
1: करने की हिम्मत नहीं करता।
0: जी हाँ,
1: अब मैंने जुर्रत कर ली
0: जी,
1: और वो शेर मैंने पढ़ दिया कि मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं,
0: क्या बात है।
1: मैं उसके जिस्म का सब जहर पी के मर जाऊं अगर वो सांप मेरी आस्तीन का हो जाए।
0: वाह,
1: अब इस शेर पे इतना हंगामा हो गया, अचानक
0: ओहो,
1: इतना हंगामा हो गया कि मतलब जैसे मुझे सुरूर सा हो गया, मैं जैसे झूमने लगा, मैं इतनी दाद मिल गई मुझे। और फिर एक दूसरा शेर था, वो भी मैंने उन्हीं की नजर कर दिया इसके बाद, कि दुआ करो वो सितारा जमी पे टूट गिरे, हमारे साथ रहे और यही का हो जाए।
0: क्या बात है। बहुत
1: अब निदा साहब ने
0: बढ़िया।
1: उठ के मुझे माला पहनाया
0: जी
1: और मालती जी को बुके लेके जबरदस्ती भेजा कि
0: जी
1: जा दे
0: जी
1: दे। तो इस तरह से वो मुशायरा मेरी
0: बहुत
1: जिंदगी का एक
0: यादगार रहा।
1: यादगार और पहला बड़ा मुशायरा था।
0: जी
1: उससे पहले मैंने छोटी छोटी गोष्ठियां जो होती हैं हर शहर में, जो शायरों की अपनी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, या कोई छोटा मोटा मुशायरा दो चार पढ़ा होगा, ये मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। और इस तरह से कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ने का मौका मिला, और हम सब मायूस ही थे, लेकिन बस कुछ खुदा का ऐसा करना था कि मुझे बहुत दाद मिली, बहुत कामयाब हुआ मैं। और इसी मुशायरे के जरिए जावेद अख्तर साहब से मेरे रिश्ते बने, निदा फाजली साहब से दोस्ती हुई, मोहम्मद अलवी साहब से हुई, और मैं फिर बम्बई आया तो निदा साहब से भी मिला और जावेद साहब से भी मिला मैं। हाँ
0: जी, तो जब आप ये अपने शायरी सुना रहे थे तो वहां पर मुझे भी आपका ही एक शेर याद
1: इरशाद
0: आया है।
1: इरशाद
0: मैं
1: इरशाद।
0: सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह जाए।
1: क्या बात है।
0: मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, ये आरजू है कि आंखों में रात रह
1: अरे
0: जाए।
1: वाह,
0: तो ऐसे आपके तमाम अशार लोग सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं। लोग अपनी महबूबा के लिए जब खत लिखते हैं, खतों खतूत का जमाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर है अभी जमाना, तो लोग व्हाट्सएप पे भेजा करते हैं।
1: हाँ, ये
0: और
1: शेर भी कितना यूनिक है
0: जी
1: कि मैं इसलिए सो रहा हूँ कि तेरे ख्वाब देख पाऊँ,
0: जी
1: मैं
0: जी
1: सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के
0: जी
1: लिए।
0: तो इसमें तमाम तरह के जज्बात हैं। हम तमाम जज्बात खंगालेंगे और बहुत सारी यादें आपकी खंगालेंगे, यादों के गलियारों में ले चलेंगे, फिल्मी दुनिया की ओर ले चलेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर आप श्रोताओं को ले आइए गाने के पास। कौन सा गाना सुनवाएं?
1: थप्पड़ का सुना दीजिए, आपको ही बहुत पसंद है, एक टुकड़ा धूप।
0: एक टुकड़ा धूप, ये तो हम सबका पसंदीदा गाना
1: जी
0: है। थप्पड़ फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये थप्पड़ फिल्म का गाना था शकील साहब, और अनुभव सिन्हा जी इसके फिल्म के निर्देशक थे। विविध भारती के स्टूडियो में आ चुके हैं और मेरा सौभाग्य कि उनसे हमने बहुत सारी बातें की, आपका भी जिक्र हुआ था।
1: अच्छा,
0: तो आप बताइए, अनुभव सिन्हा से कैसे मुलाकात हुई, मुंबई आए तो इस गाने तक आप कैसे पहुंचे, इस फिल्म तक कैसे पहुंचे? फिल्म भी बड़ी प्रशंसित थी और ये गाना एक टुकड़ा धूप का तो बहुत प्रशंसित हुआ ये गाना।
1: जी अहमद फराज साहब का एक शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।
0: क्या बात है
1: तो अनुभव सिन्हा साहब जरा मुझे देर में मिले।
0: जी।
1: हुआ ये था कि हमारे एक दोस्त हैं जो लंदन में रहते हैं, उस जमाने में बॉम्बे में भी रहते थे और लंदन में भी रहते थे, ब्रिटिश नागरिक हैं वो,
0: जी
1: तो सेवी अली नाम है उनका। उन्होंने मुझे अनुभव सिन्हा साहब से मिलवाया था, नंबर भी उन्होंने ही दिया था मुझे।
0: जी
1: अनुभव सिन्हा साहब शायरी के शौकीन हैं और खुद भी वो कविता लिखते हैं और गजल भी, शेर भी कहते हैं कभी कभी।
0: अच्छा, ये बात
1: हाँ,
0: तो नहीं पता थी।
1: कभी कभी शेर कहते हैं, वो नहीं बताते हैं लेकिन कभी कभी कहते हैं और फिर मुझे सुनाते
0: क्या बात
1: हैं।
0: है,
1: हाँ
0: बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: हाँ, तो वो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, वो
0: जी,
1: किताब पढ़ते हैं,
0: बहुत
1: नावेल
0: पढ़ते
1: और
0: हैं
1: कहानियाँ
0: जी।
1: बहुत पढ़ते हैं और लिखते भी हैं वो। तो मैं उनको कभी कभी कोई शेर या कभी कोई गजल ऐसे व्हाट्सएप पर भेज दिया करता था,
0: जी
1: तो उनको अच्छा लगता था तो मुझे रिप्लाई भी देते थे। और उनकी जो बड़ी बहन है, जो शायद दिल्ली में रहती हैं या कलकत्ता में रहती
0: जी
1: हैं, बड़ी बहन है, वो भी मेरी बड़ी फैन है, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने भी शायद कुछ जिक्र किया होगा। और अभी जो मैंने गजल सुनाई, खुद को इतना भी मत बचाया कर, ये गजल उनको बड़ी पसंद है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन ये अनुभव सिन्हा साहब के जरिए ही मुझे पता चला। तो हुआ ये कि मैंने ये बात इसलिए कही कि तू बहुत देर से मिला है मुझे, अनुभव सिन्हा साहब के जो फिल्म मेकिंग है इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उनका जो सफर है रावण तक या तुम बिन टू तक, वो एक अलग अनुभव सिन्हा है।
0: बिल्कुल।
1: और जो मुल्क से शुरू होके जो आया है अभी
0: थप्पड़
1: 80 तक,
0: और भीड़, ये
1: भीड़
0: सब
1: और 80 तक आया है,
0: आर्टिकल 15
1: आर्टिकल
0: बिल्कुल अलग है।
1: 15, थप्पड़, अनेक, ये सारी सारा जो काम है ये बहुत अलग और मुख्तलिफ काम है। लेकिन बड़े स्केल की फिल्में, ये फिल्में भी बड़ी हैं लेकिन जैसे रावण का स्केल जो है, या 10 का, तथास्तु का, कैश का, ये फिल्में बहुत बड़े पर्दे की फिल्में थीं
0: जी
1: और बहुत मल्टी स्टारर फिल्में थीं, और इन फिल्मों में गानों की गुंजाइश बहुत होती थी, और गाने जो हैं बहुत रोमांटिक गाने, कमर्शियल गाने जिसको कहते हैं खास तौर से, ऐसे गाने बनते थे। वो गानों से ही आए थे अनुभव सिन्हा साहब, वीडियो के डायरेक्टर थे, जो पहले एल्बम का बड़ा क्रेज था,
0: जी,
1: तो एल्बम के गाने बड़े फिल्म के गानों की तरह शूट होते थे। तो
0: और
1: वो
0: सुंदर फिल्मांकन किया
1: हाँ,
0: उन्होंने।
1: बहुत सारे उन्होंने गानों के वीडियो शूट किए हैं फिल्म से पहले। तो ये जब भूषण कुमार जी जब दिल्ली से बॉम्बे आए, अपने टी सीरीज को संभालना शुरू किया, और जो पहली फिल्म बनाई, उनकी देखरेख में जो पहली फिल्म बनी थी वो तुम बिन थी, अनुभव सिन्हा साहब उसके डायरेक्टर थे। अनुभव सिन्हा साहब से उन्होंने खुद ही कहा कि इतने अच्छे वीडियो डायरेक्ट करते हैं आप, तो हमारे लिए फिल्म बनाइए। तो वो पहली फिल्म थी उनकी तुम बिन। वहां से लेके रावण तक की जो उनकी जर्नी है, उस जर्नी में मैं नहीं हूं, उसी का मुझे दुख है। लेकिन जितने अनुभव सिन्हा मुझे मिले हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है,
0: जी,
1: वो भी मेरी खुशनसीबी है।
0: मैं तो उनको अनुभव का खजाना बोलती हूँ।
1: हाँ, तो ये जो दूसरे वाले अनुभव सिन्हा है ये मुझे मिले, वो जो पहले वाले,
0: पहले
1: जो
0: वाले
1: पहला
0: नहीं।
1: वाला जो हिस्सा है वो मुझे नहीं मिले।
0: देर आए दुरुस्त
1: तो
0: आए।
1: हाँ, तो हुआ ये था कि रावण के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस कायम किया, उनके बैनर का नाम है बनारस, और वो खुद बनारस के रहने
0: जी
1: वाले
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: तो आदमी जहाँ पैदा होता है उस जगह से उसको बहुत प्यार होता है। मैं आज भी आजमगढ़ जब जाता हूँ तो जिन गलियों में खेलता था उनकी शक्लें बदल गई हैं, और कुछ गलियां खत्म हो गई हैं,
0: जी
1: कुछ जगहें बदल गई हैं सब, फिर भी वहां जाता हूं मैं। वो जो पुराने पेड़ होते थे सब कटकटा गए हैं, एकाध जो बचे हैं उन पेड़ों के पास जाता हूँ, वो जो स्कूल जहाँ पढ़ता था वहाँ जाता हूँ अकेला, और उसको फील करता हूँ, मैं सिर्फ फील करता हूँ खामोशी से। तो अनुभव सिन्हा साहब बनारस के हैं, इसलिए अपने बैनर का नाम भी उन्होंने बनारस रखा है,
0: जी जी
1: बड़ा
0: जी
1: खूबसूरत सा
0: जी
1: नाम भी है
0: उनके
1: बनारस।
0: नंबर पर वही लिखा हुआ था
1: हाँ हाँ
0: उनके
1: हाँ
0: व्हाट्सएप नंबर पर।
1: हाँ तो हुआ ये कि जब उन्होंने प्रोडक्शन हाउस

0: अनुभव सिन्हा साहब को उस फिल्म में ऐसे गाने चाहिए थे जिनमें शायरी हो, है ना। रोमांटिक फिल्म थी तो शायरी वाले गाने चाहिए थे। मुझसे पहले दो तीन गीतकार उसमें आजमाए गए थे, मुझे ऐसा बताया गया, बात नहीं बनी, फिर मुझे बुलाया गया। वो भी अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे फोन नहीं किया, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे शारिब तोशी, तो तोशी जी को उन्होंने कहा कि ये नंबर है शकील आजमी का, शकील आजमी को बुलाओ, वो इसके गाने बढ़िया लिखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, हम बुला लेते हैं। तो तोशी जी ने मुझे फ़ोन किया, और फिर वही, तब मैं मीरा रोड में रहता था, मैं सुबह सुबह कुछ 7:30-8 बजे उनके घर आ गया, वो मलाड में रहते थे, और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे अनुभव सिन्हा साहब के ऑफिस ले गए। अच्छा, पहले से उन्होंने भी मुझे फ़ोन पे नहीं बताया कि मामला क्या है और कहाँ जाना है, फिर वो रास्ते में बताया कि सिन्हा साहब यहाँ जा रहे हैं, उनकी फिल्म का एक गाना है, तो एक गाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो सारे गाने धीरे धीरे मैंने लिखे, और उसके गाने बहुत हिट हुए, बहुत ही कामयाब हुए, उसका म्यूजिक मतलब उसने बहुत पैसे कमाए, फिल्म नहीं चली इतना, गाने बहुत हिट हुए।
1: ये फिल्म का नाम एक बार फिर बताइए।
0: जिद,
1: जिद फिल्म।
0: उसके गाने थे सांसों को जीने का इशारा मिल गया,
1: जी
0: तू
1: जी
0: मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, फिर मरीज़े इश्क हूँ मैं, फिर तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये सारे गाने सुपर हिट हुए उसके।

तो एक हमारी समझिए कि एक कामयाब जोड़ी बन रही थी, और उसके बाद फौरन उनकी जो वाइफ हैं रत्ना सिन्हा जी, वो फिल्म कर रही थी शादी में जरूर आना, फिर उसके गाने भी मैं लिख रहा था। और फिर अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे एक बताया कि मैं ऑफिस में ही था, उनके ऑफिस में ही, कि मैं

0: ये फिल्म कर रहा हूं। तो अनुभव सिन्हा साहब जो हैं, जिद के बाद उन्होंने तुम बिन टू, है ना। अच्छा, ये सारा लॉस हो रहा था, ये जो फिल्में अपनी कंपनी में उन्होंने प्रोड्यूस की वो सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिद भी नहीं चली थी। जिद के म्यूजिक ने बहुत अच्छा किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी। ये जो मैंने अभी नाम लिए, मैंने
1: जी।
0: ये सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब टी सीरीज की तरफ से अनुभव सिन्हा साहब को ऑफर आया कि भाई ये जो तुम बिन टू बनाइए हमारे लिए, भूषण कुमार जी ने उनको ऑफर दिया, तो तुम बिन टू बनाई, वो भी नहीं चली। उसमें एक गजल थी कोई फरियाद, जो जगजीत सिंह जी ने गाई थी, उस गजल को हमने इसमें रिक्रिएट किया और इसका नाम चेंज हुआ, तेरी फरियाद हो गया, है ना। तो ये पिक्चर भी नहीं चली
1: जी।
0: उसके बाद जो है ये रिलीज हुई रत्ना सिन्हा जी की फिल्म, ये हिट हो गई और उसमें गाने भी हमारे बहुत चले और बड़ी इज्जत मिली। उसमें एक गाना था, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें, तेरी बातें चटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी हैं, मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागू तुझमें, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें। तो
1: है?
0: ये गाना इसने बड़ी इज्जत दी मुझे, और यूं समझिए कि बनारस का ये दूसरा एंथम हो गया। पहला तो खई के पान बनारस वाला, है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये दूसरा एंथम ये मेरा गाना बना। बनारस में जब भी आप जाएं, और मतलब मैं जब भी जाता हूं बनारस, तो मुझे बड़ी इज्जत मिलती है इस गाने की वजह से, और पूरे देश में मिलती है
1: जी।
0: और पॉपुलर हुआ बहुत ये गाना।
1: बात चल रही थी तुम बिन टू फिल्म के गाने का भी जिक्र किया
0: हाँ,
1: है।
0: हाँ,
1: वहां पर जगजीत सिंह साहब ने एक गजल गाई है, वो गाना गाया है जगजीत सिंह साहब, और साथ में रेखा भारद्वाज की आवाज थी।
0: दिया।
1: तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जगजीत सिंह साहब एक गजल के मामले में गजल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, और कौन ऐसा नहीं है जो उनका मतलब पसंदीदा सिंगर नहीं
0: जी
1: है?
0: मेरे तो सबसे पसंदीदा गजल सिंगर है, मैं इज्जत करता हूँ मेहदी हसन खान साहब की, गुलाम अली साहब की, सबकी।
1: और रेखा भारद्वाज भी थी उसमें।
0: हाँ,
1: उस
0: लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे छूता है गजल सिंगर, वो है जगजीत सिंह साहब। और वो गजल बड़ी फेमस थी, तो उस गजल को लाना चाहते थे अनुभव सिन्हा साहब। मैंने उनसे जिद भी की कि सेम मीटर में मैं दूसरी गजल लिख देता हूँ। बोले नहीं, मुझे तो वही चाहिए।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: तो मैंने कहा कि फिर ये मुखड़ा चेंज करते हैं, इसका मतला चेंज करते हैं। नहीं, मतला वही रहेगा। तो फिर मैंने कहा फिर नाम भी वही रहेगा, तो फिर गाना भी वही रहेगा, तो उसमें मैं कहाँ नजर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं, आप मुखड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन उसमें फरियाद लफ्ज मुझे चाहिए, फरियाद लफ्ज चाहिए मुझे।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको लिखा कि अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे।
1: क्या बात है।
0: मुझे सिचुएशन बताई, पहली जो फिल्म थी तुम बिन, उसकी भी जो कहानी थी, वो एक लड़का है जो बजाहिर मर गया है
1: जी,
0: लेकिन बाद में वापस आता है, ठीक है, और फिर दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर वो वापस आता है। इसी तरह की कहानी इसमें भी थी। तो वो लड़का जो है मर गया है या गायब हो गया है, बजाहिर आप समझिए मर गया है, और लड़के का बाप जो है उसके फोटो पे हार लगा रहा है, और लड़की

0: अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे,
1: क्या बात है, अब कोई आस न उम्मीद बची हो जैसे। वाह
0: तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे।
1: वाह वाह।
0: ये नेहा शर्मा के हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से,
1: हाँ
0: के उस बाप ने भी उसको समझा दिया कि इसके ख्वाब मत देख और यहां से निकल, तेरी जिंदगी बहुत, तुझे बहुत अभी जीना है। तो मान तो रही है कि ठीक है, अब कोई आस ना उम्मीद बची हो जैसे, लेकिन फिर भी तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे,
1: क्या
0: मतलब
1: बात है।
0: अभी भी जैसे तू है ना, मान भी लिया फिर भी। तो होता यह था कि मुखड़े के बाद एक लाइन उस पहली वाली गजल से हम लेते थे और मुझे सिचुएशन बताई जाती थी कि इस लाइन पर ये सिचुएशन है और इस लाइन को आपको दो लाइन करके और ये तीसरी लाइन ही आएगी।
1: जी।
0: तो वो थोड़ा टेढ़ा काम था, सिचुएशन को भी मैनेज करना और उस लाइन को भी मैनेज करना,
1: जी।
0: ठीक है। तो वो बहुत सलीके से हुआ और बहुत जल्दी आधे घंटे में ये गाना लिख दिया था मैंने। और उसमें एक जो सबसे अच्छा शेर है कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर,
1: वाह।
0: ये पहली जो गजल थी ये फायज अनवर साहब ने लिखी थी, फायज भाई हमारे दोस्तों में हैं, उन्होंने लिखी थी। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर,
1: वाह क्या
0: जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: बात है।
0: अब मैं आपको बताने के लिए, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अब जैसे ये दो लाइन है, दो मिसरों का एक शेर होता है गजल में। अब पहला मिसरा मुझे छोड़ देना, पहली लाइन, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, ये छोड़ देना है, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, इसको लेना है।
1: जी
0: और इसके ऊपर दो लाइन लगानी है, फिर ये आना चाहिए,
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: वो तीनों लाइनें कनेक्ट होनी चाहिए और सिचुएशन जो है वो बात भी होनी चाहिए।
1: जी
0: तो मैं खाली ये एक लाइन पर बात करता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, रात कुछ ऐसे कटी है
1: रात कुछ ऐसे कटी है,
0: कि सहर ही ना हुई,
1: क्या बात है। वाह।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जा के निकलने की खबर ही ना हुई।
1: वाह क्या बात है।
0: रात कुछ ऐसे कटी है कि सहर ही ना हुई, जिस्म से जा के निकलने की खबर ही ना हुई, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे।
1: क्या बात है।

जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इस कार्यक्रम का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे में।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई केंद्र के प्रसारण। संध्या के 5 बजे हैं। मीडियम वेव और FM के मीटर्स पर हमारी दूसरी सभा अब एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।

आज शाम कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को दीपिका का नमस्कार। आज शाम की महफिल में हम उम्मीद करते हैं आप सभी प्रसन्न और कुशल मंगल होंगे और हमें सुन रहे होंगे बड़े ही प्यार से।

दोस्तों, यूं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग जुड़े होते हैं और हम भी लगभग उन्हीं रिश्तों के बंधन को निभाते भी हैं, पर हमारी ज़िंदगी में कुछ पल, कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जब हमारी ज़िंदगी हमें खुद को बेहतर बनाने के मौके देती है, यानी जब हम खुद को तराशते हैं, खुद को बिल्डअप करते हैं, अपनी हॉबी, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानते हैं। हाँ, शुरुआत में इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जब हम अपनी क्रिएटिविटी को पहचानने लगते हैं और उस पर मन से मेहनत करते हैं तो हमें उससे प्यार हो जाता है और हम अपने दिन में से अपनी क्रिएटिविटी पर काम भी करने लगते हैं, तो चीज़ें बेहद ही खूबसूरत और आसान सी लगने लगती हैं। हमारी जो भी क्रिएटिविटी है, यानी कलाकारी है, जिसमें हम अपनी क्रिएटिविटी को पहचानते हैं, चाहे वो सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या फिर और भी कुछ, जैसे कि पोइट्री लिखना हो सकता है। आज के समय में हम सब इन चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। क्रिएटिविटी, हाँ दोस्तों, क्रिएटिविटी अगर मन, मेहनत और पूरे ध्यान से की जाए तो हमारी ये कला बन जाती है। हम अपनी क्रिएटिविटी में व्यस्त होंगे तो तनाव के शिकार होने से भी बच सकते हैं। हमारी क्रिएटिविटी हमें एक्टिव बनाती है और जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ये हमारा सहारा भी बनती है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है, हमारी क्रिएटिविटी को दुनिया शुरुआत में एक्सेप्ट करे या ना करे, तो इसे हम अपने लिए भी सहेज सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कभी कभी हमें ऐसे समय से भी गुजरना पड़ सकता है जहां हम अकेले पड़ जाएं, तो वहां क्रिएटिविटी

साथियों, जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। तो इन्हीं बातों के साथ आज के आज शाम कार्यक्रम से दीपिका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।
1: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष, हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
2: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
4: से नो टू प्लास्टिक।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हुए हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे स्वास्तिक और कशिका।

0: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथ ही सुन रहे होंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जिसे लेके आज आपके सामने हाजिर हूँ मैं कशिका अग्रवाल
1: और मैं स्वास्तिक मिश्रा। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए रोज की तरह आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज के सवाल के साथ। दोस्तों, हमारा आज का सवाल है, ब्रह्मोस 2 मिसाइल का संयुक्त विकास किन दो देशों द्वारा किया जा रहा है?
0: दोस्तों सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, ब्रह्मोस 2 मिसाइल का संयुक्त विकास किन दो देशों द्वारा किया जा रहा है? और इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी रामपुर पे, और आज की अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए अपने अपने जवाब। सही जवाब देने वाले श्रोता साथियों के नाम हम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में।
1: वैसे कशिका, बचपन में कोई ऐसा खेल था क्या जिसे खेलने के लिए तुम अपने सारे काम जल्दी निपटा लिया करती थी?
0: अरे बिल्कुल, शाम होते ही बस बैडमिंटन का रैकेट उठाना होता था। कभी कभी तो मम्मी भी आवाज लगानी पड़ती थी कि अब जल्दी घर आ जाओ। और तुम्हारा क्या हाल था?
1: मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। स्कूल से आते ही दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने निकल जाते थे। उस समय हार जीत से ज्यादा मायने साथ खेलना रखता था।
0: सच कहा, खेलों की यही तो खूबसूरती है, ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ ही नहीं बल्कि दोस्ती, अनुशासन और टीम वर्क भी सिखाते हैं।
1: और शायद यही वजह है कि दुनिया भर में खेलों को लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है।
0: बिल्कुल, और खेलों की इसी भावना से जुड़ा है आज का दिन। दोस्तों आज 23 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मना रही है।
1: जी हाँ दोस्तों, यह दिन हमें याद दिलाता है कि खेल सिर्फ पदक जीतने का नाम नहीं है बल्कि एक बेहतर, स्वस्थ और एकजुट समाज बनाने का माध्यम भी है।
0: और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 23 जून 1894 को आधुनिक ओलंपिक आंदोलन की नींव रखी गई थी। इसी दिन इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी यानी IOC की स्थापना हुई थी।
1: और इस पहल के पीछे थे पियर दे कुबर्टिन।

0: जिन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। उनकी सोच थी कि खेल देशों और संस्कृतियों के बीच दूरी कम कर सकते हैं।
1: और यही कारण है कि ओलंपिक आज सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि विश्व एकता और शांति का प्रतीक बन चुका है।
0: ओलंपिक का आदर्श वाक्य है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यानी और तेज और ऊंचा और मजबूत साथ मिलकर। यह संदेश हमें बताता है कि प्रगति का रास्ता प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सहयोग से भी बनता है।
1: और साथियों, जब ओलंपिक की बात होती है तो हमारे भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियां भी गर्व से याद आती हैं। उन्होंने अपने परिश्रम और लगन से विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन किया है।
0: लेकिन एक बात है जो हर खिलाड़ी हमें सिखाता है, वो ये है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास होता है।
1: बिल्कुल, और यही सीख हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या कोई सपना, लगातार प्रयास ही हमें मंजिल तक पहुंचाता है।
0: तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर क्यों ना हम एक छोटा सा संकल्प लें कि अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए जरूर निकालेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच ही हर सफलता की पहली सीढ़ी है।
0: और इसी संदेश के साथ हम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।
1: खेलों से जुड़िए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार बहुत कुछ है खास।

0: दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। अब चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।

0: दोस्तों कुछ खास है आज में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन के बारे में जो समाज के उस वर्ग की चुनौतियों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसके बारे में अक्सर पर्याप्त चर्चा नहीं होती।
1: दोस्तों आज 23 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी इंटरनेशनल विडोज डे मनाते हैं। ये दिन दुनिया भर की विधवा महिलाओं के जीवन, उनके संघर्षों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है।
0: दोस्तों कई समाजों में पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को केवल व्यक्तिगत दुख का ही सामना नहीं करना पड़ता बल्कि आर्थिक, सामाजिक और कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के अधिकार और सामाजिक स्वीकृति जैसे मुद्दे कई विधवा महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं।
1: इन्हीं चुनौतियों को सामने लाने और उनके समाधान की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य केवल समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि विधवा महिलाओं को सम्मान, समान अवसर और आवश्यक सहयोग मिल सके।
0: साथियों समाज में सकारात्मक बदलाव तब संभव होता है जब हर व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों से परे सम्मान और अवसर दिए जाएं। इसी सोच के साथ विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों पर भी जोर दिया जाता है।
1: यह दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसकी वैवाहिक स्थिति से नहीं होती। हर व्यक्ति को सम्मान, आत्मनिर्भरता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है।
0: अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस केवल एक जागरूकता दिवस नहीं है बल्कि ये संवेदनशीलता, समानता और सामाजिक सहयोग के महत्व को समझने का भी अवसर है। ये हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि एक अधिक समावेशी और सहायक समाज के निर्माण में हम सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है।
1: दोस्तों अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे दिवस के बारे में जो उन लोगों के योगदान को पहचानने का अवसर देता है जो प्रतिदिन समाज और देश की सेवा के लिए कार्य करते हैं।
0: आज यानी 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक

0: सेवा दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य लोक सेवा के महत्व को समझना और उन लोगों के योगदान को सम्मान देना है जो प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से समाज के विकास में भूमिका निभाते हैं।
1: लोक सेवा किसी भी देश के सुचारू संचालन की आधारशिला मानी जाती है। सरकारी संस्थाएं और उनके कर्मचारी ये सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों तक आवश्यक सेवाएं समय पर पहुंचें और विकास की योजनाओं के लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सकें।
0: और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की शुरुआत इस सोच के साथ की कि अच्छी लोक सेवा केवल प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है बल्कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। जब सार्वजनिक सेवाएं प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह होती हैं, तो समाज में विश्वास और विकास दोनों को मजबूती मिलती है।
1: लोक सेवा का महत्व केवल बड़े निर्णयों तक सीमित नहीं है। स्कूलों में शिक्षा, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन जैसी अनेक सुविधाएं भी इसी व्यवस्था का हिस्सा हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं।
0: साथियों, ये दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल नीतियां बनाने से नहीं होती बल्कि उन नीतियों को ईमानदारी और दक्षता के साथ लागू करने से होती है। इसलिए लोक सेवा में कार्य करने वाले लोगों की भूमिका समाज के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
1: संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस केवल एक औपचारिक अवसर नहीं बल्कि यह सुशासन, जवाबदेही और जनसेवा के महत्व को समझने का भी दिन है। यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि एक बेहतर समाज के निर्माण में प्रभावी लोक सेवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
0: दोस्तों, कुछ खास है आज में बस इतना ही। अब आज की शाम को और खास बनाते हुए सुनते हैं प्रोग्राम की पहली गजल आर डी बर्मन जी की आवाज में।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना आशा भोसले जी की आवाज में ये गीत, और इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारा आज का कुछ खास आज सेगमेंट।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
3: साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज दिन है मंगलवार और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेशल सेगमेंट भारत के गलियारे से। चलिए सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं हमारे पहले सब सेगमेंट इमारतें बोलती हैं से। दोस्तों, मैं हूँ महाबत मकबरा। पत्थरों में उकेरी गई वो कहानी जहाँ इतिहास, कला और शाही वैभव एक साथ सांस लेते हैं। मेरा जन्म महाबत मकबरा की धरती पर हुआ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब जूनागढ़ रियासत के नवाब महावत खान द्वितीय की स्मृति में मेरा निर्माण आरंभ किया गया। मैं केवल एक मकबरा नहीं हूँ, बल्कि उस युग की कलात्मक दृष्टि, स्थापत्य कौशल और सांस्कृतिक समृद्धि का जीवंत प्रमाण हूँ। दूर से देखने पर ही मेरी भव्यता लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मेरे ऊंचे गुंबद, नकाशीदार मेहराबें, सुंदर जरोखे और आसमान की ओर घूमती हुई सर्पिल सीढ़ियां मुझे भारत के सबसे अनोखे स्मारकों में स्थान दिलाती हैं। मेरी बनावट को देखकर अक्सर लोग ठहर जाते हैं, क्योंकि मैं किसी के स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मेरे स्वरूप में इस्लामी, गोथिक और यूरोपीय वास्तुकला का एक ऐसा अद्भुत संगम दिखाई देता है जो बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलता है। मेरी हर दीवार, हर स्तंभ और हर मेहराब अपने भीतर एक कहानी छिपाए हुए हैं। मेरे शिल्पकारों ने केवल पत्थरों को तराशा नहीं, बल्कि उनमें अपनी कल्पना और कौशल भी उकेर दिया। मेरी बारीक नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि उस समय वास्तुकला को केवल निर्माण नहीं, बल्कि कला की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता था। जब सुबह की पहली किरणें मुझ पर पड़ती हैं तो मेरी आकृतियां जीवंत हो उठती हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं स्वयं अपने इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। मैंने जूनागढ़ रियासत के गौरवशाली दिनों को देखा है, मैंने शाही जुलूसों की आहट सुनी है, राजसी समारोहों की भव्यता देखी है और उस दौर की समृद्ध संस्कृति को अपने आसपास फलते फूलते महसूस किया है। उस समय जूनागढ़ केवल एक रियासत नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और परंपराओं का केंद्र था। मेरी उपस्थिति उस शाही विरासत की याद दिलाती है जिसने क्षेत्र की पहचान को आकार दिया और समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। राजाओं और नवाबों का युग समाप्त हो गया, सत्ता के स्वरूप बदल गए और नई पीढ़ियां इतिहास के नए अध्याय लिखने लगी, लेकिन मैं आज भी उसी शान से खड़ा हूँ। मेरी दीवारों में बीते हुए समय की यादें सुरक्षित हैं,

0: इतिहास दर्ज है जिसे कोई समय मिटा नहीं सकता। आज दूर दूर से आने वाले पर्यटक मुझे देखने आते हैं। वो मेरी अनोखी वास्तुकला को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विशेष रूप से मेरी सर्पिल सीढ़ियाँ और भव्य गुंबद लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे किसी परिकथा के महल जैसे प्रतीत होते हैं। बहुत से लोग मेरी तस्वीरें लेकर लौट जाते हैं, लेकिन जो मेरी कहानी को समझते हैं वे मेरे भीतर छिपे इतिहास और विरासत को भी महसूस करते हैं। मैं केवल अतीत की एक स्मृति नहीं हूँ, बल्कि ये भी याद दिलाता हूँ कि कला और सौंदर्य की कोई सीमा नहीं होती। अलग अलग संस्कृतियाँ, परंपराएं और विचार जब एक साथ मिलते हैं तब ऐसी अद्भुत कृतियाँ जन्म लेती हैं जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। मैं महावत मकबरा हूँ, इतिहास, कला और शाही विरासत का जीवंत प्रतीक। मैं ये सिखाता हूँ कि समय बदल सकता है, साम्राज्य समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सृजनशीलता और सुंदरता अमर रहती है।
1: दोस्तों, अब चलिए सुनते हैं मेहदी हसन जी की आवाज में ये प्यारी सी गजल।

मैं इतने हजार मील से आया हूँ आप लोगों के सामने, तो आपके लिए रात पूरी दी हुई है मैंने, और आप लोग शायद नींद आ रही है जो आप आराम करना चाह रहे हैं। नहीं, वो मैं देख रहा हूँ ना।

0: साथियों, अब समय है हमारे दूसरे सब सेगमेंट का, घुमक कड़ी।
1: साथियों, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां विशाल बर्फीले पहाड़, प्राचीन मठ, शांत वातावरण और रोमांच से भरे रास्ते एक साथ देखने को मिलते हैं, तो स्पिति वैली का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है।
0: दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित स्पिति वैली देश के सबसे अनोखे और खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक मानी जाती है। स्पिति का अर्थ होता है मध्य भूमि, क्योंकि ये क्षेत्र भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सुंदरता के कारण ये जगह हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है।
1: समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसी यह घाटी अपने शांत वातावरण, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और अद्भुत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, साफ नीला आसमान और स्पिति नदी का सुंदर प्रवाह इस क्षेत्र को एक अलग ही पहचान देता है। यही कारण है कि इसे हिमालय का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है।
0: और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए, तो हम बता दें कि स्पिति वैली तक मनाली और शिमला दोनों मार्गों से पहुँचा जा सकता है। मनाली का रास्ता अपेक्षाकृत छोटा है, जबकि शिमला मार्ग से यात्रा करते हुए धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ने के कारण सफर अधिक आरामदायक माना जाता है। रास्ते में दिखाई देने वाले पहाड़, घाटियाँ और छोटे छोटे गाँव इस यात्रा को अपने आप में एक यादगार अनुभव बना देते हैं।
1: अगर यहाँ घूमने आने का सबसे अच्छा समय पूछा जाए, तो मई से अक्टूबर तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और अधिकतर सड़कें पर्यटकों के लिए खुली रहती हैं। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिससे यह क्षेत्र और भी खूबसूरत तो दिखता है, लेकिन यात्रा करना मुश्किल हो जाता है।
0: दोस्तों, स्पिति वैली अपने प्राचीन बौद्ध मठों के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित की मठ ताबो मठ और धनकर मठ सदियों पुराने हैं और बौद्ध संस्कृति तथा इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर माने जाते हैं। इन मठों की वास्तुकला और यहाँ का शांत वातावरण पर्यटकों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है।
1: स्पिति का प्रमुख नगर काजा पर्यटकों के लिए मुख्य केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कोमिक, लांगसा और हिक्किम जैसे गांव भी काफी लोकप्रिय हैं। हिक्किम गांव का डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में

0: स्थानीय संस्कृति भी इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। यहाँ के लोग सरल और मेहमान नवाज होते हैं तथा अपनी परंपराओं और संस्कृति को आज भी पूरी श्रद्धा के साथ संजोकर रखते हैं।
1: दोस्तों, स्पीति वैली हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के करीब रहकर भी जीवन को खूबसूरती और सादगी के साथ जिया जा सकता है।
0: अगर कभी आपको हिमालय की अद्भुत सुंदरता और रोमांच का अनुभव करने का अवसर मिले तो स्पीति वैली जरूर जाइएगा। यह जगह आपको शांति, साहस और प्रकृति के ऐसे अनमोल दृश्य दिखाएगी जिन्हें आप जीवन भर याद रखेंगे।
1: साथियों, ये था हमारा सब सेगमेंट घुमक खड़ी। चलिए सुनते हैं प्रोग्राम की अगली गजल।

0: और दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है हमारे प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का। तो चलिए जानते हैं आज के सवाल का सही जवाब। हमारा आज का सवाल था, ब्रह्मोस 2 मिसाइल का संयुक्त विकास किन दो देशों द्वारा किया जा रहा है? और इस सवाल का सही जवाब है भारत और रूस।
1: और सही जवाब देने वाले श्रोता साथी हैं सुदर्शन शाह, मोहम्मद रफीक पवार, जॉन डी कैस्ट्रो, हीरामणि वर्मा, शफुक्ता अंजुम, नजमुल होडा, आरसी कामड़े, दिनेश वर्मा, गंगा सिंह रावत, उत्तम सिंह जंगेल, चौधरी राजवीर सिंह, ननक खन्ना, रामकुमार रिवार, सुरेश राठौर, तुलसी मस्कीन, भाई रफत साहब, अजीत कसाना, मसरूर हसन, बबलेश पवार, दिग्दर्शन गौड़, कैलाश फुलमाली, रियासत हुसैन सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंजन, रवि कुमार राहुल, जयपाल यादव, अल्ताफ हुजारे, स्वर सिंह गिल, राधेश्याम पांडे, धर्मेंद्र छिपा, बीपी गौतम, लाल मोहम्मद अंसारी, राजू मिगलानी, सत्येन चंसौलिया, दीपेश वर्मा, बीएल धाकड़, आमिर हुसैन, लालगिरी गोस्वामी, सोहन जोशी, विजय सुरलकर, जगदीश धाकड़, संजय ढींगिया, फागुराम यादव, सुनील पाठक, सुरेश गगनेजा, मोहम्मद कामिल, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, दिलशद हुसैन, सुरेश जायसवाल, धीरज भाई राबारी, विठल सरोशे, जाकिर मंसूरी, आसिफ चौधरी, देवशंकर तामुरिया, बी कमल, शेख मूसा, मोहम्मद सईद अब्बासी, रवि रसोगी, शाहजी बोटके, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, राजवीर सिंह यादव, आकाश रस्तोगी, शारून नूर अंसारी, गजानन गेले, शकलील अहमद इद्रिशी, उत्तारा दिवाकर, इरशाद अहमद, मोहम्मद अफजल ताज, भागवत चौबे लाडला जी, प्रवीण चौहान, मुकेश कश्यप, भाई रफत साहब, शाहजी बोटके, भूपेंद्र जुनेजा और रिहाना खान। आप सभी श्रोता साथियों को हार्दिक बधाई।
0: और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले चलिए सुनते हैं ये गजल।

0: दोस्तों, कभी कभी कुछ धुनें और कुछ अल्फाज हमारे दिल में उतर कर ऐसे सवाल छोड़ जाते हैं जिनके जवाब हम लंबे समय तक तलाशते रहते हैं। अभी जो एहसास हमने महसूस किए वे हमें ज़िंदगी के उस पहलू की याद दिलाते हैं जहां हर चेहरा अपनी एक कहानी समेटे होता है।
1: हम अक्सर लोगों को हंसते मुस्कुराते देखते हैं और मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान अपने भीतर कुछ अनकहे जज्बात, कुछ यादें और कुछ संघर्ष भी लिए चलता है। जिंदगी की यही खूबसूरती है कि यह हमें मजबूत बनना सिखाती है और मुस्कुराना भी।
0: शायद इसी वजह से संवेदनशीलता और अपनापन आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी का हाल पूछ लेना या बस कुछ पल उनके साथ बैठ जाना, कई बार ये छोटी छोटी बातें किसी के दिल को बड़ा सुकून दे जाती हैं।
1: तो आइए अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा समय निकालें, उनकी खामोशियों को भी समझने की कोशिश करें और रिश्तों में अपनापन बनाए रखें, क्योंकि मुस्कुराहट तब और भी खूबसूरत लगती है जब उसके पीछे सच्ची खुशी और अपनेपन का साथ हो।
0: इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और समय है आपसे विदा लेने का।
1: आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युववाणी को कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901।
0: हमारा ईमेल एड्रेस है pathmila@rampur.gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संदेश भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9410087876।
1: नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9410087876। अब दीजिए स्वास्तिक
0: और कशिका को अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे स्वास्तिक और कशिका।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। अब से बस कुछ ही देर में।

0: विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: इस बीच तमिलनाडु सरकार ने कतर में आग की घटना से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसिंग मटमुंग और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाव के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मुकाबला लंदन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के में पुर्तगाल का सामना अमेरिका और उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
4: मैं प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में
5: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
4: लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
5: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
6: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
5: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
7: से नो टू प्लास्टिक।
8: क्यों करते मुझको बर्बाद, बस इतना तो रखना याद, मेरे बिना संभव न जीवन, सर्व सुलभ मैं हूँ अमूल्य धन।
9: जी हाँ, पानी है जीवन की आस, जल संरक्षण का करो प्रयास।

0: की इस चिंगारी से दिल मोम हुआ है पत्थर का, अजमेर की जामा मस्जिद में खुद अक्स है जैनी मंदिर का।
1: जी हाँ, कसरत में वहदत की शानदार मिसाल।
0: मुख्तलिफ रंगो नस्ल और अलग अलग खुशबुओं के खूबसूरत फूलों का हसीन गुलदस्ता।
1: हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान,
0: दुनिया का एक वाहिद मुल्क,
1: गंगा जमनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल।
0: आइए रखें इस इत्तेहाद को कायम,
1: अपने मुल्क को बनाएं अमन और सुकून का गहवारा।
0: हम एक थे,
1: हम एक हैं,
0: हम एक रहेंगे,
1: कायम करेंगे अमन,
0: देंगे सबक दुनिया को
1: प्यार का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:20 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को आपकी बहन मीना
1: और आपके भैया अनिल किशोर की राम
0: राम राम। और सुनाओ अनिल किशोर भैया, कैसे हाल चाल हैं आपके?
1: हम तो अच्छे हैं मीना बहन, और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान भैया हैं ना, वे भी अच्छी तरह से होंगे। और आप अपने बताओ
0: भैया। हमारे भी अच्छे हैं, और हमारे जो किसान भैया बहन हैं, इस गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है खेती बाड़ी को काम करते पे, तो ऐसे में हमारे किसान भैया बहन अपने अच्छे से ध्यान रखें कि वो जहाँ अगर खेत में काम कर रहे हैं तो वहाँ पानी अपने साथ रखें,
1: बिल्कुल,
0: और सिर पे अपने गमछा रखें भैया,
1: बिल्कुल, क्योंकि जिससे कि जब गमछा होएगा ना तो धूप ना लगेगी।
0: हाँ भैया,
1: और हमारे किसान भैन के लिए गर्मी कम लगेगी, सिर पर जब छाँव होगी तो काम भी अच्छे से कर सकेंगे।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: और जब गमछा ना होए तो देखो गर्मी भी ज़्यादा लगेगी।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: और जो सूर्य को प्रकाश है तेज धूप लगेगी। बहुत कहा है हमारे किसान भैया जो गमछा ना बांधते हैं उन्हें जब ज़्यादा लगती है तो देखो बाल भी आपके धूप से प्रभावित हो जाते हैं।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: और आप देखेंगे कि एहसास करेंगे कि जब धूप से बाल हमारे खराब हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि चेहरा अजीब सा नजर आएगा।
0: हाँ भैया वो चेहरा बिल्कुल
1: और
0: सही ना लगेगा।
1: हाँ बिल्कुल, और शरीर जो है दिमाग काम कम कर देगा, तो कोई बात कोई काम आप करेंगे तो पूरी तरह से आप कर ना पाओगे,
0: करना पाओगे
1: तो
0: मन ना लगे उस काम में भैया।
1: बिल्कुल, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे किसान भैया के लिए ध्यान रखने हैं।
0: हाँ भैया, और अनिल भैया आजकल खेती में लागत बढ़ रही है,
1: बिल्कुल,
0: कभी मौसम साथ नहीं देता तो
1: जी
0: कभी बाजार भाव,
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में किसान भाई सोचते हैं कि आमदनी

0: कैसे बढ़ाई जाए।
1: तो इस बात को हमारे किसान भैया ध्यान रखें। और आपने बिल्कुल सही कही है कि मीना बहन, सिर्फ फसल पर भी निर्भर रहना आसान ना है,
0: हाँ भैया
1: और
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए हमारे जो किसान भैया हैं वे किसी न किसी सहायक उद्योग से जुड़ जाएं, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान भैया की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी।
0: हाँ भैया बिल्कुल। और अनिल भैया, हमारे गांव में भी कई किसान ऐसे हैं ना जिन्होंने खेती के साथ डेयरी, बकरी पालन और मुर्गी पालन शुरू किया है भैया।
1: अच्छा।
0: अब उसकी आय पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है भैया।
1: तो देखो मीना बहन, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। हमारे जो किसान भैया हैं, यही तो बात है कि मान लो किसी किसान के पास 2 या 3 गाय हैं
0: हाँ
1: और उनको दे दूध बेच कर रोज की आमदनी प्राप्त करी जा सकती है।
0: हाँ भैया
1: खेत
0: बिल्कुल,
1: से मिलने वाली हरी घास और फूस पशुओं के लिए काम आ जाती है।
0: हाँ भैया
1: और
0: बिल्कुल।
1: जब बात को हमारे किसान भैया देखते हैं कि जैसे अगर आप वो खेत पर गए और वहाँ उनको कहीं नज़र आई कि घास है, आप उनकी फसलें खड़ी हैं और
0: हाँ
1: कोई जो आपने देखी होगी कि जो मुख्य फसल है उसमें से हमको घास फूस निकालनी होती है,
0: हाँ भैया,
1: और वह घास फूस निकाल भी दी, निराई गुड़ाई भी है कि फसल की,
0: और
1: और
0: भाई के
1: घास
0: साथ
1: ले
0: साथ
1: आए
0: अपने
1: पशुओं
0: पशुओं
1: के
0: के लिए
1: लिए,
0: भैया वो घासों
1: चारों
0: ले
1: ले।
0: आए।
1: बिल्कुल। तो इस काम को हमारे किसान भैया जब करते हैं तो एक पंथ द्विकार ही जाते हैं।
0: हाँ भैया
1: तो क्यों ना ऐसे ही काम को हमारे किसान भैया करें, किसी न किसी उद्योग से जुड़ें, चाहे वो मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, या सुकर पालन व्यवसाय है, मधुमक्खी पालन व्यवसाय
0: हाँ भैया
1: है ना, तो
0: बिल्कुल, आपने
1: बहुत
0: बहुत
1: सारे
0: अच्छी बात
1: व्यवसाय हैं,
0: कही।
1: इनको जोड़ सकते हैं।
0: हाँ और अनिल भैया ना, और जैसे पशुओं से मिलने वाला गोबर खेत के लिए जैविक खाद बन जाता है भैया,
1: बिल्कुल
0: यानी एक काम दूसरे काम को मजबूत करता है भैया बिल्कुल।
1: बिल्कुल। अब जैसे आपने गोबर की बात करी, तो जब पशुओं को जो गोबर होता है ना, उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार करो जा सकता है,
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: वो एक उद्योग को रूप ले सकते हैं। आप अपने यहाँ लगा, वो आपसे बचे तो किसी और किसान को दे दो,
0: और किसान को दे
1: बस
0: दो।
1: आपको पैसा मिल जाएंगे।
0: हाँ भैया
1: तो देखो उसको अगर देखो देखन की दृष्टि से अगर देखो जाए तो हमारे किसान भैया जो हैं किसी न किसी रूप में उसको उद्योग के रूप में कर सकते हैं।
0: हाँ भैया
1: अब गोबर एक ऐसी चीज़ है कि हमारे जो मिट्टी है ना उसके लिए बहुत ही उपयोगी है,
0: हाँ भैया
1: और हमारे किसान भैया जब गोबर की खाद बना के, चाहे वो कंपोस्ट खाद बना लें चाहे बर्मी खाद बना लें, तो उसको जब फसल में लगाते हैं ना तो बहुत सारे जो रासायनिक उर्वरक हमारे किसान भैया डालते हैं उनसे बच सकते हैं और बहुत सारी किल्लत से बच सकते हैं। क्योंकि देखो जाता है कि यूरिया आपने देखी होगी कि
0: हाँ भैया,
1: बहुत
0: जिससे हमारे किसान
1: परेशानी से
0: भैया के
1: मिल
0: लिए
1: रही है।
0: खेत में जो रासायनिक खाद है आपको कम प्रयोग करने पड़े भैया। और कई महिलाएं हैं ना भैया, वे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बकरी पालन शुरू कर रही हैं भैया, अपने
1: अच्छा
0: परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत की है भैया।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई मीना बहन आपने। जैसे कि अगर किसी जो घर की माताएं बहनें हैं वो व्यवसाय से समूह में काम कर रही हैं तो अच्छी बात है, और उसमें होता है कि उन्हें समय समय पर सरकार से भी सहायता मिल जाती है।
0: हाँ भैया वो तो मिल जाती है।
1: तो इस बात से हमारे किसान भैया जो है अपनी जो माताएं बहनें हैं उनको समूह में भी जोड़ सकते हैं।
0: हाँ सही कहा अनिल भैया आपने। और अगर किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं भैया।
1: मीना बहन, खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी एक बेहतरीन विकल्प है,
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: इससे शहद तो मिलता ही है, साथ ही साथ फसलों में परपरागण की क्रिया अच्छी हो जाती है और जो उत्पादन होता है ना वो आप देखेंगे कि ज़्यादा हो गया।
0: हाँ और अनिल भैया ना, हमने सुना है ना कि सरसों और फलदार बागों के आसपास मधुमक्खी पालन करने वाले ना किसानों को दोहरा लाभ मिलता है भैया।
1: कैसे?
0: कैसे भैया? अगर जहाँ अगर हमने मधुमक्खी पालन करो और वहाँ पे अपने जैसे जो पेटी होती हैं वहाँ रख दें,
1: बिल्कुल
0: तो उससे जो मक्खी हैं जो अगर परागण करती हैं तो उससे हमें दोहरा लाभ मिलता है भैया।
1: बिल्कुल, उत्पादन बढ़ता है।
0: हाँ और
1: और मीना बहन देखो, एक तरफ तो शहद की बिक्री और दूसरी तरफ जो है फसल उत्पादन में भी इसी तरह से बढ़ोतरी हो जाती है।
0: हाँ और भैया आजकल मशरूम उत्पादन की भी खूब चर्चा हो रही है।
1: मशरूम उत्पादन भी हमारे किसान भैया कर सकते हैं और कम जगह में शुरू कर हो जा सकता है, इसकी बाजार में अच्छी कीमत भी मिल जाती है, और कई किसान भैया ऐसे भी हैं जो अच्छी आय अर्जित भी कर रहे हैं।
0: हाँ और अनिल भैया ना, सब्जी उत्पादन भी खेती के साथ आय बढ़ाने को अच्छा माध्यम है भैया।
1: बिल्कुल।
0: थोड़ी सी जमीन में मौसमी सब्जियां लगा के किसान नियमित आय प्राप्त कर सकता है भैया।
1: बिल्कुल। और अगर यदि खेत में आपके किनारों पर फलदार पौधे अगर लगाए दे जाएं तो भविष्य में अतिरिक्त आमदनी को एक अच्छा साधन बन सकता है।
0: हाँ और अनिल भैया ना, कई किसान मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, जिनके पास तालाब है ना वे मछली पालन करके अच्छी कमाई कर रहे हैं भैया।
1: बिल्कुल सही बात है, और सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से ऐसे व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण और सहायता उपलब्ध हमारे किसान भैया और बहन के लिए सभी के लिए करा रही है। तो देखो जाता है हमारे क्यों ना किसान भैया इस तरह से लाभ ले सकते हैं।
0: हाँ, और सबसे ज़रूरी बात यह है भैया ना कि किसान भाई अपने संसाधनों और परिस्थितियों के अनुसार ही सहायक उद्योग का चयन करें भैया।
1: बिल्कुल मीना बहन, किसी दूसरे को देखकर जल्दबाजी में निर्णय ना लें।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: पहले जानकारी ले लें, फिर प्रशिक्षण ले लें और फिर शुरुआत करें।
0: हाँ, और जब खेती के साथ एक या दो अतिरिक्त व्यवसाय जुड़ जाते हैं ना भैया, तो किसी एक काम में नुकसान होने पर दूसरों सहारो बन जाता भी है।
1: बिल्कुल मीना बहन, सही बात कही है आपने कि और हमारे बहुत सारे किसान भैया जो है ना, देखो जाते हैं कि जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे भी राय लेते हैं।
0: हाँ भैया,
1: और किसानों की आय के कई स्रोत विकसित भी करने की सलाह भी देते हैं।
0: हाँ भैया, जैसे किसान भाई है ना, हमारे जो किसान भैया बहन है, तो खेती के साथ डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन, मत्स्य पालन और सब्जी उत्पादन जैसे कार्य अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकता है।
1: बिल्कुल, और यदि हमारे किसान भैया याद रखें तो मेहनत के साथ साथ सही जानकारी और योजना भी सफलता की कुंजी है।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: तो इस तरह से हमारे बहुत सारे किसान भैया जो हैं अपनी जो फसलें हैं उनको उगा सकते हैं और उसके साथ साथ किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ सकते हैं।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: लेकिन अब बात यह है कि हमारे किसान भैया ने फसलें तो उगा ली, अब उनको किस तरह से व्यवस्था करनी है। बहुत सारे किसान भैया के लिए जो होती है कि उनको मंडी कैसे ले जानी,
0: मंडी कैसे ले जाना,
1: अपने उत्पादन से ज्यादा रेट कैसे लेने।
0: हाँ,
1: तो उसके लिए एक जरूरी है किसान उत्पादन संघ।
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: उस संघ में जुड़कर हमारे किसान भैया उनको जो भी कृषक अंश होता है उसमें डालने होता है अपना शेयर।
0: अच्छा,
1: उस शेयर को डालकर भी अपने जो फसल को उत्पादन है और जो अपने बीज को ले रहे हैं तो वहां से आदान प्रदान कर सकते हैं और बड़े ही किफायती दाम।
0: अच्छा भैया,
1: अपने जो फसल है उसको बाजी मूल उन्हें मिल जाता आसानी से और इस तरह से कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना भाई। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आज हम अपने किसान भैया तक एक जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी को विषय का है मीना भाई?
0: देखो भैया, जानकारी को विषय है खेती के साथ सहायक उद्योग अपनाएं। भेंट वार्ता का विषय भैया ना किसान उत्पादन संघ, और जानकारी दे रहे श्री यशपाल, और उनसे जानकारी उठा रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
1: तो हम सब सुनते हैं आज की इंजा भेंट वार्ता को।
2: किसान साथियों, हम सभी लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, बीज बोते हैं, उत्पादन करते हैं और उत्पादन को बेच करके फिर हम अपने घर परिवार को चलाते हैं। लेकिन कभी कभी किसानों के बीच कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कोई ऐसी फसल का उत्पादन हो जाता है जिसकी मार्केट आसपास उपलब्ध नहीं होती है और बिक्री कर पाने में उन्हें मुश्किल होती है। यही कारण है कि ज़्यादातर किसान उन्हीं फसलों के बोते हैं जो उस इलाके में पैदा होती है, और इससे क्या होता है कि उन्हें जितना लाभ चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सरकार के सामने भी ये समस्या आई, जिसकी वजह से सरकार ने कई प्रकार के उपाय किए हैं। किसान उत्पादक संघ बनाए हैं हर जिले में और कई कई संघ बने हुए हैं। ये किसान उत्पादक संघ क्या हैं, इनसे हमारे किसान भाई फायदा कैसे ले सकते हैं, इस पर आज विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ हैं श्री यशपाल सिंह जो कि किसान उत्पादक संघ के डायरेक्टर हैं, उनसे हम जानेंगे विस्तार से। यशपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: किसान भाइयों नमस्कार।
2: सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे किसान भाई अभी भी नहीं जानते हैं कि आखिर किसान उत्पादक संघ है क्या, उनका क्या उद्देश्य है।
3: किसान भाइयों, ये किसान संघ क्या है, किसानों की अपनी निजी कंपनी है और इसमें किसान इसका सदस्य होता है, किसान इसका डायरेक्टर बनता है, जिसके नाम जमीन होती है वो इसके साथ जोड़ सकता है, और किसानों की एक अपनी कंपनी है। और इसका जो किसान संघ का मेन उद्देश्य क्या है किसान भाइयों, इसका जो उद्देश्य किसानों को आढ़तियों के मकड़ जाल से किस तरह से छुटकारा मिले और किसानों को किस तरह से उद्यमी बनाए,
2: ठीक है,
3: ताकि किसान भी एक उद्यमी बने। तो हम किसान भाइयों क्या है इसमें, इसका एक समूह बनाकर कोई भी काम करते हैं तो एक समूह बनाकर बड़ा काम कर सकते हैं। कोई किसान अगर अकेला काम करे तो वो मतलब बड़ा काम नहीं कर सकते, तो इसलिए समूह बनाकर ही काम करते हैं। ये भी एक समूह है मगर एक बड़ा समूह है।
2: अगर हम बात करें और आपके समूह की बात करें, संघ की बात करें, तो किसान जो आपके मेंबर हैं कितने मेंबर हो सकते हैं और कितनी संख्या इस समय आपके संघ में हो चुकी है?
3: किसान संगठन में बनाने के लिए इसके जो मेन बोर्ड कमेटी होती है उसमें 5 डायरेक्टर होते हैं, 5 उसके सपोर्टर होते हैं,
2: ठीक है,
3: और उसमें कम से कम तराई क्षेत्र के लिए, प्लेन क्षेत्र के लिए 300 किसानों का सदस्य होना बहुत जरूरी है, तभी ये गठन होता है, इसका
2: गठन हो पाता है। अब बात आती है कि कोई भी व्यक्ति यदि सदस्य इसका बनना चाह रहा है और वो ये चाह रहा है कि इस संघ से हमें कुछ फायदा हो, हम विभिन्न प्रकार की फसलें बो करके उसका लाभ अच्छा ले सकें, तो जुड़ने के क्या क्या शर्तें होती हैं?
3: किसान भाइयों, इसमें जुड़ने के लिए एक तो उसके नाम जमीन होना बहुत जरूरी है, वो इसके साथ जुड़ सकता है। इसमें भारत सरकार ने एक गाइडलाइन इसमें जारी कर रखी है कि उसके नाम खतौनी हो, जमीन हो और आधार कार्ड हो, और एक थोड़ी सी फीस इसमें डिसाइड कर रखी है कि कम से कम वो 2000 या 500 या 1000 रुपए से भी उसका वो सदस्य बन सकता है, उसका शेयर होल्डर हो जाता है कंपनी का।
2: अच्छा जी, तो जुड़ने के बाद फिर उनको संघ के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती होगी। और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो ये संघ आपका किसानों को प्रेरित करता है कि उन फसलों का उत्पादन शुरू करें?
3: संघ क्या करता है, जैसे आजकल मेडिसिन क्रॉप्स हैं, या संघ अपने डिमांड के हिसाब से किसानों को समूह बनाकर खेती कराते हैं, फिर उसको बायबैक किसानों से ले लेते हैं, वो मार्केट रेट से ऊंचा रहते हैं ताकि किसान को भी उसमें कुछ लाभ मिले, ताकि उसकी आय बढ़े। और जब वो संघ अपने जो नेट उसका प्रॉफिट होता है साल का, उसमें से 15-20% उसका प्रॉफिट अपने जो हमारे संघ के अपने सदस्य है, किसान भाई हो जो उसके शेयर होल्डर हैं, तो उनको भी उनको लाभांश के रूप में उनको वापस करता है।
2: अच्छा, कुल मिलाकर के है कि मार्केट रेट से ज्यादा पैसा किसानों को मिलता है, और ये जो आपका संघ है यदि इसको फायदा होता है तो उस फायदे का लाभांश भी देता है।
3: जी, लाभांश उनको बाद में वापस करता है, उनके खाते में वो सीधा चला जाता है।
2: अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो किसान आपके संघ से जुड़े हैं उनके अंदर कुछ परिवर्तन आया है और उन्होंने नए तरीके की कुछ खेती या फसलें उगाना शुरू किया है?
3: हमारे साथ में जो भी सदस्य हैं, स्टार्टिंग में हमने तो जब संघ बनाया तो 300 किसान जोड़े थे, और इस समय हमारे साथ करीब 8,500 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और उनको लाभ हो रहा है, इसलिए ही उनकी संख्या हमारे साथ बढ़ रही है।
2: जी, मार्केटिंग की बात करें, विपणन की बात करें, तो आप उनका उत्पाद फिर कैसे और कहाँ बेचते हैं?
3: हम जो किसानों को अपने डिमांड बेस्ड खेती कराते हैं उसको हम बाय बाइक ले लेते हैं अपने किसान सदस्यों से, फिर हम उसको अपने आप में प्रोसेसिंग और पैकिंग अपने कराते हैं।
2: अच्छा,
3: और फिर उसको जो आंगनबाड़ी विभाग ICDS विभाग के माध्यम से हम कुपोषित बच्चों को वो एक किट बना के उनको देते हैं, ताकि हमारे कुपोषित बच्चे भी अच्छे हो रहे हैं और हमारे किसानों की आय भी बढ़ रही है।
2: बहुत अच्छी बात है और अच्छा प्रयास है। आज तो बात रही मार्केटिंग की, इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि किसानों की कई प्रकार की समस्याएं होती है, कभी कभी उत्पादन इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको रखने की जरूरत पड़ती है, कोल्ड स्टोरेज के बारे में कुछ संघ काम कर रहा है?
3: संघ का मेन उद्देश्य क्या है, किसान जो हमारे सदस्य हैं उनको मार्केटिंग उपलब्ध कराना और उसको कोल्ड चेन यानी कोल्ड स्टोर और वेयर हाउस में उसको फसल को रखने की सुविधा देता है। तो इस तरह से हमारे संघ ने साइलोज काफी बना रखे हैं, इस समय करीब लगभग हमारे 200 मेट्रिक टन के साइलोज हैं, और कोल्ड स्टोर, सोलर कोल्ड स्टोर भी हमारे पास है, ताकि अच्छा, उन्हें कोई समस्या नहीं रहती।
2: तो अगर कोई किसान ऐसा कहता है कि हमारे पास उत्पादन बढ़ गया है और जो प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज है उनमें जगह नहीं मिलती है, चाहे हम आलू किसानों की बात करें या दूसरे किसानों की बात करें, तो फिर आप वो ये व्यवस्था करवाते हैं?
3: हम अपने किसान सदस्यों के साथ हम उसी को पहले बरीता देते हैं जो हमारे संघ से जुड़े हुए सदस्य हैं। और हमारे क्या है, एक तो सोलर से जो हमारे कोल्ड स्टोर है वो हमारे सोलर से संचालित है, हमारे लाइट का नहीं है, इसलिए उनका खर्चा भी किसान भाइयों के लिए ना के बराबर आता है।
2: कोल्ड स्टोर की बात करें, विपणन की बात करें, जिस रूप में आपका संघ मदद करता है, बुआई और बीज की यदि बात करें या और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर और जो हमारे कृषि रसायन है इनकी बात करें, तो इन क्षेत्रों में भी कुछ संघ कार्य करता है?
3: हम अपने जनपद में किसान जो हमारे सदस्य हैं उनको हम क्या करते हैं, खेती समूह के रूप में कराते हैं, और हम प्रत्येक गांव में एक 10 या 15 कृषक भाइयों के समूह बना लेते हैं, 15 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, 25 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर का। उनको क्या करते हैं, एक तो जब वो डिमांड करते हैं ऑर्गेनिक खाद की, जैविक खाद की या रासायनिक खाद की जो भी, तो हम आसानी से किसी अपने ट्रांसपोर्ट से उन्हें भेज देते हैं, ताकि उनका ट्रांसपोर्ट भी बचता है, जब वो फसल तैयार हो जाती है फिर अपने एक अपनी संघ के ही ट्रांसपोर्ट से उसको उनकी पर्चेज मतलब ले आते हैं फसल खरीद के उनके पास, ताकि उनका ट्रांसपोर्ट में भी उसका फायदा होता है किसानों का।
2: और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आप जो आपके मेंबर हैं या मेंबर के अलावा जो किसान हैं उनकी मदद कर पा रहे हैं?
3: हम इस समय जैसे हमारे जो किसान सदस्य हैं, इसके अलावा जो हमने मधुमक्खी पालन के हमने सदस्य बना रखे हैं, तो अपने मधुमक्खी पालन वालों से भी हम उनसे बायबैक ले लेते हैं, उनका सहसेद वापस लेते हैं। ऐसे हम मशरूम के समूह बना रखे हैं, उनसे मशरूम पैदा कराते हैं और अपने मार्केट रेट से उनसे भी हम महंगा लेते हैं ताकि उनको भी हमें फायदा होता है।
2: तो क्या लगता है कि जो किसान आपसे जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, उनको कुछ भविष्य ऐसा दिखाई पड़ता है जिससे उनको लाभ हो रहा है या भविष्य में लाभ होगा?
3: किसानों को सीधा सीधा दिखता है कि एक तो समूह मार्केट रेट से ऊंचा खरीदता है और एक उसे मार्केट, लोकल मार्केट उपलब्ध हो जाती है आसानी से और उसको कहीं भी ले जाने की भी जरूरत नहीं, उसके घर से ही माल उड़ जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट भी बचता है, इसलिए उसको लाभ होता है और लाभ की वजह से वो हमसे जुड़ रहे हैं, इस वजह से उसकी आय भी दूनी हो रही है।
2: बहुत अच्छी बात है। यशपाल जी ने बहुत विस्तार से बताया कि आखिर जो कृषि उत्पादक संघ हैं ये क्यों गठित किए गए हैं और किसान कैसे जुड़ सकते हैं, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ उनके पास होनी चाहिए और किस प्रकार से वो लाभ ले सकते हैं, चाहे विपणन की बात करें, कोल्ड स्टोरेज की बात करें, चाहे बीज और बुआई के तरीके या जानकारी की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी।
1: मीना बहन, देखो अभी हमारे सभी किसान भैया और बहनों ने सुनी जानकारी, किसान उत्पादन संघ जब इसे की विस्तार से जानकारी दे रहे श्री यशपाल सिंह और आपसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे भैया डॉक्टर विनय प्रकाश वर्मा जी। हम उम्मीद करते हैं हमारे जो भी किसान भैया हैं वो इनकी बातें सुनकर और समझ गए होंगे कि किस तरह से खेती बाड़ी करनी है और किस तरह से वे उत्पादन संघ अपना कर लाभ ले सकते हैं। तो मीना बहन, देखो आप समय हमारे किसान भैया के मनोरंजन को हीरो।
0: हाँ भैया बिल्कुल। और
1: कौन से लोकगीत सुनवा रही हैं?
0: हम अपने किसान भैया बहन के लिए एक प्यारो से लोकगीत सुनवा रहे हैं। लोकगीत के बोल है, न नदिया आज छम छम नाचे और स्वर दो है योगेश कुमारी ने।

0: मीना बहन, अभी हमारे सभी किसान भैया और बहनों ने सुनो, ननदिया हाँ जी आज छमा छम नाचे।
1: हाँ भैया।
0: और स्वर दय है योगेश कुमारी जी ने। हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान भैया के लिए हमारे इन द्वारा जो लोग सुनवाओ वो जरूर पसंद आओ।
1: हाँ भैया बिल्कुल।
0: और अब हमारे बहुत सारे किसान भैया खेतीबाड़ी करते हैं।
1: हाँ भैया करते हैं।
0: आपने देखी हुई कि हम गांव में जाकर किसी न किसी किसान भैया की एक जानकारी भी लेकर आते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में।
1: हाँ भैया।
0: आज भी लेकर आए हैं इसी तरह से एक विषय को, तो कौन सी जानकारी आप सुनवा रही हैं हमारे किसान भैया?
1: हम भैया अपने क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत एक जानकारी लेकर आए भैया, प्रगतिशील कृषक से भेंट श्री वीरेंद्र सिंह यादव, ग्राम रामपुर रायपुर
0: जी,
1: और ब्लॉक मूड़ा पांडे और जिला मुरादाबाद से। और भैया इनसे हमारे अनिल भैया ने कहा बातचीत करिए, आप सुनते हैं जब बातचीत।
0: बिल्कुल। आपका क्या नाम है?
2: वीरेंद्र सिंह यादव।
0: अच्छा जी, यादव जी आप किस गांव में रहते हैं?
2: मैं गांव डिल्ला रायपुर का खिलाड़ी जिला मुरादाबाद।
0: अच्छा जी, आप जनपद मुरादाबाद के गांव
2: डिल्ला रायपुर
0: में रहते हैं। तो आप कौन कौन सी खेती करते हैं?
2: मेरे हैं गन्ना भी होता है
0: जी,
2: नर्सरी भी होती है, पापलर की जो नर्सरी है वो भी होती है
0: जी जी,
2: और केला होता है।
0: अच्छा,
2: और धान भी होता है।
0: अच्छा,
2: लेकिन मैं धान केला और जो चीजें हैं और चराई न्यास जानवर को भी अपने हाथ से करता हूँ और केला अपने हाथ से करता हूँ।
0: अच्छा जी,
2: कटाई होता है।
0: आपका मुख्य खेती का जो उद्देश्य है वो केले की खेती का है?
2: केले अपने केला जो अपने हाथ से करता हूँ, गन्ना वगैरह जो बटाई जैसा धान और ये होता बटाई।
0: अच्छा अच्छा, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो केले की खेती है आप करते हैं और इसको कितने सालों से कर रहे हैं?
2: मुझे 9 वर्ष हो गए, 9 वर्ष इस साल।
0: अच्छा, 9 साल आपको हो गए केले की खेती करते हुए?
2: लगातार करते
0: हैं। लगातार, तो इसमें आप केले कहाँ से लाते हैं?
2: मैं केले की बीज नहीं आता है, केले की पौध आती है, टिशू कल्चर।
0: अच्छा जी, टिशू कल्चर लाते हैं।
2: हाँ, और ये आता है महाराष्ट्र के जलगांव।
0: अच्छा,
2: आता है।
0: तो इसमें कौन सी प्रजाति होती है ये?
2: ये ग्रेट 9।
0: ग्रेट 9
2: बोलते हैं
0: जी,
2: पूरा नाम फुल फॉर्म है ग्रेट 9 है।
0: अच्छा,
2: G9 भी कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में लोग।
0: जी, G9 या ग्रेट 9 एक ही चीज है?
2: एक ही चीज है।
0: अच्छा, तो इसको आप कैसे लगाते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, इसको खेत की जुताई तैयारी कैसे करते हैं?
2: खेत की तैयारी हम ऐसे करते हैं, जैसे हमारे गेहूं का कट गए
0: जी जी,
2: उसके बाद ही फौरन हम खेत को जो देते हैं जितना गहरा हो सके।
0: अच्छा जी,
2: हमारे ट्रैक्टर में ताकत है
0: जी जी,
2: जितनी ट्रैक्टर खेच सके।
0: अच्छा जी,
2: सिलेंडर
0: जी,
2: ये पूरी गर्मी लू में इसे तपाते हैं जमीन।
0: अच्छा जी,
2: गर्मी तपाने के बाद अब हम इसमें गड्ढे कराएंगे
0: जी,
2: प्लांटेशन काटेंगे। प्लांटेशन की दूरी पेड़ की दूरी 6 फीट रखता हूँ।
0: अच्छा, केले की दूरी 6 फीट?
2: हाँ, पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट
0: जी जी।
2: उसके बाद गड्ढे करा देते हैं
0: जी,
2: गड्ढे कराने के बाद थोड़ी हम 10 किलो देसी खाद डालते हैं।
0: अच्छा, प्रत्येक गड्ढे में?
2: प्रत्येक गड्ढे।
0: अच्छा जी,
2: 10 किलो से 8 इंच चल जाती है, वो अंदाज के तोल के तोनी है
0: जी जी जी जी
2: जी, गोबर की बढ़िया खाद।
0: अच्छा जी,
2: उसके बाद जब पौधा लगाते हैं तो डाई और फोरेट मिला करके
0: जी
2: गड्ढे को मिलवा देते हैं।
0: अच्छा, कीड़ा वगैरह ना लगे?
2: हाँ, और नीम की खली भी काम कर जाती
0: है। अच्छा जी, अच्छा।
2: हाँ, लेकिन नीम की फल खली मिलना मुश्किल पड़ जाती है, थोड़ी जैसे काशीपुर हमारे प्लांट है वहाँ से मंगा लेता हूँ मैं।
0: अच्छा जी, अच्छा।
2: उससे कीड़ा ना लगे तो
0: दीमक
2: या सूरी, जब सारा गोबर की कच्ची खाते हैं उसमें सूरी बनेगी
0: जी जी,
2: सूरी बनेगी, हमारे पौधे को नुकसान पहुँचा काट सकती है।
0: बिल्कुल,
2: इस वजह से फोरेट डालना बहुत जरूरी है।
0: अच्छा जी,
2: इसके बाद हम पौधा लगा देते हैं।
0: अच्छा, तो ये केले की खेती का आपका बहुत लंबा अनुभव है, 9 वर्ष हो गए हैं, आपके मन में विचार ये कैसे आया?
2: मन में विचार ऐसे आया, एक बार ये केला होता था हमारे पूर्वी यूपी में
0: जी,
2: ये गोरखपुर वगैरह होता था केला।
0: अच्छा जी,
2: जब गोरखपुर होता था तो गोरखपुर से कटकर कुशीनगर बना है, तो वहाँ के कुछ लोग उनकी बस खराब हो गई, मेरा बाईपास से फारा में छोटा सा एक जमीन बाईपास के मुरादाबाद बाईपास के बराबर में भी है
0: जी जी जी,
2: तो उन लोगों से संपर्क होगी, सुबह ही बस खराब हो गई, एक ही परिवार के लोग थे वो गोरखपुर के, और दिल्ली किसी काम से भी सत्संग में जा रहे थे
0: जी जी,
2: सुबह सुबह की बात थी, मुझसे बोले मैं टहलने गया था तो कुछ लेडीजें भी थी उनके साथ, तो वो 17-18 आदमी मेरे साथ घर चले गए, वो केले की खेती करते थे, वो शहरी थे
0: जी,
2: तब उन्होंने मुझे राय दी, बोले केले की खेती करना, तो मैंने

0: से भाग दौड़ करके सारी जानकारी और लोगों से ली,
1: अच्छा जी
0: बता
1: अच्छा
0: के मुझे वो लोग गए थे कुतुब नगर से,
1: अच्छा जी।
0: गोरखपुर से कट के जिला बना।
1: तो उनके कहने पर आपने केले की खेती शुरू कर दी थी, तो इसमें आपको 1 बीघे में कितना खर्चा आ जाता है लगभग?
0: ये मान लो 1 बीघे में
1: जी
0: अगर हम, जैसे हमारे पास सारे साधन है, ट्रैक्टर मेरा छोटा जोतने का है, स्प्रे
1: जी जी
0: मशीन सब कुछ साधन बना लिए हैं अब, समझे,
1: जी
0: तो मेरा खर्चा आता है 15 से नीचे 13-14 हजार।
1: 1 बीघे में
0: हाँ
1: 15 से 14 हजार रुपये आपका खर्चा आ जाता है।
0: हाँ 12 हाँ 13 भी आ जाता है, क्योंकि हम कुछ थोड़े कल्ले बल्ले उनके हाथ से भी कर लेते हैं, लेबर तो करती है, आपने काम तो
1: जी
0: लेबर
1: जी
0: ही करती है, बाकी पानी वानी हम हाथ से लगाते हैं, ट्यूबवेल से अपने, और कुछ काम हाथ से भी कर लेते हैं, तो
1: बिल्कुल।
0: खर्चा कम हो जाता है।
1: तो इसमें आपको 12 या 14 हजार रुपए की आपको लागत आई, फिर इसके बाद आपको उसमें कितना मिलता है, फिर लागत निकालने के बाद आपको कितना मिल जाता है, कितना प्रॉफिट हो जाता है?
0: ये मान के चलिएगा आप 1 बीघे में 192-95 पौधे आते हैं,
1: जी जी
0: और नॉर्मल वजन देखो, जो वैसे किसान है, कमजोर जमीन है किसी की,
1: जी
0: तो
1: जी
0: 20 और 30 के बीच तो वजन आता ही आता है, 20,
1: 20 और 30 के बीच में।
0: लेकिन हम, मैं 35 तक ले लेता हूँ। हाँ,
1: अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: मैंने 42-42 किलो की गैल दी है, 45-45 किलो की गैल भी काटी, क्योंकि मेरे पास जमीन बहुत जानदार है, ऊपर
1: जी बिल्कुल
0: वाले की कृपा से। हाँ,
1: जी
0: लेकिन मैं 30 से नीचे नहीं जाता हूँ, 30-32 से नीचे नहीं जाता हूँ, लेकिन नॉर्मली जैसे कोई केयर कम हो जाए, लागत कम लगे किसी वजह से, किसान कोई दिक्कत
1: जी
0: में है, कोई परेशानी में
1: तो
0: है,
1: ये
0: तो वो भी 20 से कम तो आएगा ही नहीं।
1: अच्छा, तो ये एक गैल आपकी 35 किलो की निकल आती है, तो ये कितने की चली जाती है?
0: देखो रेट रेट के बारे में कम,
1: जी
0: हाँ रेट तो ये मान के चलो
1: इस समय क्या
0: एक
1: रेट
0: हजार
1: है?
0: बारह सौ रुपये कुर्बान से रूपी में कहीं केला ना, बिहार का भी यहाँ का लोकल का केला अभी नहीं चला है, अभी महाराष्ट्र और गुजरात से केला आ रहा है, अगर हमारे पास तैयार हो तो हमसे भी 14-15 रुपये कुंटल लेते हैं।
1: 1500 रुपये प्रति क्विंटल मिल जाता है आपको? जी
0: हाँ, 55 कुंटल वजन करीबन निकलेगा
1: जी
0: 1 बीघे में,
1: अच्छा जी जी
0: अगर 1 हजार के रेट से जाता है तो 55 हजार का हो गया बीघा।
1: जी
0: हाँ, अगर 32 किलो वजन आ रहा है तो फिर 60 कुंटल निकलता है, 20 किलो
1: बिल्कुल
0: वजन आ रहा है तो 40 कुंटल निकलेगा बीघे में,
1: जी,
0: ये हिसाब है। हाँ
1: हालांकि कुल मिला के प्रॉफिट अच्छा है।
0: हाँ बिल्कुल, नुकसान तो है ही नहीं, ठीक।
1: बिल्कुल
0: और जो जो इस खेती करे और मुनाफा कमाए, तो जैसे और सेठ बनिए लोग, इतने पैसे वाले हो तो हम किसान भाई भी पैसे वाले हो जाएंगे, किया
1: बिल्कुल सही बात, इस खेती को किया जाए।
0: जाए तो। लेकिन दिक्कत एक और आ गई, अगर
1: जी
0: ज्यादा तास में हम कर लेंगे अतिकांत होता है,
1: बिल्कुल सही बात
0: देश में ज्यादा तास में करेंगे
1: जी
0: तो चाहे माल रहेगा तो मरता जाएगा, चाहे इसका एक्सपोर्ट करे बाकी
1: बिल्कुल
0: देशों में जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन के प्रोडक्ट बनने चाहिए, प्रोडक्ट भी बनेंगे और माल सप्लाई भी होगा, तभी रेट अच्छे
0: हाँ,
1: मिलेंगे।
0: अभी रेट अच्छा, ज्यादा सब सभी किसान भाई करने लगेंगे तो देश
1: जी
0: के देश में खपत होगी तो मंदा हो जाएगा, फिर
1: बिल्कुल
0: एवरेज आना बंद हो जाएगा।
1: जी, तो प्रोडक्शन का भी ध्यान रखें कि उत्पादन भी हमको सीमित मात्रा में करना है,
0: हाँ
1: इस बात का भी किसान भाई ध्यान रखें। वीरेंद्र यादव जी, आपसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा, और केले की खेती पर आपने विस्तार से जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीना बहन, देखो अभी हमारे सभी किसान भैया और बहन ने क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में जानकारी सुनी, प्रगतिशील कृषक से भेंट
2: हाँ
1: विषय
2: भैया,
1: पर, और जानकारी दे रहे श्री वीरेंद्र सिंह यादव, जो कि गांव डिलरा रायपुर विकासखंड मूंडा पांडे जनपद मुरादाबाद से है। हम उम्मीद करते हैं हमारे बहुत सारे किसान भैया ने ये जानकारी सुनी होगी, और उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे किसान भैया ने मन भी बना हुआ होगा कि केला की खेती करी जाए,
2: हाँ भैया बिल्कुल,
1: क्योंकि केला की खेती भी हमारे किसान भैया के लिए देखो जाए तो व्यवसाय की दृष्टि से बहुत लाभदायक।
2: लाभकारी है भैया।
1: इस तरह से हमारे किसान भैया अपनी जो केला की फसल है उसको कर सकते हैं, और हम अपने सभी किसान भैया के लिए एक और जानकारी लेकर आए कृषि संकेत कार्यक्रम में।
2: हाँ भैया,
1: मीना बहन, आज को विषय है हमारे बुवाई से पहले बीज उपचार का महत्व,
2: हाँ भैया,
1: और बीज उपचार करना क्यों जरूरी है, जहाँ हम अपने सभी किसान भाइयों के लिए बता दें कि उसको कितना महत्व है। हमारे बहुत सारे किसान भैया तमाम तरह की फसलों को अपने खेतों में लगाते हैं,
2: हाँ भैया बिल्कुल लगाते
1: अब
2: हैं,
1: वो बात जा है कि उनकी फसलों में बीमारी भी लगती हैं,
2: हाँ भैया लगती हैं,
1: और बीमारी किस तरह से लगती हैं, उनको हमारे किसान भाइयों को रोकने के लिए बीज को शोधन करना बहुत ज़रूरी है, बीज को उपचार करना बहुत ज़रूरी है। हमारे किसान भैया देखते हैं कि जो खरीफ का मौसम चल रहा है और बुवाई को समय भी चल रहा है, कई किसान खेत तैयार करने और खाद की व्यवस्था करने के लिए भी बीज को खरीदने में लगे हुए हैं,
2: हाँ भैया,
1: लेकिन अक्सर एक ज़रूरी काम छूट जाता है और वहीं आगे चलकर नुकसान को कारण भी बनता है। और मीना बहन, देखो किसान अच्छे बीज तो खरीद ही लेते हैं, लेकिन बिना उपचार के सीधे खेत में अगर बो दें तो बाद में कोई ना कोई बीमारी आ जाती है उनकी फसल में, और उन्हें चिंता बढ़ जाती है।
2: हाँ भैया, और हमारे गांव में भी पिछले साल ये हुआ था ना, एक किसान भैया ने जल्दी जल्दी में बुआई कर दी और कुछ दिन बाद देखा तो कई जगह बीज उगे ही ना, जहाँ पौधे निकले भी वहाँ रोग लग गया।
1: बिल्कुल,
2: कृषि विभाग के लोगों ने बताया कि अगर बुआई से पहले बीज उपचार कर लिया जाता ना तो काफी नुकसान से बच हो जा सकते हो भैया।
1: बिल्कुल मीना बहन, बीज उपचार देखो सबसे पहली सुरक्षा है।
2: हाँ भैया बिल्कुल,
1: हमारे किसान भैया के लिए बीज अगर देखो जाए तो बीमारियों से फसल सुरक्षा को एक कवच है।
2: हाँ भैया बिल्कुल,
1: इस तरह से हमारे किसान भैया अगर फसल के जो बीज हैं उन पर अगर पहले ही बीज को उपचार कर लें तो काफ़ी हद तक बीमारियों से आन को बचो जा सकते हैं। और मीना बहन, इस तरह से हमारे किसान भैया के लिए सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है।
2: हाँ, और अनिल भैया ना, बीज उपचार का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बीज मिट्टी में मौजूद कई तरह के रोगों और फफूंदी से सुरक्षित रहता है भैया। इससे अंकुरण अच्छा होता है और पौधे स्वस्थ निकलते हैं भैया।
1: और जब पौधे स्वस्थ होंगे तो उनकी बढ़वार भी अच्छी होगी, मजबूत पौधे बाद में कीट और रोगों को सामना भी बेहतर तरीका से कर पाते हैं।
2: हाँ भैया,
1: इस तरह से हमारे किसान भैया की जो फसलें हैं उनको बेहतर करो जा सकता।
2: हाँ, और अनिल भैया ना, किसान भाई अक्सर सोचते हैं कि बीज उपचार में ज्यादा खर्च होगा, लेकिन सच तो ये है कि बहुत कम खर्च में बड़ा फायदा मिल जाता है भैया।
1: बिल्कुल, एक बीघा या एक एकड़ की फसल को जो खर्च होता है उसके मुकाबले बीज उपचार को खर्च बहुत कम ही जाता है, लेकिन इससे फसल भी बच जाती है और उत्पादन बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है।
2: हाँ, और अनिल भैया ना, आजकल बाजार में कई प्रकार के बीज उपचार रसायन और जैविक उत्पादक भी उपलब्ध है भैया।
1: बिल्कुल, और मीना बहन देखो, किसान भाई अपनी फसल के अनुसार कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर फफूंदनाशक, जैव उर्वरक और जैव एजेंट को उपयोग कर सकते हैं। इससे बीज सुरक्षित रहता है और पौधों की शुरुआती जो बढ़त है वो अच्छी हो जाती है।
2: हाँ भैया, और अनिल भैया ना, मैंने कृषि वैज्ञानिकों से सुना था ना, दलहनी फसलों में राइजोबियम ना होता है, कल्चर का प्रयोग भी बहुत लाभकारी होता है भैया।
1: बिल्कुल मीना बहन, अरहर, मूंग, उड़द, चना जैसी जो फसलें हैं ना, उनमें हमारे जो किसान भैया राइजोबियम कल्चर को जो होता है ना उसको अगर वो कर देते ना उपचार, तो होता है जो राइजोबियम के द्वारा जो हमारे किसान बहन की जो दलहनी फसल है उनमें गांठा होती है ना, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है।
2: अच्छा अच्छा,
1: उससे जो है वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है वो लेकर और पौधा को स्वस्थ बना देता है और उसकी बढ़वार अच्छे से होता है। इससे उर्वरक की शुरुआत जरूरत भी जो हमारे किसान बहन के लिए है कुछ हद तक कम ही जाती है।
2: यानी बीज उपचार सिर्फ रोगों से बचाव ही नहीं करता भैया, बल्कि पौधों को पोषण देने में भी काफी मदद करता है भैया।
1: बिल्कुल, यही कारण है कि कृषि वैज्ञानिक हमेशा कहते हैं कि अच्छी फसल की शुरुआत अच्छे और उपचारित बीज से भी होता है।
2: कई बार भैया किसान भाई अपने घर का रखा हुआ बीज इस्तेमाल करता है भैया, ऐसे बीजों में रोगजनक जीवाणु या फफूंदी छिपी हो सकती है जो आंखों से दिखाई ना देती भैया।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं ये जो बीमारी फैलाने वाले, चाहे वो बैक्टीरिया कह लो चाहे कवक कह लो, तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई ना देते हैं। और बाजार से बीज भले ही साफ, बाहर से भले ही बीज साफ दिखाई दे, लेकिन उसके ऊपर या अंदर रोग के कीटाणु हो सकते हैं। उपचार करने से ऐसे रोगजनकों को प्रभाव से काफी हद तक बचाव जा सकता है।
2: हाँ, और जब खेत में पौधों की संख्या अच्छी रहती है ना, तो भैया ना फसल भी एकदम समान दिखाई देती है।
1: हाँ, और यही ना, बीज उपचार करने से दोबारा बुवाई की भी जरूरत ना पड़ती है और कम हमारे किसान बहन के लिए बीज में ही अच्छी पैदावार मिल सकती है और उनको जो बीज अंकुरण है वो ज्यादा हो सकता है।
2: हाँ, और किसान भैया बहन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बीज उपचार हमेशा बुआई से ठीक पहले करें और अनुशासित मात्रा का ही प्रयोग करें भैया।
1: बिल्कुल, और विधि की जानकारी कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विशेषज्ञ से जरूर ले लें, बिना जानकारी के अधिक मात्रा को प्रयोग करना ठीक ना है।
2: और भैया ना, अब तो सरकार और कृषि विज्ञान भी बीज उपचार को बढ़ावा दे रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भैया।
1: क्योंकि ये एक छोटो सो कदम है लेकिन इसको असर पूरी फसल पर पड़ता है। स्वस्थ बीज, स्वस्थ पौधा और स्वस्थ फसल, यही सही खेती की पहचान है।
2: हाँ, और तो किसान भाइयों बहनों, जब भी बुआई की तैयारी करें बीज उपचार को बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल,
1: हाँ बिल्कुल मीना बहन, और याद रखें बीज उपचार कोई अतिरिक्त खर्च ना है बल्कि आपकी फसल को सुरक्षा कवच है।
2: हाँ भैया बिल्कुल।
1: तो इस तरह से हमारे किसान भैया जी कृषि संकेत में हमने जानकारी दे दी अपने किसान भैया के लिए कि बीज उपचार कितना जरूरी है, उसको कितना महत्व है।
2: हाँ भैया बिल्कुल।
1: और देखो मीना बहन, देखो समय हमारे पास कम है, तो क्यों ना हम अपने किसान भैया के लिए कल के कार्यक्रम को बारे में बता दें कि कल कौन कौन से कार्यक्रम आपको सुनवाई जाएंगे।
2: हाँ भैया बिल्कुल।
1: चर्चा होगी ज्वार बाजरा की बुवाई, इसके बाद एक आपके लिए भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी, सफल कृषि स्टार्टअप प्रगतिशील कृषक से भेंट, जानकारी देंगे श्री गुरु भगत सिंह, और इसके बाद आपके लिए एक लोगी सुनवा हो जाएगा, और फिर कृषि संकेत में जानकारी दी जाएगी अधिक लाभ हेतु फसलों की खेती, और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में जानकारी भी आपको कराई जाएगी, फिर मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। इस तरह से तो कल के कृषि जगत कार्यक्रम में आपको जानकारी कराई जाएगी। और मीना बहन देखो, अब हाँ हम अपने किसान बहन के लिए एक और जानकारी दे दें कल के मौसम की।
2: हाँ भैया बिल्कुल।
1: मौसम किस तरह से रहने को अनुमान है, अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री, आर्द्रता 44%, हवा की दिशा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने की संभावना है। और अब समय हमारे अनुमति न दर हो कि हम अपने सभी किसान बहन से और बातें करें।
2: हाँ भैया।
1: तो अपने भैया अनिल
2: और अपनी बहन मीना को दे अनुमति।
1: राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम कानून और हम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे, जिसमें जानकारी का विषय होगा साइबर सुरक्षा कानूनी पहल। इस विषय पर हम आपको जानकारी सुनाएंगे। लीजिए सुनिएगा ये जानकारी, साइबर सुरक्षा कानूनी पहल। आपसे बात की है अवधेश कुमार गौतम ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम कानून और हम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के हर अंक में हम किसी न किसी लीगल विषय पर बात करते हैं। हमारे कार्यक्रम में चर्चा का विषय है साइबर सुरक्षा और कानूनी पहलू। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं गौतम सिंह गंगवार जी, जो कि अधिवक्ता हैं। गौतम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि हमारा विषय है साइबर सुरक्षा और कानूनी पहलू, वकील साहब, पहले तो हमें ये बताइए कि डिजिटल युग में कानून की भूमिका किस प्रकार बढ़ रही है?
1: डिजिटल युग में कानून की भूमिका जो है वो बढ़ने कई तरीके से बढ़ी है। जैसे साइबर अपराधों से निपटना है,
0: जी
1: व्यक्तिगत डाटा जो अपना पर्सनल डाटा होता है
0: जी
1: उसकी गोपनीयता को सुरक्षित करना है और
0: जी
1: बौद्धिक संपदा की रक्षा करना है। डिजिटल
0: जी
1: कानून अब ऑनलाइन गतिविधियों को
0: जी
1: नियंत्रण करने के लिए भी उसकी भूमिका अहम है। और जो लेन देन आजकल जो ऑनलाइन लेन देन चल रहा है उसको सुनिश्चित करने के लिए भी
0: जी
1: कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
0: जी एक आम व्यक्ति के लिए साइबर सुरक्षा शब्द का कानूनी अर्थ क्या हो सकता है?
1: अर्थ ये है कि दुनिया में जो अपना डिजिटल डेटा है और अपनी पहचान को सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना और उसको कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और मोटे तौर पे जो अपना आईटी एक्ट 2000 परिभाषित करता है कि आम नागरिकों को कर्तव्य और उनसे बचने के लिए जैसे डेटा सुरक्षा अधिकार है और उसकी गोपनीयता का अधिकार है, सुरक्षित पर जैसे साइबर कुछ सुरक्षित करना, अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखा जाए और उसका दुरुपयोग करने से बचा जाए।
0: साइबर कानून यानी कि साइबर लॉ क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: साइबर लॉ की आवश्यकता इसलिए पड़ी जिससे कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन साइबर क्राइम हो रहे हैं, जैसे हैकिंग है और पहचान की चोरी, आइडेंटिफिकेशन की चोरी है,
0: जी
1: किसी की आइडेंटिफिकेशन को चुरा के अपने उसको करना, और फिशिंग है, नकली ईमेल या वेबसाइटों के द्वारा माध्यम से संवेदनशील मैसेज जारी करना, ऑनलाइन धोखाधड़ी है वित्तीय लाभ लोगों से लेने के
0: जी
1: लिए, और सबसे बड़ा है मेलवेयर,
0: मालवेयर जी
1: मैलवेयर हमला, दुर्व जो सॉफ्टवेयर किसी के
0: जी
1: सॉफ्टवेयर को
0: जी
1: हैक करके जो किया जाता है।
0: जी यानी कि जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें जो व्यक्ति का डेटा, किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, वो जो भी ऑनलाइन डेटा है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं वो साइबर लॉ के अंतर्गत आते हैं।
1: आते हैं
0: जी, भारत में ऐसे कौन-कौन से प्रमुख साइबर अपराध हैं जो सबसे ज़्यादा देखे जा सकते हैं?
1: भारत में सबसे ज्यादा जो इस समय अपराध चल रहे हैं वो वित्तीय धोखाधड़ी है
0: जी
1: और फिशिंग है,
0: जी
1: साइबर स्टॉकिंग है। धोखाधड़ी देने वाले आजकल ये ऐप चल रहे हैं, बहुत सारे ऐप हैं, स्कैम है और रैसम वेयर है। मेन तो एक रैसम वेयर उपभोक्ता जो फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है,
0: इनक्रिप्ट कर देता है।
1: दूसरों की फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है। और फिशिंग में क्या होता है, संवेदनशील जानकारी जो हमारी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको चुरा के
0: चुरा
1: अपने
0: लेता है जी,
1: चुरा लेता है और उसको
0: और
1: वो ईमेल के जरिए उसको हैक करता
0: उसका कुछ
1: है,
0: भी दुरुपयोग हो सकता है।
1: दुरुपयोग हो सकता है। और साइबर के थ्रू एक आतंकवाद का भी अपने एक गंभीर अपराध है, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा दूसरे को नुकसान पहुंचाना या उसकी जो अपनी पर्सनल वो है उसको बाधित करना।
0: जी। साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय कानून में कौन से प्रावधान हैं?
1: साइबर अपराध से निपटने के लिए एक तो मेन अपना कानून वही है आईटी एक्ट
0: जी
1: 2000 और डिजिटल व्यक्ति डेटा संरक्षण डीपीपी ये भी है एक, और मध्यवर्ती डिजिटल मीडिया आचार संहिता का भी 2001 का है।
0: जी
1: तो इतने सारे प्रावधान हैं जिनके जरिए आप इससे इसके साइबर जो क्राइम है उससे अपनी
0: साइबर
1: सुरक्षा
0: क्राइम
1: कर
0: से
1: सकते हैं।
0: अपनी सुरक्षा कर सकते
1: जी
0: हैं। क्या साइबर अपराध के लिए सजा या जुर्माने का कोई प्रावधान
1: जी
0: है?
1: जी जी जी साइबर अपराध में अपराध के अकॉर्डिंग ही
0: जी
1: जुर्माना और
0: सजा
1: सजा
0: जी
1: दोनों के प्रावधान हैं। जैसे कहते हैं जुर्माना वो अपराध के हिसाब से 1 लाख
0: जी
1: तक हो सकता है और
0: जी
1: सजा के भी प्रावधान है, सजा 3 साल तक की भी हो सकती है, अपराध
0: जी
1: के अनुसार
0: जी
1: वो
0: जी
1: घट बढ़ सकती है, जिस टाइप का अपराध होता है उस हिसाब से सजा का प्रावधान है।
0: जी यदि कोई व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार होता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: कोई व्यक्ति अगर साइबर अपराध का शिकार होता है तो सबसे मेन होता है, अगर वित्तीय अपराध का शिकार होता है तो उसमें सबसे पहले अपने नज़दीकी थाने में या अपने साइबर सेल जो थाना लगता हो अपने
0: जी
1: जिस जगह वो वित्तीय शिकार का या वैसे साइबर क्राइम का शिकार हुआ है वहाँ पे सबसे पहले अपनी शिकायत दर्ज कराए, और नंबर है 1930 पे कॉल करके तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
0: क्या साइबर अपराध के लिए सामान्य थाने में शिकायत की जा सकती है या किसी विशेष सेल में जाना होता है? जैसे कि आपने अपने पिछले सवाल के जवाब में बताया था कि कुछ साइबर सेल भी होते हैं, तो ये साइबर सेल उस निकटतम थाने के अंदर होते हैं या अलग होते हैं?
1: नहीं, साइबर सेल अलग होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके खिलाफ जो साइबर उसका अपराध का शिकार हुआ है वो साइबर थाने में भी जाके रिपोर्ट दर्ज कराए, वो अपने नजदीकी थाने में भी जाके रिपोर्ट दर्ज करा सकता है।
0: क्या ऑनलाइन FIR या पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है?
1: बिल्कुल, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। उसकी भी ऑनलाइन पोर्टल पे भी आपका cybercrime.government.in पे भी जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
0: ऐसे मामलों में साक्ष्य यानी कि एविडेंस कैसे सुरक्षित रखे जाएं ताकि कानूनी रूप से उपयोग हो सके?
1: साक्ष्य को, जो अपना साक्ष्य का पर्सनल डेटा है उसको सुरक्षित रखा जाए। जैसे आपके खिलाफ कोई साइबर क्राइम हुआ है तो जो क्राइम हुआ है उसका जो डेटा है आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं, PD में सुरक्षित कर सकते हैं, जैसे भी सुरक्षित कर सकते हैं, और उसको अदालत में पेश करने के लिए 65B का एक सर्टिफिकेट देना होता है, जिस सर्टिफिकेट के अनुसार ही आप उस एविडेंस को कोर्ट में प्रेषित कर सकते हैं।
0: सोशल मीडिया पर गलत या आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर क्या कोई कानूनी कार्यवाही संभव है?
1: बिल्कुल है, सोशल मीडिया किसी की निजी फोटो उसकी बिना अनुमति के साझा करना अपराध है और भारत में ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT Act की धारा 63E के अंतर्गत दंडनीय है, जिसमें 3 साल तक की सजा और 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है, जिसके अनुसार भी ये दंडनीय है।
0: जी, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग या ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग जैसे मामलों में महिलाओं और बच्चों के लिए क्या विशेष कानूनी संरक्षण है?
1: साइबर स्टॉकिंग धारा 354C और धारा 354D के तहत किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध ऑनलाइन पीछा करना या निगरानी करना अपराध है, उसके लिए इन धाराओं के अंतर्गत उसको सजा हो सकती है। आपराधिक धमकी, ऑनलाइन किसी भी माध्यम से धमकी देना, इच्छा मृत्यु की धमकी देना, धारा 351, 506 और 78 भारतीय न्याय संहिता के 2023 के अंतर्गत उसको सजा हो सकती है। साइबर ब्लैकमेलिंग अगर करता है तो उसके लिए भी
0: सजा का प्रावधान है। क्या पॉक्सो एक्ट या IT Act के अंतर्गत ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है?
1: बिल्कुल है सर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री साझा करना 66 और 67 IT Act के तहत दंडनीय अपराध है। और पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, अधिनियम बच्चों के लिए साइबर बुलिंग और किसी भी प्रकार के यौन शोषण से बचाता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में पॉक्सो एक्ट लागू होता है।
0: जी, अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नहीं समझते कि ऑनलाइन गतिविधि कितनी अनसेफ हो सकती है।
1: अपने बच्चों को ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति व्यक्तिगत जानकारी को साझा कराने से बचा सकते हैं, अजनबी जो हैं उनसे दूर रख सकते हैं। अगर कुछ डाउनलोड करते हैं तो उससे पहले स्क्रीन टाइम सीमित जैसे नियमों पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त बच्चों को साथ खुलकर बातचीत करें और अभिभावकीय नियंत्रण सॉफ्टवेयर का उपयोग करना और डिवाइस को खुले स्थानों पर रखना भी महत्वपूर्ण है।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी रहता
1: बहुत
0: है
1: जरूरी
0: अगर
1: है।
0: बात करें हम बच्चों की, तो आम नागरिकों को अपने डिजिटल अधिकारों की जानकारी कैसे मिलेगी? क्योंकि इसके लिए डिजिटली साक्षर होना बहुत जरूरी है, डिजिटल अधिकारों का पता होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे केस में अगर आम नागरिक चाहे तो वो कैसे अपने डिजिटल अधिकारों की जानकारी कर सकता है?
1: सरकार की तरफ से कई सरकारी वेबसाइट और सरकारी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिनके जरिए आम आदमी भी साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी हासिल कर सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है
0: जी,
1: और समय समय पर डिजिटल साक्षरता अभियान भी चलते हैं
0: जी,
1: उनके थ्रू भी कर सकता है। अच्छा, हमारे न्यायालय में लोक अदालतें लगाई जाती हैं, सेकेंड मंथ में या थर्ड मंथ में लगाई जाती है, वहां जाके भी आम नागरिकों के लिए लगाई जाती
0: है,
1: वहां जाके भी अपने इसको कर सकता,
0: अपनी जानकारी ले सकता
1: ले सकता।
0: वकील साहब, हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कानूनी सलाह या सावधानी संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी को यही जानकारी साझा करना चाहूंगा, यही बताना चाहूंगा कि आजकल डिजिटल दुनिया में साइबर क्राइम इतनी चरम सीमा पर बढ़ चुका है, तो अपने बच्चों को डिजिटल मोबाइल फोन मल्टीमीडिया जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, अननेसेसरी ऐप हैं, उनको डाउनलोड करने से बचें, और बिना किसी कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक या कोई भी सॉफ्टवेयर का वो आपसे कोई भी ओटीपी साझा करने के लिए नहीं कहता है। कोई अननेसेसरी कॉल पे अपने ओटीपी साझा ना करें, अपना पर्सनल डेटा साझा ना करें
0: जी,
1: जिससे कि आप साइबर क्राइम की दुनिया में जो चल रहा है उसके आप शिकार ना हो।
0: बिल्कुल, तो आज के टाइम में जो स्थापित सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वेबसाइट हैं, वो भी आपको ये ऑप्शंस देती हैं कि आप उनमें प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल लगा
0: तो
1: सकते हैं।
0: पहले तो कोशिश करें कि कम से कम एक सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करें, और करते हैं तो प्राइवेसी टूल्स होते हैं उनका आप इस्तेमाल करें,
1: सभी का इस्तेमाल करें, और बाकी जो भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें सिक्योरिटी पर्पस से अपना पासवर्ड रखें।
0: जी जी,
1: सब कुछ ऐसे आजकल चल रहे हैं तो उनको यूज करें।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी वकील साहब आपने इस विषय पर हमें दी, हमारा जो कि हमारा विषय था साइबर सुरक्षा के कानूनी पहलू। आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, इतनी अच्छी और सार्थक जानकारी हमारे और हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कानून और हम के अगले अंक में फिर से हाजिर होंगे एक नए लीगल विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मैं अवधेश कुमार गौतम आपसे चाहूँगा अनुमति।
2: साइबर सुरक्षा और कानूनी पहलू, इस विषय पर अभी आपने सुना कार्यक्रम कानून और हम। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल थे वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम सिंह गंगवार, आपसे बात की थी अवधेश कुमार गौतम ने। कानून और हम कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी अवधेश कुमार गौतम की। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे, यानी 7:31 पर सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें। आज के कलाकार हैं समी नियाजी। गीत गाता चल, फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा आज रात्रि 8:00। रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कवि गोष्ठी। इस कवि गोष्ठी में शामिल होंगे डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडे, उदय प्रकाश सक्सेना, रामकिशोर वर्मा और श्री जितेंद्र कुमार सक्सेना। सुनना न भूलिएगा आज रात्रि 9:30 पर कवि गोष्ठी। 10:00 का समय रहेगा खेल दर्पण का। 10:30 पर आप सुन सकेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। कल सवेरे 6:05 पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। छह बजकर 35 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आज का चिंतन। स्वास्थ्य संदेश का समय रहेगा 6:35 का। कल इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा चिकित्सा पूर्व जांचें। इस पर जानकारी आप तक पहुंचाएंगी डॉक्टर उषा भट्ट। 6:45 पर आप सुन सकेंगे श्री रामचरित मानस गान से प्रसंग। कलाकार होंगे हरिहरन और संगीत होगा सतीश भाटिया का। 7:00 हम आपका लेकर आएंगे अमृत कलश, जिसका विषय होगा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और भारत। इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचेगी श्री अनिरुद्ध मिश्रा के स्वर में। फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे आप तक पहुंचेगा कल सुबह 7:31 पर। 102.9 मॉर्निंग हिट्स, ये कार्यक्रम आप तक लेकर आएंगे कल सवेरे 8:45 पर। प्रेरक प्रसंग, कल इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मंगल पांडे के बारे में, कार्यक्रम का समय याद रखिएगा 9:25 पर। प्रेरक प्रसंग उर्दू कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम को कल सुबह 9:30 पर। 9:50 का समय रहेगा उपशास्त्रीय संगीत का। शहनाई वादन पर होंगे श्यामलाल, राग होगा रामकली, तबला पर संगत होगी ठाकुर प्रसाद मिश्रा की। आपके अनुरोध पर फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 10:05 पर। सुनहरा दौर कल सुबह 10:30 पर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 80 के दशक के गीत। कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत आप सुनेंगे धारावाहिक ऑर्फन बेमिसाल है। कल इस कार्यक्रम में सुनिएगा एपिसोड संख्या 11। कार्यक्रम का समय याद रखिएगा धरोहर का कल दिन में 11 बजे। 11:30 का समय रहेगा मनभावन का। एक ही गीतकार राजेश रोशन को इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:18 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ क्षणों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुबत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोप वे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए आज फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। विशेष जांच दल ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि जांच में सभी विभागों की जिम्मेदारी को देखा जाएगा और सभी पहलुओं पर गहराई से गौर करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ, उसमें अभी हम लोगों ने डिटेल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। जांच दल 7 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
3: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन परिजनों को। तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और भी जो भी आवश्यकता होगी हम पूरा कर जो भी कर सकते करेंगे। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
1: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अवैध निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। लखनऊ में अग्निकांड के बाद आज प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने होटलों और कोचिंग सेंटरों में चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं बस्ती, मेरठ, जौनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य दो सदस्यों के साथ आज अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है, एसआईटी की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
4: शासन द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में दो पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा।
6: प्रोफेसर मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा, शास्त्रीय संगीत।
5: राष्ट्रपति ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी प्रेमवती ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में पद्म पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की हस्तियों को बधाई दी और उनके योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। UPTET 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया ₹10 और अधिकतम ₹50 निर्धारित किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र ₹50 में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना कैंट से गोदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर मार्ग पर संचालित होगी। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में इस अवसर पर बड़ी संख्या में भंडारे लगाए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले 4 दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है।
7: कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं और इन स्थितियों के अगले चार दिनों तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने चार अधिकारियों को किया निलंबित, चार आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुपत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
0: किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
8: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:31 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें। आज के कलाकार हैं समीर नियाजी। लीजिए सुनिएगा ये कार्यक्रम सुगम संगीत।

समी नियाजी के स्वर में। अभी आप सुन रहे थे गजलें, कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को दीपिका का नमस्कार। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए फरमाइश हम तक आई है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बिनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना भारती, ओमवती खनक, शुगुन सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह की। कार्यक्रम के इसी गीत को पसंद किया है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खां, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरसी और इरफान खान ने। ततेंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है वार्ड नंबर 1 पुफाली जिला यवतमाल से जयराम, दिशांत कुमार और अर्पिता जी की। निर्गौड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी की। बाबा साहेब वड़ौदे से हैं मीनाक्षी, रजनी और इनके बहुत सारे साथी। बालोद छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुना चाहा है देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अलकबीर ने। कार्यक्रम के इसी गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली और इन्हीं के साथ हैं मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान की फरमाइश पर। गांव चौहलदा बागपत से इस गीत को पसंद किया है संजय ढींगिया, निमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने। ढकिया केसरपुर बासखेड़ा जिला पीलीभीत से हमें फरमाइश भेजी है एके राजपूत, अनिल कुमार, कैलाश चंद्र राजपूत, भगवान दास, मदन लाल, रवि कुमार, नवनीत, किरण, खुशी, संतोषी, प्रिया और चंचल की। बठिंडा पंजाब से इस गीत को सुना चाहा है परमेर सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप दमन और अभिजोत की। कार्यक्रम के इसी गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं बहेड़ी से राजेश, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज की फरमाइश पर। वडिंग खेड़ खेड़ा पंजाब से इस गीत को पसंद किया है मिंटू, पिंकी और आरती अरोड़ा ने। छत्रपति शंभाजी नगर से सुनने वाले हैं राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। झालावाड़ राजस्थान से इस गीत को सुना चाहा है हर्षिता, मीनाक्षी, मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ से हमारे साथी हैं शोभा, नैना, फुंदीबाई और इनके साथी। ग्राम बहरामपुर जिला खरगोन मध्य प्रदेश से इस गीत को पसंद किया है तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, अमित, समर, बेबी आरोही, इशिका, अंजलि, श्वेता और इनके बहुत सारे साथियों ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथी हैं नारायण, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी और इनके मम्मी पापा।
पुणे से इस गीत को पसंद किया है पंकज वाड़ोदे, प्रियंका और इनके साथियों ने। गांव नथाना पंजाब से हैं अरजिंदर छिंदा, जसवीर, सीता और गीता। हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के स्वर में। फिल्म है प्यार झुकता नहीं।

कार्यक्रम के अगले गीत की ओर चलते हैं और देखते हैं किन किन श्रोताओं की फरमाइश आई है। सरोजी चौक अमरावती से हैं कमुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, शुएब खान, साइमा खान और इनके साथी। छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहा है मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा ने। और इन्हीं के साथ हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा, गौसिया फातिमा। हिंगोली महाराष्ट्र से हमारे श्रोता साथी हैं शाहजी बोटके, नंदा बोटके, हनुमान बोटके और उत्तम जमधाड़े। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से इस गीत को सुनना चाहा है सुधाकर राजे, प्रशांत, संचित कुमार, प्रथमेश सर्वद, कुमारी प्रणाली, कुमारी सानवी और कुमारी हर्षिता देशमुख ने। जिला फिरोजपुर पंजाब से इस गीत को पसंद किया है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह ने। और इन्हीं के साथ हैं शुभदीप सिंह। मुताला महाराष्ट्र से इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश हम तक आई है विजय सुरलकर और रतनमाला की। जलालाबाद से इस गीत को पसंद किया है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और नमिता आहूजा ने। कार्यक्रम के इसी गीत को हम सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा की फरमाइश पर। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका। ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता साथी हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। आदर्श नगर मलौट पंजाब से इस गीत को पसंद किया है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरव, साइना शर्मा और इनके साथ हैं निवान शर्मा। तिलहारा से हमारे श्रोता हैं प्रकाश, नर्मदा और सुजाता। पद्मा टॉकीज नेपाल, नेपानगर मध्य प्रदेश से इस गीत को पसंद किया है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन शाह और इनके साथ हैं राजेंद्र जी। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहा है विनोद, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, दीक्षा और कुश ने। छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से हैं राजेश, सैन और सुरेखा। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से इस गीत को पसंद किया है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष ने। कोली नादेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार साईं। कार्यक्रम के इसी गीत को पसंद किया है नाज मंजिल महसौल सीतामणि से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना आरिज, नदीम शमीम, ममता रानी और पूनम कुमारी ने। कलेर बिहार से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन। कार्यक्रम के इसी गीत को सुनना चाहा है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार ने। तुषार कुरणे, प्रशिक कांवले, एकता मेघना, उत्कर्षा अरुण ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र के।
बीडी मध्य प्रदेश से इस गीत को सुना चाहा है हुकुम करमरकर सुनीता, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर ने।

बाजार रोड मुंगीसापुर से इस गीत को पसंद किया है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब और इनके साथ हैं पलक लुबना, यश मंसूरी। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर महेंद्र कपूर के स्वर में ये गीत। फिल्म है हमराज़।

और अब आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर और देखते हैं हमारे किन किन श्रोताओं की फरमाइश आई है। दिल्ली शहर मुरीगेट से इस गीत को पसंद किया है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। कार्यक्रम के इसी गीत को सुनना चाहा है रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता बागरी, मनोहर, प्रभुलाल और इनके साथियों ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी नाय। दुबिहा निहादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल। शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अवधेश, प्रीति राय और नवनीत राय। राजद्वारा कोठी अफसर आला से इस गीत को पसंद किया है रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी।

गुलफशाह, जीनत अमान और शमा परवीन ने रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से इस गीत को सुनना चाहा है। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा और इनके मम्मी पापा। माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं जिला मुरादाबाद से। राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी, तानिया और इनके बहुत सारे साथी, ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं मंडी डब्वाली से। कोल्हापुर महाराष्ट्र से इस गीत को पसंद किया है विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान ने कार्यक्रम के इसी गीत को पसंद किया है। कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवण, अनिता और राहुल ने। कार्यक्रम के इसी गीत के लिए फरमाइश हम तक आई है प्रेम नारायण, भगवत राम, अभिजीत गवाणकर, तिलक, अशिफ अली सिद्दीकी, तिलोक चंद्र, डोमन, शाहजी बोटके और इनके साथियों की। कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं बबन चौंगले, नूर महल महसोल सीतामणि बिहार से हैं तलत जहां, फिरहत जहां, मुसरत जहां, नाजिया नूरी और शाजिया। फरुखाबाद साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया है सरोज चौरसिया, सुरेश चौरसिया, सलोनी संजू, शिवा शिवानी, पवन और योगेंद्र नायक ने। अतुल गौतमी, धमदिना, अरुण और इनके साथी, ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं जिला कोल्हापुर से। ढकिया केसरपुर से इस गीत को पसंद किया है अनिल कुमार, राजेश्वर दयाल, छोटेलाल यादव, जितेंद्र, प्रिया और तन्वी ने। कार्यक्रम के इसी गीत को सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। सक्षम ज्योति, लता, ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं सांगली से। राजद्वारा रोड मीठे कुएं रामपुर से इस गीत के लिए फरमाइश आई है आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभेरिया और आरुष की। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, फिल्म है नागिन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिएगा, आरती बबली रूपाली वंदना और सरूबाई की फरमाइश पर। ये सभी हमारे श्रोता हैं सिद्धार्थ नगर जिला नादेड़ के। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से इस गीत को पसंद किया है पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता, शोभा कुमारी, वंदना, देविका चौधरी, लड्डू स्वाति, प्रज्ञा चौधरी और इनके बहुत सारे साथी। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। करूला मुरादाबाद से इस गीत को सुनना चाह रहा है अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और नावेद खान ने। सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जिशान वारसी। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से हमारे श्रोता साथी हैं इमरान शेख, रेहान शेख और जिशान वारसी। आजमगढ़ से इस गीत को पसंद किया है जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तुबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी ने। अजीत कसाना, माया देवी, आदित्य ये सभी श्रोता हैं मुरादाबाद के। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुना चाहा है हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल ने। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म लव स्टोरी से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और अजीत कुमार ने।

अमित कुमार और लता मंगेशकर के सुर में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म लव स्टोरी से। और अब आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर। कार्यक्रम के इसी गीत को पसंद किया है हिंगोली से रामचंद्र ने। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी गर्वी। मोहल्ला बारादरी महमूद खरामपुर से हमारे साथी हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। जसपुर उत्तराखंड से इस गीत को सुना चाहा है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। कार्यक्रम के इसी गीत को सुना चाहा है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीद, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, पिटू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा।

शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से इस गीत को सुनना चाह रहा है आर्यन कृष्णा पीहू पिंकी मुन्ना भाई स्वर्णकार ने। जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान इरफान मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया है युगेंद्र नायक गीता नायक निहारिका नायक सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया ने। सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सा नाजिया इब्राहिम सदाम और अदीब। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म कटी पतंग से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होना चाहते हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी

0: विजय अमृतराज, अभिनेता मंगूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेकिया के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रासलफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
3: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से सेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की और बढ़ना चाहिए।
4: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2वें समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cyber security to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South and contribute to a safer, more secure and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Deva Bhava and urged officers to keep citizens at the center of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations for Kharif season to help farmers deal with the possible impact of a weak monsoon caused by El Nino. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan said that the country had so far seen around 43% less rainfall and that the monsoon was expected to remain weak in July too.
6: Overall rainfall has been 43% below normal so far, and according to the weather forecast, conditions are likely to remain weak until the week ending 2nd July. This means that our kharif crops could be affected. We have been preparing for such situations for quite some time. An assessment has also been carried out to determine how many districts may be affected. Based on the current projections, around 315 districts are likely to experience deficient rainfall.
5: Mr. Chauhan said that states have been advised to promote crops like pulses, coarse grains and oilseeds, which require less water and can still perform well under difficult conditions. He said scientific protocols, timely crop planning and district-level preparedness were being strengthened in coordination with the states. Mr. Chauhan added that Krishi Vigyan Kendra, AgroMet units and other advisory channels are being used to ensure that farmers receive timely guidance. The International Centre for Ocean Information Services, or INCOIS, has begun issuing specialized bulletins on the potential impacts of the ongoing El Nino event on maritime sectors. The first bulletin was released by Shevela Member of Parliament, Konda Vishveshwar Reddy, at an event in Hyderabad. The bulletin states that the El Nino event is steadily developing and is expected to peak during winters between November 2026 and January 2027. Sea surface temperatures in the Indian Ocean are projected to remain above normal till May 2027. President Draupadi Murmu presented the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik are among the decorated recipients. A report.
7: This year, the government had announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Padma Bhushan was given to 7 persons, including former tennis player Vijay Amrit Raj, actor Mammootty and playback singer Alka Yagnik in today's ceremony. Politician Shibu Soren was awarded the Padma Bhushan posthumously. 57 persons received the Padma Shri Award, including cricketer Rohit Sharma, actor R. Madhavan and former Prasar Bharati CEO Shashi Shekhar Vempati. Actor Satish Shah was given the Padma Shri posthumously. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah were among those who were present on the occasion. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
5: The National Testing Agency, or NTA, today announced the results of Common University Entrance Test, CUET 2026, for undergraduate admissions. Candidates who appeared for the examination can now access their scorecards through the official CUET portal. According to NTA, over 11 lakh candidates appeared for the examination this year. A three-member special investigation team, or SIT, probing the alleged anomalies in donations and offerings at the Ayodhya Ram Mandir has submitted its initial probe report today. The report was submitted to Additional Chief Secretary Home Sanjay Prasad by SIT Head Vijay Vishwas Pant, who is Commissioner of Lucknow. The high-level panel was constituted by the state government to investigate alleged financial irregularities and misappropriation of funds. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to News at 9. The Ministry of External Affairs today confirmed the death of 12 Indian citizens in an explosion in Qatar. Addressing media in New Delhi this afternoon, Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said a total of 66 people were injured in the incident and are currently receiving medical treatment.
8: We lost 12 of our nationals in the tragedy in Ras Laffan gas field where an explosion happened. Several other people have also been injured. I'm told that some 66 people are injured across nationalities. We don't know exactly how many of them are Indian nationals, but all those people who are injured are safe. We are talking to the local authorities for the identification of the mortal remains, as also for the transportation of mortal remains to India. We are also in touch with the family members of those who have died in this very unfortunate accident.
5: Responding to the comments made by Pakistani Defence Minister Khwaja Asif on the situation in Pakistan-occupied Kashmir, the spokesperson said such remarks are desperate attempts by the neighbouring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
8: Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these fabricated claims with the contempt that they deserve. The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
5: Mr. Jaiswal said that since the signing of MOU between the US and Iran on the 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. He hoped that the remaining India-flagged vessels would also be able to cross the strait soon. The Tamil Nadu government has set up a helpline to assist people affected by the fire tragedy in Qatar. Chief Minister C. Joseph Vijay today announced an ex gratia of 10 lakh rupees each to the families of those who lost their lives in the incident. He said the state government is taking steps to bring back the mortal remains of the three victims in coordination with the Ministry of External Affairs and the Indian Embassy in Qatar. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali and the Prosperity Party on their decisive victory in the Ethiopian parliamentary elections. In a social media post, Mr. Modi said, India greatly cherishes its historic, multifaceted and deep-rooted ties with Ethiopia. Mr. Modi also reaffirmed his commitment to deepening the bonds of friendship between the people of India and Ethiopia. The Supreme Court today stayed the Delhi High Court order directing premature release of a life-term convict in the 1993 Kolkata Bow Bazaar blast case. A bench comprising Justices P.K. Mishra and Sanjeev Sachdeva gave the interim relief on a plea filed by the West Bengal government, challenging the 5th of June order of the High Court directing forthwith release of the 77-year-old convict Mohammad Rashid Khan. In Gujarat, Aam Aadmi Party MLA Chaitar Vasava may lose his assembly membership following his conviction in an assault and extortion case. Gujarat Legislative Assembly Deputy Speaker Purnesh Modi said that a person sentenced to 2 years of imprisonment cannot legally continue in office and is also barred from contesting elections for 6 years. Chaitar Vasava, his wife Shakuntala Vasava and 8 others were recently convicted by the Rajpipla Sessions Court in connection with a 2023 case involving the assault of Forest Department officials, extortion and offences under the Arms Act. The India Meteorological Department or IMD has issued an orange alert for thunder squall activity with wind speeds likely to reach 60 to 70 kilometers per hour over Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Delhi NCR today witnessed a sudden spell of intense weather as heavy rainfall, dust storms and strong winds swept across the region. Heavy rainfall conditions are likely over Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Madhya Maharashtra, Odisha, Telangana, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the next 2 to 3 days. Meanwhile, IMD said heat wave conditions are likely to persist over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha during the next 2 to 3 days. In hockey, India defeated Pakistan 4-3 in the thrilling FIH Men's Pro League 2025-26 clash in London a short while ago. Pakistan took a shock lead against the run of play in the first quarter as Ahmed Nadeem scored after a penalty corner. After squandering a number of penalty corners, India finally equalized in the second quarter, courtesy Abhishek Nain's goal. Neelakanth Sharma scored soon after to give India the lead. Sujit Singh added India's third goal with a superb strike. Rajinder Singh sealed the win with a brilliant drag flick from a penalty corner in the fourth quarter. Shakil Moeen and Abu Mahmood scored the other two goals for Pakistan. In the FIFA World Cup, Portugal will face Uzbekistan in a Group K fixture at Houston in US, with Cristiano Ronaldo's side aiming to bounce back after being held to a draw in their opening match. The match will begin at 10:30 p.m. Indian time. In Group L, England will take on Ghana in a highly anticipated clash in Boston at 1:30 a.m. India finished another successful day at the ISSF Junior World Championship, with the country's shooters adding 3 more medals including 2 silver and 1 bronze to the tally in Zoll, Germany. Shiva Narwal won the silver in the men's 10-meter air pistol junior event with an impressive performance, while Yuprataap Singh Rathor claimed the bronze in the same event, ensuring a double podium finish for India. India also secured a silver in the men's 10-meter air pistol junior team event. With these 3 medals, India's overall tally has risen to 15, comprising 5 gold, 3 silver and 7 bronze. India and the US opened high-level trade talks today to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in US tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met US Trade Representative Jamie Sengrea and US Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi. Benchmark domestic equity indices declined sharply by 1.2% today, mirroring losses across global markets. We have a report.
9: Sensex plunged by 893 points to close at 76,201, while Nifty shed 279 points to settle at 23,824. In the foreign exchange market, the rupee depreciated by 6 paise to close at 94 rupees and 74 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.1% down at 1,46,870 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% lower at 2,28,370 rupees per kilogram a short while ago. With Intikab's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
5: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amritraj, actors Mammootty and R. Madhavan and Singh Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
10: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुताल्लिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एनिनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निपटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात के इनका से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मुकाबले में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया है। और फीफा आलमी कप में ह्यूस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुताल्लिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजी से लाहक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वजीर आजम मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ्त, आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक को अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के आईएएस के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानिब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को यह कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदबो तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को समाजी काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
11: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। سابق ٹینس کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتھی اور پلے بیکس گلوکارہ الکا یاگنک سمیت سات لوگوں کو پدم بھوشن سے نوازا گیا ہے۔ سیاستداں شبو سرین کو بعد از مرگ پدم بھوشن دیا گیا ہے۔ 57 افراد کو پدم شری ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے، جن میں کرکٹ کھلاڑی

0: तूफानों की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निमटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात की निकास से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: This is Akashwani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on key highlights and takeaways from Niti Aayog's Trade Watch Quarterly Report. The participants are A.K. Bhattacharya, Economic Analyst, and Arjun J. Chaudhary, Anchor.
2: I'm joined by A.K. Bhattacharya, and today's topic of discussion is on Niti Aayog Trade Watch Quarterly Report, which is an analysis and monitor of real-time trends in the India international trade. AKB, to begin with, let's try and understand what Niti Aayog is doing with this Trade Watch quarterly report to inform everyone around in terms of what our trade performance is for the quarter. How do you see this report beneficial for
3: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 9:31 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं कवि गोष्ठी। इस कवि गोष्ठी में शामिल हैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडे, श्री उदय प्रकाश सक्सेना, श्री रामकिशोर वर्मा और हैं श्री जितेंद्र कुमार सक्सेना। लीजिए सुनिएगा इन सभी के स्वर में कार्यक्रम कवि गोष्ठी।
4: मैं महेंद्र प्रताप पांडे नंद, यहाँ पर विशेष गोष्ठी के लिए पधारे हुए कवि उदय प्रकाश सक्सेना जी अस्त, श्री रामकिशोर वर्मा जी और श्री जितेंद्र कुमार सक्सेना जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, राष्ट्र अर्चन अर्थात राष्ट्र की वंदना और राष्ट्र ही सर्वप्रथम मेरे लिए सब कुछ होता है। राष्ट्र अर्चन के प्रथम पुष्प श्री उदय प्रकाश सक्सेना अस्त जी को मैं उनकी कविताओं के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ। एक सैनिक की कल्पना क्या होती है, उसको किसी कवि ने लिखा है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपने तों लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बातों को तरसता छोड़ आया हूँ। आइए सुनते हैं श्री उदय प्रकाश सक्सेना अस्त जी को।
5: एक मुक्तक देखें, नाटकों में हमेशा अटकते रहे, नाटकों में हमेशा अटकते रहे, मोह की वादियों में भटकते रहे, नाटकों में हमेशा अटकते रहे, मोह की वादियों में भटकते रहे। सर्द मौसम की जब से विदाई हुई, अरगला की तरह हम लटकते रहे। कि नाटकों में हमेशा अटकते रहे, मोह की वादियों में भटकते रहे, और सर्द मौसम की जब से विदाई हुई, अरगला की तरह हम लटकते रहे। दूसरा मुक्तक देखें कि जरूरत आन पड़ती है तभी मुझको बुलाते हैं, जरूरत आन पड़ती है तभी मुझको बुलाते हैं, और बुरा मत मानिए जो इस तरह नाता निभाते हैं। अचानक गुल हुई बिजली, अंधेरा छा गया घर में, उपेक्षित मोमबत्ती को तभी घर में जलाते हैं। जरूरत आन पड़ती है तभी मुझको बुलाते हैं, बुरा मत मानिए जो इस तरह नाता निभाते हैं। अचानक गुल हुई बिजली, अंधेरा छा गया घर में, उपेक्षित मोमबत्ती को तभी घर में जलाते हैं। एक मुक्तक और देखें, नफरतों से प्यार बढ़ता जा रहा है, नफरतों से प्यार बढ़ता जा रहा है और दर्द का आकार बढ़ता जा रहा है, नफरतों से प्यार बढ़ता जा रहा है और दर्द का आकार बढ़ता जा रहा है, और सारे रिश्तों की हवा निकली हुई है, सारे रिश्तों की हवा निकली हुई है, हवा का व्यापार बढ़ता जा रहा है। एक मुक्तक और देखें, दर्द में डूबकर मुस्कुराते रहे, सब गमों को गले से लगाते।

0: रहे, दर्द में डूब कर मुस्कराते रहे, सब गमों को गले से लगाते रहे, और कैद बेशक अंधेरों ने हमको किया रेडियम की तरह मुस्कराते रहे, कैद बेशक अंधेरों ने हमको किया रेडियम की तरह मुस्कराते रहे, दर्द में डूब कर मुस्कराते रहे, सब गमों को गले से लगाते रहे, कैद बेशक अंधेरों ने हमको किया रेडियम की तरह जगमगाते रहे। एक मुक्तक और देखें कि त्रस्त सब धड़कने मस्त होने लगे, त्रस्त सब धड़कने मस्त होने लगे, और प्यार के शत्रु भी पस्त होने लगे, त्रस्त सब धड़कने मस्त होने लगे, और प्यार के शत्रु भी पस्त होने लगे, और ऐसी नजरें मिलाकर धमाका करो नफरतों के किले ध्वस्त होने लगे, नफरतों के किले ध्वस्त होने लगे। मालिक से एक प्रार्थना है, देखें आप क्या चाहता हूं मैं, कि थोड़ी प्रीत निभाओ मालिक, मुझको गले लगाओ मालिक, थोड़ी प्रीत निभाओ मालिक, मुझको गले लगाओ मालिक, रूठी खड़ी द्वार पर खुशियां, अंदर उन्हें बुलाओ मालिक, थोड़ी प्रीत निभाओ मालिक, मुझको गले लगाओ मालिक, और रूठी खड़ी द्वार पर खुशियां, अंदर उन्हें बुलाओ मालिक, और चढ़ी गोद में इच्छाओं को, चढ़ी गोद में इच्छाओं को गहरी नींद सुलाओ मालिक, थोड़ी प्रीत निभाओ मालिक, कुंवारी मौन जरूरत जो भी, कुंवारी मौन जरूरत जो भी, उसका ब्याह रचाओ मालिक, इतनी प्रीत निभाओ मालिक, रहे चित्त पर सदा चढ़ाही ऐसा राग सुनाओ मालिक, रहे चित्त पर सदा चढ़ाही ऐसा राग सुनाओ मालिक, और उड़ ना जाए दिल का पंछी दाना इसे खिलाओ मालिक, उड़ ना जाए दिल का पंछी दाना इसे खिलाओ मालिक, और सांसों की सरगम संग नाचे, सांसों की सरगम संग नाचे ऐसी तड़प जगाओ मालिक, सांसों की सरगम संग नाचे ऐसी तड़प जगाओ मालिक, सहज रहूं मैं हर हालत में इतना सरल बनाओ मालिक, सहज रहूं मैं हर हालत में इतना सरल बनाओ मालिक, और अंतिम यही निवेदन मेरा अपनी तरह बनाओ मालिक, और अंतिम यही निवेदन मेरा अपनी तरह बनाओ मालिक, इतनी प्रीत निभाओ मालिक, मुझको गले लगाओ मालिक।
1: इसके बाद मैं बड़े आदर के साथ श्री जितेंद्र कुमार सक्सेना जी को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदनी माँ को न भूलो, राग में जब मत झूलो, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो, और जब हृदय का तार बोले श्रृंखला के बंद खोले, हो जहाँ बलिशीस अगणित एक सिर मेरा मिला लो। आइए इन पंक्तियों के साथ सुनते हैं श्री जितेंद्र कुमार सक्सेना जी को।
2: प्रस्तुत है राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत मुक्तक, सब्र का फल आप खाकर तो देखो, सब्र का फल आप खाकर तो देखो, जिंदगी में मुश्किलें उठाकर तो देखो, जिंदगी में मुश्किलें उठाकर तो देखो, रब कभी नहीं करता किसी से भेदभाव, रब कभी नहीं करता किसी से भेदभाव, मादरे वतन से दिल लगा कर तो देखो, मादरे वतन से दिल लगा कर तो देखो, मादरे वतन से दिल लगा कर तो देखो। दूसरा मुक्तक, पतंग बनकर ऊंची उड़ान भरना मेरा सपना है, पतंग बनकर ऊंची उड़ान भरना मेरा सपना है, नेक बन खिदमत खल करना मेरा सपना है, नेक बन खिदमत खल करना मेरा सपना है, समाज का हक फर्ज समझ अदा करते रहो नंदा, समाज का हक फर्ज समझ अदा करते रहो नंदा, दूसरे का दुख दर्द बांट राष्ट्र सेवक बनना मेरा सपना है, दूसरे का दुख दर्द बांट राष्ट्र सेवक बनना मेरा सपना है, दूसरे का दुख दर्द बांट राष्ट्र सेवक बनना मेरा सपना है। अगला मुक्तक प्रस्तुत है, मैं बोलूं तो समझो मेरा अहम बोलता है, मैं बोलूं तो समझो मेरा अहम बोलता है, बोलने से पहले 100 बार तोलता है, मैं बोलूं तो समझो मेरा अहम बोलता है, बोलने से पहले स्वभाव तोलता है, कहीं कोई राष्ट्रभक्त मर्यादा तोड़े, कहीं कोई राष्ट्रभक्त मर्यादा तोड़े तो मैं नहीं बल्कि मेरा हंस रोता है, तो मैं नहीं बल्कि मेरा हंस रोता है, तो मैं नहीं बल्कि मेरा हंस रोता है। प्रस्तुत है अगला मुक्तक। मानव जीवन संवेदनाओं से भरा होता है, मानव जीवन संवेदनाओं से भरा होता है, दूसरे का दुख दर्द देख हृदय द्रवित होता है, दूसरे का दुख दर्द देख हृदय द्रवित होता है। राष्ट्र सेवा हेतु आत्मसमर्पण करो नंदा, राष्ट्र सेवा हेतु आत्मसमर्पण करो नंदा, बाद मरने नाम पत्थरों पर लिखा होता है, बाद मरने नाम पत्थरों पर लिखा होता है, बाद मरने नाम पत्थरों पर लिखा होता है। मानव जीवन संवेदनाओं से भरा होता है। प्रस्तुत है अगला मुक्तक। श्रद्धा और सबूरी अपना कर तो देखो, श्रद्धा और सबूरी अपना कर तो देखो, प्रेम और सौहार्द बढ़ाकर तो देखो, श्रद्धा और सबूरी अपना कर तो देखो, प्रेम और सौहार्द बढ़ाकर तो देखो, नफरतों के बीज बोने से क्या फायदा, नफरतों के बीज बोने से क्या फायदा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर तो देखो, राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर तो देखो। प्रस्तुत है एक राष्ट्रभक्ति गीत। रहोगे न हित कर वतन रास्ते में, रहोगे न हित कर वतन रास्ते में, तो कैसे बहेंगे पवन रास्ते में, तो कैसे बहेंगे पवन रास्ते में, तो कैसे बहेंगे पवन रास्ते में।

में तो कैसे सजेंगे, चमन रास्ते में तो कैसे सजेंगे। भवन एक तेरा

0: क्यों हो रहा है अब चमन वीरान मेरे देश का, क्यों हो रहा है अब चमन वीरान मेरे देश का। अब हर कोई मतलब पर से बैठा, अपने आंखें बंद किए, अब ना जाने कैसे होगा कल्याण मेरे देश का, अब ना जाने कैसे होगा कल्याण मेरे देश का, अब ना जाने कैसे होगा कल्याण मेरे देश का, अब ना जाने कैसे होगा कल्याण मेरे देश का।
1: राष्ट्ररचन के इसी क्रम में बालकृष्ण शर्मा नवीन को याद करते हुए मैं बड़े आदर के साथ साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर श्री राम किशोर वर्मा जी को काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करूंगा। कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवल सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। श्री राम किशोर वर्मा जी को सुनते हैं।
2: प्रस्तुत है मेरी रचनाएं, पहले कुंडलिया प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। मेरे मन की कामना बढ़े विश्व में प्यार, मेरे मन की कामना बढ़े विश्व में प्यार, सब में ही सौहार्द हो मानवता आधार, मानवता आधार कर्म का गाढ़ो झंडा, और सुखी रहे सब लोग श्रेष्ठ है ये ही फंडा, भेद भाव को त्याग छोड़ दे मेरे तेरे, भेद भाव को त्याग छोड़ दे मेरे तेरे, मैं हूं सबके साथ विश्व के सारे मेरे, मैं हूं सबके साथ विश्व के सारे मेरे। दोहे प्रस्तुत करता हूं कुछ। भगत सिंह सुखदेव को सशत करूं प्रणाम, राजगुरु बलिदेव तो जन जन में है आम, बलिदानों से ही मिला आजादी का स्वाद, इसके आगे कुछ नहीं सारे बाद विवाद, कितने तो गुमनाम हैं बलिदानी बहुबीर, कितने तो बलिदान हैं बलिदानी बहुबीर, उनको भी करता नमन आंखों में भर नीर, उनको भी करता नमन आंखों में भर नीर, और बलिदानी जो भी हुए उनकी रखिए लाज, बलिदानी जो भी हुए उनकी रखिए लाज, भारत माँ के दूत सब अच्छे करिए काज, भारत माँ के दूत सब अच्छे करिए काज। ये कुछ दोहे थे, रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। भारत के वर्तमान के परिदृश्य में है गणतंत्र बचाना तो घर का मंथन करना होगा, है गणतंत्र बचाना तो घर का मंथन करना होगा, आज तीन के सांपों को पहले बाहर लाना होगा, अब बाहर वाले का साहस क्या जो सीमा में घुसाए, बाहर वाले का साहस क्या जो सीमा में घुसाए, चाहे लालच या मृत्यु भय इसे त्याग बढ़ना होगा, है गणतंत्र बचाना तो घर का मंथन करना होगा, हिंदू मन में है राम बसा मुस्लिम मन में रहमान बसा, धर्म के ठेकेदारों को मानवता पर चलना होगा, और है गणतंत्र बचाना तो घर का मंथन करना होगा, जब अभिव्यक्ति आजादी है ना संविधान ही भारी है, जब अभिव्यक्ति आजादी है ना संविधान ही भारी है, फिर भी ना झलके देश प्रेम तो देश द्रोही कहना होगा, और है गणतंत्र बचाना तो घर का मंथन करना होगा। अंतिम पद है, जिस धरती पर है जन्म लिया उसने हमको सब कुछ है दिया, जिस धरती पर है जन्म लिया उसने हमको सब कुछ है दिया, ऐसा जो उसका ऋणी नहीं, ऐसा जो उसका ऋणी नहीं, बस ऐसों को चुनना होगा, और है गणतंत्र बचाना तो घर का मंथन करना होगा, आस्तीन के सांपों को पहले बाहर लाना होगा, आस्तीन के सांपों को पहले बाहर लाना होगा। एक गीतिका के रूप में है, प्रस्तुत है एक गीतिका, हमारे देश से संबंधित, हमारा देश कहां से कहां पहुंचा उस पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, सुनिए। चांद पर जाकर तभी हम कुछ कदम चलने लगे, चांद पर जाकर तभी हम कुछ कदम चलने लगे, देख कर सारे जहां के लोग फिर जलने लगे, देख कर सारे जहां के लोग फिर जलने लगे, स्वप्न पूरे कर रहे हम अक्ल से भी कर्म से, स्वप्न पूरे कर रहे हम अक्ल से भी कर्म से, क्या हुआ है लोग इस पर हाथ को मलने लगे, क्या हुआ है लोग इस पर हाथ को मलने लगे, गुण सदा से रूप पर भारी पड़ा है मानिए, गुण सदा से रूप पर भारी पड़ा है मानिए, कोकिला हो हम

0: सफर अब स्वप्न यह पलने लगे, कोकिला हो हम सफर अब स्वप्न यह पलने लगे, नौकरी घर बार छोटा और सब आराम हो, नौकरी घर बार छोटा और सब आराम हो, ढूंढते ही ना रहे जो उम्र ही ढलने लगे, ढूंढते ही ना रहे जो उम्र ही ढलने लगे, और शिष्य गुरु को सर्वदा देता बहुत सम्मान है, शिष्य गुरु को सर्वदा देता बहुत सम्मान है, आज शिक्षा ग्रहण कर गुरु से उन्हें छलने लगे, आज शिक्षा ग्रहण कर गुरु से उन्हें छलने लगे, ताप फिर यूं बढ़ गया तो ग्लेशियर गलने लगे, ताप फिर यूं बढ़ गया तो ग्लेशियर गलने लगे। अंतिम इसका मिश्रा है, पद है, जो भरा हो अहम से मत राय उसको दीजिए, जो भरा हो अहम से मत राय उसको दीजिए, हो सके है राय उसके अहम को खलने लगे, हो सके है राय उसके अहम को खलने लगे, चांद पर जाकर तभी हम कुछ कदम चलने लगे, देखकर सारे जहां के लोग फिर जलने लगे, देखकर सारे जहां के लोग फिर जलने लगे। कैमुकरी की विधा में सुनिएगा, सब में जोश बढ़ा देता है, सब में जोश बढ़ा देता है, सभी धर्म का वह नेता है, सबको रखता है वह चंगा, क्या सखी साजन नहीं तिरंगा, क्या सखी साजन नहीं तिरंगा। दूसरी कहमुकरी, जिसको रहा जान से प्यारी, दिल से की थी उससे प्यारी, और युवा अवस्था की बर्बादी, क्या सखी प्रेमी ना आजादी, क्या सखी प्रेमी ना आजादी। तीसरा कहमुकरी है, धर्म कभी ना आड़े आया, तन मन धन सर्वस्व लुटाया, धर्म कभी ना आड़े आया, तन मन धन सर्वस्व लुटाया, ना आपस में कोई विद्वेष, क्या सखी साजन ना भारत देश, क्या सखी साजन ना भारत देश।
1: श्रोताओं, साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्र की अर्चना बहुत की है, राष्ट्र अर्चन की इस कड़ी में मैं भी सम्मिलित हो रहा हूँ। महेंद्र प्रताप पांडे नंद मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा को याद करते हैं। करगिल के वीर जवानों को शत शत वंदन, शत शत वंदन, करगिल के वीर जवानों को शत शत वंदन, शत शत वंदन, है कोटि नमन माँ भारती को, है कोटि नमन चंदन वंदन, जो माँ की कोख में जन्म लिए, माँ के खातिर ही पले बढ़े, माँ को ही गर्वित करने को साहस के पथ पर बढ़े चढ़े, और पालमपुर के विक्रम बत्रा ने दुश्मन को जब झकझोर दिया, छीना मशीन गन दुश्मन का नारा दिल मांगे मोर दिया, इन शब्दों की ताकत से बल बल मिलता मिलता बहुत जोश, वह शेर शाह कहलाता था, कायम है उसका अमर घोष, मरणोपरांत माँ के सुत को था मिला उसे परमवीर चक्र, IMA मानिक्षा बटालियन था हिमाचली वह सपूत, और ड्रास को दुश्मन हीन किया बलिदान हो गया परमपूत। और 10 मई 1980 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में जन्म लिए सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र से सम्मानित। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश जो जन्म लिया सत्कर्म किया, 1980 में जन्मा निज सेना सेवा कर्म किया, 18 गोली खाकर भी जिंदा रह भारत माँ बोला, निष्क्रिय जब बायां हाथ हुआ दाएं से फेंक रहा गोला, कितने दुश्मन मारे उसने कितनों को दूर भगाया था, वह था योगेंद्र सिंह यादव जो टाइगर हिल पर छाया था, 19 की वय में ही तुमने दुश्मन का सीना दिया चीर, अधरती माँ तुम पर गर्वित है सरकार चक्र दी परमवीर, हे माँ वसुधा के दिव्य पोत, हे माँ वसुधा के दिव्य पूत, गर्वित है तुम पर यह नगेंद्र, है कोटिन मन वंदन तुमको अति गर्वित तुम पर कवि महेंद्र, नायब सूबेदार जोगेंद्र टाइगर हिल का था रखवाला, 17,000 फिट के ऊपर जा बंकर खाली करवा डाला, तेरे माता भ्राता पित को हम सब नित शीश झुकाते हैं, हे माँ वसुधा के दिव्य ललन हम गीत तुम्हारे गाते हैं। ऐसे ही परमवीर चक्र से अलंकृत राइफलमैन संजय कुमार, जिनका जन्म 3 मार्च 1976 विलासपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था, था जवान संजय कुमार जो राइफलमैन कहता था, पहले दिल्ली में रहकर जो टैक्सी रोज चलाता था, सेना की भर्ती होती थी हर बार प्रयासी रहता था, 3 बार असफल रहकर सेना ही जाऊं कहता।

0: था। चौथी बार सफल होकर वह हिमाचल का नाम किया, मस्को वैली के पॉइंट पर था, बहुत बड़ा वह काम किया। 11 साथी थे शहीद और घायल जब हो गए 8, और 3 गोलियां संजय को दुश्मन ने मारी करी घात। अपनी चिंता को छोड़ दिया, ललकार पड़ा वह अरिदल पर, और दुश्मन भागे गन छोड़ वहां, आश्चर्य हुआ उसके बल पर। इनकी तू गोली खत्म हुई, दुश्मन की गोली काम किया, दुश्मन की करी सफाई, वह भारत माँ का नाम किया। परम वीर चक्र उसका था, अलंकरण सम्मान बना, करगिल में विजय पताका का ऐसा इतिहास सुनाम बना। थे अन्य बहुत से वीर जिन्होंने अपने तन मन का दान किया, केवल माँ के रक्षा के हित निज प्राणों का बलिदान किया। वह अमर पूत माँ भारत के करते हैं हम उनका चंदन, वह अमर पूत माँ भारत के करते हैं हम उनका वंदन, यह सुषमा राजित भारत माता करती वीरों का अभिनंदन। और ऐसे ही 25 जून 1975 सीतापुर उत्तर प्रदेश में जन्म लिए गोरखा राइफल रेजिमेंट के हीरो वाह बटालिक के नाम से जाने जाने वाले, जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। उत्तर प्रदेश सीतापुर की यह धरती वीरों वाली है, जिसने निज अंक में प्यार सहित पांडे मनोज को पाली है। उत्तर प्रदेश सीतापुर की यह धरती वीरों वाली है, जिसने निज अंक में प्यार सहित पांडे मनोज को पाली है। गोरखा राइफल में जाकर के माँ को वह शीश झुकाए थे, भले प्राण की आहुति दी पर घुसपैठी दूर भगाए थे। वीरों का होता मरण नहीं, वे सदा ही पूजे जाते हैं, और बनकर के आदर्श देश की याद सदा ही आते हैं। वीरों का होता मरण नहीं, वे सदा ही पूजे जाते हैं, बनकर के आदर्श देश की याद सदा ही आते हैं। परम वीर को पाने वाला परम वीर था वह मनोज, मरणोपरांत सम्मान मिला करतल ध्वनि में ना करें वोज। 25 दिसंबर 1970 नैनीताल उत्तराखंड में जन्म लिए मेजर राजेश सिंह अधिकारी, जिनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। विजय युद्ध का सप्तम हीरो का भी थोड़ा सुनिए हाल, विजय युद्ध का पंचम हीरो का भी थोड़ा सुनिए हाल। 1970 में जन्मा जनपद जिसका नैनीताल, माँ साहस शौर्य पराक्रम की गाथाएं जहाँ पे गाती हैं, उत्तराखंड की पावन धरती यह देवभूमि कहलाती है। हर घर में सैनिक बसता है, वह देश देश चिल्लाता है, बेटे की उंगली पकड़ पिता सेना की कथा सुनाता है। जिस देश में हमने जन्म लिया और अन्न जहाँ का खाते हैं, उसके खातिर ही तन मन धन हम उसी पे मर मिट जाते हैं। ऐसा ही मेजर था राजेश, वह सिंह भी था अधिकारी था, टोलोलिंग शिखर पर देख शत्रु मन क्रोध बहुत ही भारी था। गोली का गोली से जवाब देना भी उसको आता था, बचपन से वीरों की गाथा सुनना भी उसको भाता था। जब एक लगी गोली उसको तो उसने शतक प्रहार किया, जब एक लगी गोली उसको तो उसने शतक प्रहार किया, लेकर टुकड़ी को भांति भांति दुश्मन पे हजारों वार किया। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं जिनके सुन रहे कहानी है, गर खून आपका ना खोला तो समझो बिल्कुल पानी है। महावीर चक्र से सम्मानित लांस नायक मेजर विवेक गुप्ता, जिनका जन्म 2 जनवरी 1970 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। कर्नल VRS गुप्ता के आंखों की पुतली प्यारा था, मेजर पद पर सेवा उसकी यह वीर विवेक दुलारा था।
1: अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी। कवि गोष्ठी में शामिल थे डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडे, श्री उदय प्रकाश सक्सेना, श्री राम किशोर वर्मा और जितेंद्र कुमार सक्सेना। कवि गोष्ठी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेल दर्पण, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। अब से बस कुछ ही देर में।

0: खेल दर्पण के सभी श्रोताओं को संजय जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, आज बारी है आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रस्तुति की, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे ताइक्वांडो में सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट और स्थानीय स्टेडियम अल्मोड़ा में ताइक्वांडो कोच साथ ही नेशनल रेफरी वंदना सिंह से। इसके अलावा 13 जूनियर एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे अखिलेश सिंह से, जो अब सीनियर टीम के लिए प्रयासरत हैं। इस माह 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस भी मनाया गया और एडवेंचर स्पोर्ट्स में माउंटेन बाइकिंग के लिए जाने जाने वाले साइक्लिस्ट भारत भूषण शाह यानी भरत शाह, जो कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भी प्रतिभाग कर चुके हैं, वो सीनियर सिटीजन होने के बावजूद माउंटेन बाइकिंग का लुफ्त उठा रहे हैं। वंदना सिंह द्वारा प्रशिक्षित बच्चों ने 13वीं नेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो हल्द्वानी में आयोजित हुई थी, उसमें उनके द्वारा प्रशिक्षित 8 बच्चे मेडल विजेता रहे। एक खिलाड़ी से कोच और फिर रेफरी तक के सफर पर जानते हैं उनकी इस यात्रा को। आप स्वयं एक खिलाड़ी भी रही हैं।
1: जी जी।
0: और खिलाड़ी से कोच तक का क्या सफर रहा आपका?
1: खेलना मेरा मतलब पैशन था, मैं भी चाहती थी कि मैं ओलंपिक तक खेलूं। मैंने 2018 में लास्ट इवेंट खेला था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली थी मैंने, जिसमें मेरा मेडल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने जो कोचिंग है वो अब 2022 में मैं जो है स्टेडियम अल्मोड़ा स्टेडियम में लग चुकी थी। 2022 से मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करा, आज करीब उनको 3 साल हो चुके हैं। तो ये उन लोग मेरे बच्चों के लिए पहला नेशनल था, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। मेरे 15 बच्चे गए थे जिसमें से मेरे 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहे उसमें। बहुत ट्रेन अभी उनको करना है मैंने।
0: एज ए खिलाड़ी से आप कोच बनी, तो कोचिंग के लिए क्या क्या परेशानी आपको शुरू में फेस करनी पड़ी अल्मोड़ा में?
1: ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी हमें सब देती है। हमें बच्चों के लिए मैट प्रोवाइड करेगी, जो हमारी मैटें होती हैं वो करीब 1-1.5 लाख रुपए की भी मिलती है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बस हमें ट्रेन कराना पड़ा थोड़ा, बच्चों का पढ़ाई से और पेरेंट्स को हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है
0: जी।
1: इसके लिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डालिए, जरूरी नहीं है उसका बच्चा जो है मेडल ही जीते, वही उसका एक अचीवमेंट है। बच्चा फिट रह रहा है, कोई गलत रास्ते में नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कोच को देखना पड़ता है। सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को मेडल लाके देना ये जरूरी नहीं है।
0: वैसे तो कहें कि ताइक्वांडो जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है, और खासकर बालिकाओं को अगर हम देखा जाए तो मैं इस स्पोर्ट्स को ज्यादा सीखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अल्मोड़ा में अधिकतर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कई एकेडमीज भी है जो कि बच्चों को ट्रेन कर रही है। आपके अंडर में जो बच्चे हैं इस वक्त, तो उनको कितना टैलेंटेड आप देखती हैं?
1: अब मैं सच बताऊंगी आपको, अभी जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उसमें मेरे पास गर्ल्स की ही स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अभी जो 15 बच्चे जो खेलने गए थे उसमें जो मेडल है वो सारी गर्ल्स है। जो हमारा गेम है एकदम उसमें ऐसा होता है कि जितना बच्चा छोटे से स्टार्ट करता है
0: जी,
1: वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। कोई एक बड़ा बच्चा आके, यानी कि 15-16 ईयर्स का आके, मुश्किल है कि वो एकदम उसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहे, वो उसको गेम को कर सके। तो छोटे से बच्चा जो है हमारे पास शुरू करता है, और गर्ल्स उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। गर्ल्स हम ऐसा नहीं करते, फाइट जब प्रैक्टिस होती है तो गर्ल्स और बॉयज दोनों की हम कराते हैं, तो गर्ल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसके इसमें खेलने के लिए और अपना आत्मरक्षा के लिए। तो ये है ही अच्छी चीज।
0: आजकल के माँ बाप चाहते भी कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा करें, और खासकर मैं देखता हूँ कि 3-4 बजे के बाद अक्सर एकेडमीज की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम लोग। तो स्टेडियम में क्या रूटीन रहता है बच्चों को सिखाने का?
1: 2 घंटा हमें सुबह दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल जो आप देख रहे हैं कि समर टाइम चल रहा है, तो बच्चों की स्कूल्स हैं वो 6:30 से उनकी स्कूल बसें ये आ जाती है। अगर वो मॉर्निंग में नहीं आ पाते, मैं उन्हें इवनिंग में ज्यादा से ज्यादा टाइम देती हूँ, और प्लस संडे को मैं उन्हें मॉर्निंग में बुला के उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो हमारा जो रूटीन रहता है वैसे वो मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स हम बच्चों को देते हैं।
0: तो कितने बच्चों की एक स्ट्रेंथ आपके पास रहती है?
1: एक्चुअली मेरे पास 50+ तो हो ही जाते हैं बच्चे, लेकिन उसमें से बस यही होता है कि स्टार्टिंग में तो सब बच्चे आ जाते हैं, लेकिन उस प्रैक्टिस को हर कोई झेल नहीं पाता। तो कुछ बच्चे उसमें या तो बोर हो जाते हैं, या उनके हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की कोई चीजें आती है, फिर कुछ बच्चे जो है उसमें से छूट भी देते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 30-35 चिल्ड्रंस जो है हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं, जो कि आज मेरे पास 3 साल से लगातार है।
0: मतलब 30-35 बच्चों को आप आराम से एट ए टाइम कोचिंग दे सकते हो? आप अब बच्चे आपके पास कोचिंग करने आ रहे हैं, अब उनका एक डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कुछ ना कुछ डाइट होगी। तो माँ बाप को भी आप बताते होंगे कि किस तरह की डाइट आपके बच्चों को देनी है। जैसे मैं शुरू करूँ कि आपके पास सात या आठ साल के बच्चे से शुरुआत आप करते हैं?
1: पांच साल
0: से
1: जी।
0: तो आप ये मान लीजिए तो सबके लिए डाइट प्लान भी एक अलग अलग रहता होगा।
1: बिल्कुल पहले तो आजकल यही समझाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको बाहर की चीजों के लिए आप अवॉइड करवाइए, जो भी आजकल बाहर चूस चॉकलेट चिप्स वगैरह बच्चे खाते, पहले तो इसे ही आप मत कीजिए, यही बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद जो डाइट है, तो मैं ये कहूंगी कि उसमें बच्चों को एग वगैरह इस टाइप की चीजें उसमें आप उसको प्लस करिया करिए। कुछ बच्चों को 2 किलो वेट कम करना है तो उनको हमें डाइट बतानी पड़ती है कि आप 2 किलो जो है एट अ टाइम आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप वो कंटिन्यू मेरे पास प्रैक्टिस में है, उसको क्या डाइट खानी है मॉर्निंग में क्या नहीं खाना है, तो ये चीजें हमने उनके पेरेंट्स को सब बताई हुई है।
0: ट्रेनिंग की बात आती है तो किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर आप देती है?
1: मैं हूँ क्योर्गी, हमारी अब जो टाइकोंडो है ना वो 2 इवेंट में डिवाइड हो चुका है, एक होता है क्योर्गी एक होता है पुंसे। तो एक्चुअली मैंने ही क्योर्गी ही खेला है तो मैं क्योर्गी ही उनको खिलाती हूँ। क्योर्गी मीन्स होता है फाइट
0: जी।
1: तो फाइट के लिए हमें जरूरी है किक और पंच का आना। तो स्टार्टिंग में बेसिक उनका यही रहता है कि मैं उनको कैसे भी करके उनकी किक इंप्रूव करूं, जिसमें हमें पहले उनको एयर प्रैक्टिस देनी पड़ती है, उसके बाद उनको हमने किक पैड में प्रैक्टिस करवानी होती है। जब बच्चे इस तरीके के सीख जाते हैं, फुटवर्क सीख जाते हैं, पंच करना सीख जाते हैं, गार्ड करना सीख जाते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल आता है फाइट यानी कि स्पारिंग। तो उसके बाद उन्हें फाइट प्रैक्टिस दी जाती है। जब फाइट प्रैक्टिस में कहां उनको मारना है, कहां कितना स्कोर मिलेगा, जैसे ट्रंक में मारते हैं तो कितना स्कोर मिलेगा, फेस में मारते हैं कितना स्कोर मिलेगा, ये तरीके की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा जब वहां फाइट खेलना शुरू करता है फिर उसके बाद वही उसकी वो किस तरीके से अपने को गार्ड करें, कैसे खेलें, अपने स्कोर कैसे बचाएं और स्कोर कैसे निकालें, ये चीजें बताई जाती है।
0: क्योंकि अब नेशनल्स में आपने बच्चों को खिलाना है तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्सपोजर ही पड़ती है, तो कुछ टूर्नामेंट उनको लोकल में भी खेलने पड़ते होंगे
1: जी।
0: इस तरह की सुविधा यहाँ पर है?
1: जी जी, टूर्नामेंट्स की हमारी पूरी सुविधा है, यहाँ पे हम लोग कराते रहते हैं। हमारे स्टेडियम में भी एक साल में करीब 2 या 3 टूर्नामेंट हम स्टेडियम में ही कराते हैं, और बाकी जिसे आपने बताया कि अभी एकेडमीज है हमारे यहाँ पे, तो हम कभी इंटर यूनिवर्सिटी कभी इस तरीके की हम लोग टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं।
0: आपके जो बच्चे 8 जो मेडलिस्ट निकले अभी 13th ओपन नेशनल चैंपियनशिप में, तो उनमें कौन कौन से बच्चे में आप प्रतिभा देखती हैं कि आगे तक जाएंगे और हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
1: भूमिका जोशी इसमें लड़की का नाम था, सब जूनियर की है, वो करीब 10 या 11 साल की बच्ची है। उसके अंदर एक टैलेंट दिखता है मुझे कि वो बहुत अच्छा कर रही है।
0: आजकल के जमाने में कंडीशनिंग कोचेस का भी है, मेंटल कंडीशनिंग कोचेस का भी है, सब एक ही कोच की
1: जिम्मेदारी है।
0: टूर्नामेंट से पहले जब बच्चा आप ज्यादातर रिंग पर उतरता है तो आप क्या बताती है उनको, क्या कुछ करना होता है?
1: पहले तो हम यही मोटिवेट कराते हैं, आपके सामने खेलने आ रहा है, वो भी आप ही की तरह है, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग करता है, उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं। हमारे बच्चों में पता नहीं, पहाड़ के बच्चों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो बच्चा खेलने से पहले डर जाता है तो हमें उन्हें मोटिवेट बहुत उनको करवाना पड़ता है कि आप डरिए नहीं, आप अपना, मैं बच्चों से ये भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेडल की चिंता करिए, मैं ये चाहती हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हार जीत तो लगी रहती है, कोई इतनी वो इशू नहीं है, लेकिन आप अपना गेम तो बेस्ट दीजिए, आप अपना जो प्रैक्टिस में इतना अच्छा फाइट करते हैं आप वहां जाके उसका 50% भी नहीं दे पाते, तो इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपना गेम बेस्ट कर दीजिए। और खाने से पहले आपने क्या चीज खानी चाहिए, बच्चे जो होते हैं खाने से पहले डर के मारे कुछ खाते नहीं है, हमारे उसमें जो होता है ना सुबह 8 बजे से जैसे शुरू हो जाता है, तो बच्चे की कभी कभी रात को 8 बजे फाइट आती है, तो बच्चा जो है उतनी देर तक अपनी एनर्जी को लॉस कर लेता है और वो डर के मारे अभी खाता नहीं है कि अभी क्या पता मेरा नाम कुछ देर में आ जाएगा इस तरीके से, तो उसकी एनर्जी सुबह से शाम तक तो ऐसे ही लो हो जाती है। तो इस चीज के लिए भी हमें बोलना पड़ता है कि आपको खाना है तो जबरदस्ती आप खाइए उस चीज को।
0: तो वेट तो पहले हो जाते होंगे?
1: नहीं, वेट एक दिन
0: तो
1: पहले,
0: घबराने की बात नहीं है।
1: नहीं, नहीं।
0: अगर आप बच्चा बीच में देख रहा है कि 4-5-6 घंटे वो खाली है तो जरूर उसको भोजन तो कराने।
1: बिल्कुल, ये चीज की मुझे अभी फर्स्ट डे यहाँ देखा मैंने, बच्चे ये नहीं खा रहे थे, सेकंड डे में पेरेंट्स भी वहां पे आए हुए थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा बच्चों ने कल जो है जो मिस्टेक करी थी वो आज नहीं होनी चाहिए, आज इनके लिए बनाना जूस ग्लूकॉन डी जो है इलेक्ट्रॉल्स वगैरह ये चीजें जो है आप रेडी रखिए और इनको देते रहिए आप थोड़ी थोड़ी देर में।
0: टूर्नामेंट के दौरान जब आप टूर्नामेंट खेलने बच्चे जा रहे होते तो उस दौरान की डाइट का क्या रहता है?
1: सबसे पहले तो हमें वेट एक दिन पहले ही वेट हमें देना पड़ता है बच्चों का, कुछ बच्चों ने वेट घटाना होता है कुछ बच्चों ने वेट बढ़ाना होता है, तो जिन्होंने घटाना होता है तो उनकी तो हम खैर एक दिन के लिए हम थोड़ा डाइट उनकी बंदी कर देते हैं, उसके बाद जो है उनको फुल जो है एनर्जी लेवल जिसमें उनकी एनर्जी गेन हो जाए तो हम उनको वो सारी चीजें खाने के लिए बोलते हैं, और जिनको वेट बढ़ाना होता है तो वो लोग अपनी इस तरीके की बनाना और इस टाइप की चीजें खा लेते हैं। तो ये तो हो गया वेइंग से पहले की बात, अब आ जाती है फाइट से, तो उसमें हम उसमें है लाइट जो है आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह या ब्रेड वगैरह या बनाना सबसे बेस्ट है आप वो ले सकते हैं। जिस बच्चे की फाइट आ गई तो उसके बाद वो तो उस नहीं खाएगा दिन का अगर उसका है, या फिर बिल्कुल हल्की डाइट लेगा नॉर्मल, आप इलेक्ट्रोल पी सकते हैं उसमें, इससे IPM की चीजें बोलते हैं, स्पाउट्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे। लेकिन ऐसा होता है ना, हम कहीं बाहर दूर गए तो हमें ये सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं रहती है। अभी जैसे हम गोलापार गए थे, यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था, जो बच्चे होटल में रुके थे इस टाइप की चीजें, और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रुके थे तो हमने उनको यही बोला कि आप अपना लंच जो है आप अपना लेके आइएगा, इस तरीके की चीजें। तो बहुत सी चीजों का हमें प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ जाती है।
0: साथ ही साथ आप एक नेशनल रेफरी भी हैं, अब आप चाहूंगा कि बताएं कि कैसे आपका सफर एक खिलाड़ी से कोच से रेफरी की तरफ गया।
1: खेलते खेलते ही नेशनल रेफरी जो है हमारा कोर्स होता है, इसका सेमिनार अटेंड किया था। फर्स्ट टाइम मैंने लखनऊ में ही इसका सेमिनार जो है अपना अटेंड किया था रेफरीशिप का। हालांकि मैं उस टाइम थोड़ा सा घबराती भी थी सीनियर्स की बॉयज की फाइट में, अगर आप सेंटर रेफरी हैं तो आपका जजमेंट और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो एक रेफरी जो हमारा गेम है हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से किसी की जान जा सकती है। अगर हमें लगा कि कहीं पे एक बंदा शार्प खेल रहा है दूसरा लूज कर रहा है, या हमने अगर धीरे बोला उसको सुनाई नहीं दिया दूसरे ने उसे उतनी देर में किक कर दिया कहीं भी, तो इसका बहुत ज्यादा मतलब एक बच्चे की जान जा सकती है। तो इसलिए इसको रेफरी को बहुत मतलब मैं भी डर रही थी इसमें स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे हमारे जो सीनियर सर थे इसमें AD राजीव सर है बैंगलोर से, वो इंटरनेशनल रेफरी है जो हमारा करवाते हैं, तो उन्होंने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिलाया, उनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो उन्होंने मोटिवेट किया। तो मैंने फर्स्ट सेमिनार तो वहीं पर अटेंड किया, उसके बाद मैं मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, सब जूनियर इवेंट में नेशनल रेफरी के रूप में मैंने वहां पे अपना दिया। लास्ट ईयर हमारे हल्द्वानी में ही दोबारा से ये सेमिनार हुआ, क्योंकि अपडेट होना जरूरी होता है, हमारे रूल्स चेंज हो जाते हैं बीच बीच में तो हमें भी अपडेट होना पड़ता है उस सब चीजों के लिए। 2018 से पहले जो है करीब 3-4 जगह में नेशनल रेफरीशिप कर चुकी हूँ।
0: आपको क्या लगा कि जब आपने एज ए खिलाड़ी के बाद रेफरी आना चुना था तो कितना मतलब कठिन जैसा लगा था कि आपको लगा कि बहुत ये
1: मैं कहूंगी कि सबसे अच्छा मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, मुझे खेलना ही काफी ज्यादा पसंद है। तो मैं जब रेफरीशिप करी तो उसमें एक जगह बैठे रहो, आप ना इधर देख सकते हो ना आप उधर देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल किसी की आप एक स्कोर से आप कोई बच्चा हार सकता है जीत सकता है मतलब बहुत वो है, तो आपको बहुत उसमें फोकस करना पड़ता है और बिल्कुल आप बंधे रहते हैं। रेफरी का अच्छा है लेकिन एज अ प्लेयर मैं कहूंगी कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।
0: तो आने वाले समय आप उत्तराखंड के लिए ताइक्वांडो में कैसा देखती हैं, कोच होने के नाते मैं जानना चाहूंगा।
1: कि हमारा जो अल्मोड़ा है वो पहले से ही शुरू से ही ताइक्वांडो में काफी अच्छा रहा है। आपने सुना होगा 2004 में हमारे सुरेंद्र भंडारी सिंह दादा सर है जो काफी सीनियर है, वो भूषान से एशियन गेम्स में मेडल लेके आए थे, तो वहीं से हमारा जो है ताइक्वांडो जो है अल्मोड़ा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। और काफी टाइम बाद हमारा फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था, हालांकि दौराहाट में भी हमारी यहाँ पे चलती है, उनके भी काफी सर है हमारे विजय सर, उनके भी बच्चे काफी अच्छा करते हैं, अच्छा रिजल्ट है, हर जगह जॉब में भी निकलते हैं, अच्छा रहा है। और मैं चाहूंगी कि ऐसे ही जैसे सुरेंद्र भंडारी सर ने हमारे अल्मोड़ा का नाम इतना रोशन किया, ऐसे ही हमारे बच्चे जो है आगे नाम रोशन करते रहे, यहाँ से भी हमारे बच्चे निकले अल्मोड़ा का नाम रोशन करें।
0: तो हम ये कहेंगे कि आप इसको एक व्यवसाय के रूप में भी चुन सकते हैं, आपका कैरियर भी इसमें बन सकता है, आप अगर शौकिया खेलते भी हैं खेल खेल से भी आप आगे भी जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारी बच्चियों से कि वो इस खेल को कितना अपनाए?
1: ये मत देखिए कि आप देश के लिए मेडल ला रहे हैं, हमारे पास आते बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन बनता कोई एक ही है, तो हम उनको एक अच्छी दिशा में एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं। जो बच्चे बड़े होते हैं आजकल गलत संगत में जा रहे हैं, नशे की तरफ को जा रहे हैं, तो बच्चे का एक फोकस रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज करनी है, मैं फिट, मुझे फिट रहना है, मुझे ऐसी चीजों में ध्यान नहीं देना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है, तो बच्चा जो है उधर ही की ओर अग्रसित होगा, उसका ध्यान जो है भटकेगा नहीं। और दूसरी तरफ रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जैसा आपने बताया, बच्चा जब यहाँ से स्कूलिंग में पूरा अगर अपना टाइम यहाँ सीखता है, कल के दिन में वो ताइक्वांडो की लाइन में नहीं जाके अपना कोई और कोर्स करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, तो गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रहेगी कि हाँ मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। बच्चा खेले, 12th तक ही खेले, अगर जिसको फिर उसके बाद उसको

0: कोई ऑनलाइन पकड़नी है तो वो कर सकता है।
1: ये थी वंदना सिंह, और अब बारी है अखिलेश सिंह की, जो कि अब सीनियर टीम के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये 13वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे। आपने 2023 के नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 24 में आपके आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो अखिलेश बात यहीं से शुरू करते हैं। आपकी नेशनल चैंपियनशिप की जो आपने 2023 में गोल्ड जीता था, पहली बात ये आती है कि ताइक्वांडो के प्रति आपका शौक कैसे हुआ?
2: बचपन से ही हो गया था शुरू, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो खुद नेशनल चैंपियन और नेशनल प्लेयर
1: रही है,
2: तो उनको देख के फिर मन किया खेलने का।
1: बात आती है नेशनल चैंपियनशिप की, 23 में आपने गोल्ड जीता, तो सफर आपका कैसा रहा?
2: तो नेशनल चैंपियनशिप जो है ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे आते हैं और कंपटीशन बहुत हाई रहता है, टफ रहता है, तो उसके लिए बस गेम के अपने गेम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है, और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है टेम्परेरी, पढ़ाई और जो मेन चीज़ें हैं उसी पर तुम फोकस कर सकते हो अगर आप प्लेयर और एक स्टूडेंट दोनों हो तो आपके लिए ऐसा होता है कि आपके लिए जो लाइन है वो थोड़ी टफ है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप प्लेयर और स्टूडेंट दोनों हो, आपको दोनों मैनेज करते हुए चलना है, तो पूरे अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट और पूरी मेहनत दोनों जगह, क्योंकि दोनों चीज में एक्सेल करना है, अच्छे से बेस्ट देना है, तो टफ था नॉर्मल बच्चों से जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं स्पोर्ट्स उनके मुकाबले बहुत टफ था, क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप थी, और पर बस पैशन था अंदर और ये था कि हार्डवर्क करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, मेहनत करते गए।
1: मेहनत करते करते आपने 23 और 24 में आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे, गोल्ड के बाद सिल्वर आया, उस दौरान परफॉर्मेंस में थोड़ी ड्रॉप रही आपकी, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ था 13th जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए मलेशिया में जो आयोजित हुई थी, तो वहां पर आप मेडलिस्ट रहे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपने देश के लिए जीता, तो ये मैं जानना चाहूंगा कैसे आपका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हुआ था उस?
2: तो सबसे पहले जो था हमारा 2025 की नेशनल चैंपियनशिप जो देहरादून में हुई थी, तो वो था एक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था कि जो बच्चा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज यहाँ पे होगा तो उसके लिए आगे जाके रास्ते खुलेंगे एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए, तो वहाँ गए और पार्टिसिपेट किया नेशनल चैंपियनशिप्स में और वहाँ मेडल जीता, वहाँ नेशनल चैंपियन बना उस टाइम पे, और उसके बाद वहाँ से फिर आगे जाके जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स दिए, फिर वहाँ सिलेक्शन लिया, और उसके बाद कैंप मिला हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हमारा कैंप लगा था 1.5 महीने का, तो फिर वहाँ ट्रेनिंग हुई इंडिया के बेस्ट कोचेस के साथ।
1: पहली बार जब एशियन चैंपियनशिप में खेले आप, नेशनल से विदेश में जाकर खेले, तो कैसा आपकी मनस्थिति थी, क्या लग रहा था आपको मैं इतने बड़े मंच पे खेलने जा रहा हूँ?
2: बस ये था कि अब इतना आगे आ चुके हैं तो अब कुछ और ऑप्शन नहीं है, अपना बेस्ट देने का हमेशा से रहा है दिल में कि अब तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि देश के लिए खेलना है, अपना बेस्ट देना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आ जाए सामने कंट्री का।
1: वहां पर जब आपके कोचेस होते हैं तो एक आप जब स्थानीय स्तर पर आपके कोच होते हैं अलग होते हैं, अब जब आप एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके साथ कोचेस अलग होते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि जो आपने कोचिंग यहाँ ली, जिन कोचेस से और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहां पर कोचिंग में क्या अंतर लगा आपको?
2: यही बात है जिससे हम बचपन से सीखते हैं, उनको तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी एडवांस जो तुम जिस चीज में अच्छे हो उस चीज के बारे में पता होता है, और वो तुम्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है एज अ प्लेयर, जो हमारा कोच होता है उससे एक अलग बॉन्ड होता है, हमारी अलग रिलेशन होता है, जिसने हमें बेसिक से उठाया होता है तो उसे सब पता होता है, लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़े अलग कोचेज मिलते हैं जो एडवांस होते हैं, जो ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, और एक लेवल उनका अप हो जाता है, पर उनसे फिर कुछ टाइम उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद उनके साथ भी थोड़ा रिलेशन अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो काफी सारे प्लेयर्स को वो उन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी होती है और उनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता होता है कि हर एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है, तो बस इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पर अपना कुछ तो अपना कुछ ही होता है लास्ट में।
1: जी, इंटरनेशनल में आप फाइट कर रहे हैं, अब जब आप पहली बार फाइट करने गए तो क्या था, कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक, कहते हैं
2: नर्वसनेस थी थोड़ी, वो तो हर फाइट के पहले नर्वसनेस होती है।
1: किसके अगेंस्ट फाइट थी आपकी?
2: मेरी पहली फाइट चाइना से थी। हाँ, और मैंने ये देखा है हमारे देश में स्पोर्ट्स की हालत थोड़ी डाउन ही चलती है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो प्लेयर्स को काफी सारी फैसिलिटीज, क्योंकि जो और कंट्रियां हैं वो काफी ज्यादा आगे है हमसे आजकल, क्योंकि जो हम अभी सीखते हैं वो शायद से 5-10 साल पहले वो लोग करके उसे वो टेक्निक्स और जिस एडवांसमेंट के साथ आज हम सीख रहे हैं वो बहुत पहले सीख चुके हैं। एक उनके पास प्लस पॉइंट रहता ही रहता है, उनकी फैसिलिटीज क्योंकि उनको अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में भी फैसिलिटीज नहीं है, पर हो जाता है थोड़ा पीछे, क्योंकि बेसिक लेवल पे अच्छी वो नहीं मिलती। भले टैलेंट हमारे देश में बहुत ज्यादा है
1: जी, पर मैं ये जानना चाहूंगा, जब पहली फाइट आप कर रहे थे, अपोनेंट आपका चाइनीज था, तो आप कैसे उससे फाइट कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको, क्या उसमें क्या कमी है और मैं कहां उसको पर पॉइंट ले सकता हूं?
2: वो ही गेम पढ़ना था उसका। सबसे पहले खेलते गए, नॉर्मली उसका गेम देखा कि वो किस तरीके से खेल रहा है, और फिर थोड़ा उसकी कमियां देखी कि कहाँ पे वो लैक कर रहा है, और फिर वहीं से स्कोर निकालने का ट्राई किया। वो अपने लेफ्ट लेग से बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, वो बस एक ही लेग से खेल रहा था, तो पता चल गया था कि ये इसका माइनस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट निकल सकता है हमको, तो वहां पे एडवांटेज लिया, वहां से पॉइंट निकाला।
1: तो ये एज ए खिलाड़ी तुम खुद जज करते हो या बीच में कोच भी इशारा करते हैं कुछ?
2: कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि कई बार जो पर्सन खेल रहा होता है ऐसा प्लेयर, तो कई बार वो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, तो कोच कभी कभी आंख बंद करके कोच की बात मानना भी बहुत जरूरी है। कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोच पे भरोसा रखो, वो तुम्हें अच्छा ही गाइड करेगा और सही गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है।
1: जी, आप अपनी पहली फाइट जीते, आगे की फाइट जीते, तो किस तरह के अपोनेंट आप फेस करते गए?
2: चाइनीज अपोनेंट थोड़ा टफ पड़ा पहली फाइट में, सेकेंड फाइट मेरी इजी रही जो सऊदी अरेबिया के साथ थी, थर्ड फाइट मैंने कोरिया के साथ हुई थी जिसमें मैं हार गया था।
1: अच्छा,
2: कोरिया से मैं हार गया था।
1: कोरियन वाले में ऐसी क्या खासियत लगी जो आपको लगा कि आप कहां लैक करें?
2: कोरियन के साथ मैंने देखा, सबसे पहले तो उसके पास एक एडवांटेज था हाइट का, मुझसे हाइट में बड़ा था।
1: अच्छा,
2: और उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा, हाइट में बहुत ज्यादा, तो बस यही प्लस पॉइंट था उसका।
1: टेक्निक वाइज
2: आप मैं कहूंगा
1: टैकल कर रहे थे मतलब?
2: टेक्निक वाइज मॉडरेट, बस जो नेचुरल स्ट्रेंथ थी और वो रॉ स्ट्रेंथ वो उस पे अब बहुत अच्छी थी, तो वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गई।
1: उसके बाद अब आगे आप क्या सोचते हो, आपने क्या करना है
2: अभी नेक्स्ट? मेरा सोचा है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, खुद पर बेहतर कर रहा हूँ हर दिन खुद को। और आजकल ये तो है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है गेम्स में, तुम्हें आर्मी सर्विसेज, आर्मी और काफी सारी रेलवे, इन सब चीजों में जॉब मिल जाती है।
1: जी,
2: हाँ, तो उसके साथ तुम गेम भी कंटिन्यू कर सकते हो एक तरीके से।
1: तो अभी फिलहाल जो क्या तैयारी चल रही है आपकी?
2: फिलहाल तो नेशनल चैंपियनशिप के लिए, तो अब कॉम्पिटिशन और डबल है, तो उसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो बस वही चल रहा है।
1: तो कितना डिफरेंस लग रहा है आपको जूनियर से सीनियर में? आप शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पर किस कोच के अंडर में यहाँ पर कोच?
2: विक्रम भंडारी सर,
1: विक्रम भंडारी जी के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीनियर लेवल पे जो कोचिंग होती है जूनियर से काफी डिफरेंट होती है, तो क्या चीजें आपको अलग से सिखाई जा रही है?
2: अब जैसे सीनियर एक अलग ही लेवल है, उसका लेवल थोड़ा टफ डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो एक तो वो हो गया, टेक्निकल ट्रेनिंग ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक सुधारनी पड़ती है और अपने आप को और पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो कमियां होती है उनको ट्राई करना पड़ता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कम करें और सुधारें, कोई कमी ना रह जाए हमारे अंदर।
1: स्टेमिना भी उसमें चाहिए होता है आपको, इतनी देर में सस्टेन करना है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करते हो?
2: स्टेमिना बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है जो मेनली स्प्रिंट्स, रनिंग, लॉन्ग रनिंग हम लोग करते हैं जिससे स्टेमिना बिल्ड होता है।
1: 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस आयोजन किया गया, माउंटेन बाइकिंग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया हमारी प्रतिनिधि गीता कनवाल से भरत शाह ने।
3: आप काफी समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और कई सारे ट्रैक्स आपने साइकिल से किए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में साइकिलिंग को अपने जीवन में अपनाने का विचार कैसे आया?
4: ये मेरे बचपन से जुड़ा है और मेरा पहले साइकिलिंग में कोई शौक ऐसा नहीं था। मैं जब झांसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए गया था तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, तो मुझे वहां साइकिल से ही जाना पड़ता था, इसके लिए मैंने साइकिल सीखी थी। और उसके बाद मैं नैनीताल आ गया, लिया आगे की एजुकेशन के लिए, तो साइकिल लगभग छूट गई थी। फिर बाद में मैं एडवेंचर से जुड़ा तो मैंने ट्रैकिंग का काम किया, लेकिन पिछले 12-13 सालों में साइकिल में एक बड़ा परिवर्तन आया कि पहाड़ों में लोग साइकिल चलाने लगे। हम

0: थे कि लोग प्लेन्स में ही साइकिल चलाते हैं,
1: जी
0: लेकिन पहाड़ों में गियर साइकिल का प्रयोग होने लगा। तो तब मैंने पहली बार 10-12 साल पहले गियर साइकिल चलाने की शुरुआत की, और फिर एक बार जब मैं शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं, फिर मैं नए नए तरीके से साइकिल के ट्रेल देखने लगा और साइकिल से पहाड़ों को घूमने लगा।
1: इसके अलावा सर, साइकिलिंग के दौरान आपके खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे, और आपने अभी तक साइकिलिंग के माध्यम से कहां कहां तक की यात्राएं की हैं?
0: अनुभव तो साइकिल में, जब आप घर से निकल जाओ तो बहुत प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ता है, तो एक तरीके से जैसे फिल्म चेंज होती है, उस तरीके से पूरा आपको चेंज एटमॉस्फेयर मिलता है, और नई नई चीजों से आपको, मतलब आपको देखने को मिलती है, नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, और नए स्ट्रगल आपको दिखाई देते हैं। तो मेरी यात्राओं में जो मैंने शुरुआत की पहाड़ों में, तो आसपास में ही पहले 5-10 किलोमीटर मैंने सफर शुरू किया, जैसे अल्मोड़ा से कसार देवी का। तब मुझे बड़ी हिचक होती थी कि अगर मैं चढ़ाई में कहीं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे, और फिर धीरे धीरे जब मुझे प्रॉपर गियर साइकिलिंग का तजुर्बा हो गया, तो मैंने काफी इधर जो टूर्नामेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके साइकिल इवेंट्स होते हैं, उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद मैं गोवा भी गया, नासिक भी गया, और बॉम्बे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा मैंने पहाड़ों में जो जर्नी की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, तो मैंने बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा की, माणा पास मैंने किया साइकिल से, हिमाचल में मैंने काफी साइकिलिंग की और वहां पे मुझे प्राइज भी मिले, और इस तरह से मेरी साइकिल जर्नी काफी अच्छी रही, और अभी भी मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूँ पहाड़ों को देखने के।
1: आप कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग शुरू करने से पहले और उसके बाद आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का परिवर्तन देखा?
0: स्वास्थ्य तो साइकिलिंग से बहुत ही बढ़िया मैंने फील किया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे साइकिलिंग जर्नी में महसूस हुई कि जब आप पहाड़ों में साइकिलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपने सांसों की आवाज सुनाई देती है, मतलब आप अपने आप को फील कर सकते हैं, और ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फीलिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अधिकतर इंसान जो है जब भी कहीं बैठता है और कुछ पढ़ता है, लिखता है, या कहीं कुछ भी कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन जब वो साइकिलिंग करता है तो उसको ये लगता है कि उसको उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, वो चढ़ाई चढ़नी है या वो अचीवमेंट करना है वहां तक जाने का, तो उसको बाकी कोई ख्याल नहीं आते। तो कहते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में थॉटलेसनेस, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपनी धड़कनों को समझना, ये मुझे लगता है साइकिलिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होता है, और यही मैंने महसूस।
1: आप हमारे श्रोताओं को साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मुझे तो ये लगता है कि साइकिलिंग को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, इससे आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा, हेल्दी फील करेंगे आप अपने आप को साइकिलिंग करके, और यदि आप हफ्ते में आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम वीकेंड में या संडे के दिन आप एक साइकिल राइड छोटी जरूर करें, जिससे कि एक परिवर्तन आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। यही संदेश दूंगा कि सभी को साइकिल चलानी चाहिए और स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होना चाहिए, और सभी स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं।
2: तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम से अपने मित्र संजय जोशी को अनुमति दें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए अंक के साथ इसी चैनल, इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।

गीतांजलि कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को दीपिका का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। इस गीत को सुनने के लिए हम तक पत्र आए हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बवलेश पवार, डैनी पवार और मनीष का। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से सुनने वाले हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। पंजू सराय संभल से हैं छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। आजाद नगर लक्सा हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। बेणी से हैं राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन, धीरज। बिलराम गेट कासगंज से इसी गीत को पसंद किया है असलम सैफी, जैबुन निशा, अकरम सैफी और आबाद खान ने। राजद्वारा रोड मीठीकुएं रामपुर से हमारे साथी हैं आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, फिरासत, अर्पित, अभय, रिया और आरुष। शिकारपुर उत्तर प्रदेश से सुनने वाले हैं बबली कुमार प्रजापति, पुष्पा देवी, डॉली, दीपांशु, पूजा, भीम और अभिषेक। इन्हीं के साथ हैं दुर्गा दास, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, सात्वी और गणेश। पुणे से इस गीत को सुनना चाहा है पंकज कुमार और प्रियंका ने। ग्राम घाटमपुर जिला रामपुर से इस गीत को पसंद किया है रामभजन सैनी, हरप्यारी सैनी, राजीव सैनी, संजय मुकेश, आशा, अंशिका, पूजा और राम प्रकाश सैनी ने। लेवाखेल मोहल्ला चांद्र बिस्वा से हैं नारायण, ललिता खट से, परी खट से, गणेश कार्तिक, स्वाति चौधरी और प्रयाग चौधरी। जमनी मोहल्ला इस्लामनगर से हैं मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान और ईशा खान। रेलवे रोड गंजवारा से हैं शमसुल कलीम, भुवन प्रकाश गौतम और फारूक शेख। अनारकली बाजार जागराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, आशीष मल्होत्रा और काव्या। तेलंगाना जिला भोंगीर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फजान और इनके साथी। जिला कोल्हापुर से इस गीत को पसंद किया है अरुण, अतुल, गौतमी और इनके साथियों ने। यहीं से हैं तुषार, प्रसिक, एकता, मेघना, उत्कर्षा और अरुण। लीजिए सुनेगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म पारसमणि से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में।

लता मंगेशकर के सुर में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म अनपढ़ से। कार्यक्रम के इस गीत के लिए फरमाइश हम तक आई थी बेड़ी से राजेश कंचन, गायत्री वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज की। शाहबाजपुर कला कस्बा पागबड़ा से सुनने वाले थे मजाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रई सनाज और मुजक्किर बाबू। करूला मुरादाबाद से हमारे श्रोता साथी थे अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। जतुका किशनपुर से इस गीत को सुनना चाहा था आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज ने। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से थे शाजी बोटके, नंदा बोटके, हनुमान सारिका, सुरेखा और सोनम। आदर्श नगर मलौट पंजाब से थे राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। रामपुर लिसनर्स क्लब नालापार बाग छोटे साहिब रामपुर से इस गीत को पसंद किया था नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हमाद ने। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं रामचंद्र सिद्धांत, टिंकू इंगोले, रमाबाई सुरेंद्र, मयूरी सुरभि, मंजूषा गौतम, नामदेव राय शिंदे, विलास शिंदे और सुनील जबड़े। यहीं से हैं दीपाली, पार्वती, रोहित, सोनू, मोनू। जीजा माता नगर हिंगोली महाराष्ट्र से इस गीत के लिए खत आया है लक्ष्मी, उत्तम कांबले। तामसा रोड तहसील हदगांव से हैं श्यामराव, बेबी, बिट्टू। औरंगाबाद से हमारे साथी हैं राजदीप सांवले, शीतल राजेश, राशि राजेश और राजदीप राजेश। लीजिए अब सुनिएगा कार्यक्रम का अगला गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। गौतम नगर जिला नादेड़ से इस गीत को पसंद किया है प्रभाकर जोधले और आरती जोधले ने। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुडाला महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाणे, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरग, जैते बिरग और मीका बिरग। मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौली से हैं इंतजार राही, शादाब राही, मेहताब, निशा, सिकंदर और साहिल अंसारी। थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इस गीत को सुना चाहा है इरफान खां, शाहिदा परवीन, इमरान खां, रेहान खां, इकराम खां, समीना भी और आसिफा ने, इनके साथ हैं शबीना। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से हैं चंदा चांदनी, आकाश कुमार और इनके मम्मी पापा। ये सभी हमारे श्रोता हैं ग्राम मुंडेला से। दिल्ली शहर मुरीगेंट से इस गीत को सुना चाहा है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से इस गीत को पसंद किया है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय ने। दुबिहा निवादा गाजीपुर से हमारे साथी हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांचल। शेरपुर कला गाजीपुर से इस गीत को सुनना चाहा है अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय ने। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर इज्जत फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में।

और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं आशु, सोनाली, पथिक, कृषिव, सुरेश नारंग और आशु नारंग। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से इस गीत को सुनना चाहा है मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, मिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर ने। शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। यहीं से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवि श्रीवास्तव। बीजना मुरादाबाद से इस गीत को सुना चाहा है राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष, अंशिका, यूनुस खान, सोफिया खान और राजू यादव ने। कार्यक्रम के इस अंतिम गीत को पसंद किया है कस्बा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरसी, नाजरा इदरसी, नईम इदरसी और नदीम इदरसी ने। ग्राम रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश कुमार वर्मा और करुणा देवी वर्मा। विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ प्रताप

सिंह, नीलू, अमन, रिया, सेजल, सूर्या, सोना, रीना, नीरज, ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं दातागंज बदायूं से, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। इस गीत को सुना चाहा है तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समर, आर्यन, बेबी आरोही, इशिका और अंजलि, और इनके साथ हैं श्वेता वर्मा। जिला अमरोहा नई बस्ती पति खालसा से इस गीत को पसंद किया है बहारुल हसन सिद्दीकी, आलम सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम और फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी, इनके साथ हैं सुदेश चौहान। राजद्वारा रोड मीठे कुएं रामपुर से इस गीत को सुना चाहा है आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि और अर्पित रस्तोगी ने, इनके साथ हैं अभेरिया, आरुष और फिरासत। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से सुनने वाले हैं विनोद, रंजू, अशोक, सुशील, नीलम, कैलाश और रामा। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल, शीला, गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। तहसील बिलारी से हैं रजा अहमद इदरसी, जमाल कमाल, आयत और हमजा। कुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। मछली गोदाम कैदीमंडा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, ओषा, प्रियंका, पूजा, ऋतु और ऋषभ सिंह। रेलवे कॉलोनी भटिंडा पंजाब से हमें खत भेजा है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। सिंधौली मीरगंज बरेली से हमारे श्रोता हैं जिशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। महादेवघाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा। विश्नव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं प्रतीक मल्होत्रा, शुभचंद्र बजाज, नवनीत रॉय और अनिल शर्मा। इंदिरा विहार रायगढ़ से सुनने वाले हैं अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां और वलीउल्लाह अंसारी। लुधियाना पंजाब से सुनने वाले हैं अमरजीत, सोनम और परमजीत आदिबा। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से इस गीत को सुनना चाहा है कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, विनीता, राजू और रुद्र गुप्ता ने। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से हैं मुकेश रानी, कुसुम पलक और पंखुड़ी गुप्ता। जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से हैं अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय सैनी, आंचल विकी, आकांक्षा, आकाश सैनी, दक्ष छवि, रुद्र, आयुषी और इनकी माताजी। पटियाली रोड गंजुड़वारा उत्तर प्रदेश से हैं अफसाना बेगम, हैजबी शेख, फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर शेख, शमा, अलकमर बेगम और मिर्जा नसरीन बेगम। जसपुर उत्तराखंड से सुनने वाले हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ। ताज रेडियो श्रोता संघ लक्कड़ बाजार खंडवा से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद रफीक पवार, हसनैन पवार, साकिब और छोटू। बाजार चौक ग्राम दीवाल से हैं शंकर लाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, रोशनी और अजय। हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। फिल्म है आरजू।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया कुछ क्षणों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेगाहर्ट्ज पर अभी तक आप सुन रहे थे हमारी द्वितीय सभा के प्रसारण। रात्रि के 11:10 हुए हैं। कल प्रातः 5:50 पर मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर अपनी सभा के कार्यक्रमों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा